0: ए भाई
1: क्या है करिश्मा कैसा
0: देख के चलो आगे नहीं पीछे
1: ज्यादा वफादार है
0: भी नहीं पाए आता है घोड़ा
1: भी नहीं
0: रहता है भूखा भी
1: फिर भी वो
0: मालिक है करिश्मा
1: नहीं बार है
0: और इंसान
1: जानवर आदमी का ज्यादा
0: है प्यार जिसे पाता है जीत जिसके गाता है
1: घोड़ा भी जीने में भौंकता का डर
0: है भूखा भी
1: फिर भी वो मालिक का करता नहीं बार है
0: और इंसान ये
1: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है जीत जिसके लाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

0: MBC Radio, your music companion.
1: कि सबकी यादें मेरा दिल जलाना।

0: तो हुजूर थे मेरी क्या खता।
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ी थी
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ
0: तो हुजूर थे मेरी क्या खता।
1: अच्छा जी मैं हाथी न तोड़ो,
0: छोड़ो हाथ छोड़ो, की सबकी यारी मेरा दिल।

0: अच्छे हम अकेले
1: की सबकी यारी में
0: अच्छे हम

0: आपकी यादें मेरा दिल जलाना किसी के
1: NBC Radio, 24 hours a day. NBC Radio, 24 hours a day.

कसम तुम्हारी मेरे की बात कह डाली।

0: इस बार सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ एमबीसी रेडियो।
0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ
0: प्रभात आराधना
1: एमबीसी रेडियो।
0: हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर। ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: हंड्रेड एंड नाइनटीन किलोहर्ट्ज़ ये है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। घर मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बजे। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है सुनते हैं।
2: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार। आशिताओं को भी नमस्कार। आज 11 अक्टूबर रविवार के प्रातःकालीन पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस में पानी का संकट गहराता जा रहा है। नमस्कार आशुताओं को भी नमस्कार। आज 11 अक्टूबर रविवार के प्रातःकालीन पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। पानी की टंकी मॉरिशस में पानी का संकट गहराता जा रहा है। सरकारी जलाशय में पानी का स्तर 55% यानी कि कल 12 अक्टूबर को शुरू होगा। पानी की उपनाम के पहले अक्षर के आधार पर पंचकरण की तारीख तय की गई है। टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रूपए की सरकारी सहायता पानी हेतु पंजीकरण सोमवार होगा, यानी कि कल। मॉरिशस में घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के आधार पर पंजीकरण की तारीख तय की गई है। मिल रही है आवेदन के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र आवेदन और CWA का बिल 354 घरों होगा। बिजली नेटवर्क मॉरिशस में घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता योजना को लोगों दिनों में शुरू होगा और अप्रैल रही है इस तक चलेगा। गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग जब नियंत्रित 354 घरों के खतरे से बिजली नेटवर्क से जोड़ों को ऊर्जा बनाने के प्रति मॉरिशस में बिजली की बचत के लिए नया मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स की वार्षिक और अप्रैल सभा रविवार आज गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग वास्तव में आयोजित हो रही है। इससे पहले 4 अक्टूबर को आवश्यक सदस्यों को ऊर्जा की संख्या पूरी नहीं होने के कारण सभा स्थगित कर मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स और आज रविवार 11 अक्टूबर से मॉरिशस में रविवार आज यानी कि 11 अक्टूबर को वास्तव में आयोजित हो रही है। इससे पहले 4 अक्टूबर को आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण सभा स्थगित कर दी गई थी। माँ दुर्गा के 9 रूप और आज रविवार 11 अक्टूबर से मॉरिशस में दुर्गोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। मॉरिशस में सूखे और जलाशयों में पानी का स्तर गिरने के बीच ग्लेनपॉक्स सुन्नी मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी। महुआ को जलाशय में पानी का स्तर घटकर उसकी कुल क्षमता का 35.7%। मॉरिशस में सूखे और जलाशयों में पानी का स्तर गिरने के बीच ग्लेनपॉक्स सुन्नी मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी। मॉरिशस में ऑनलाइन महुआ को जलाशय में पानी का स्तर घटकर उसकी कुल क्षमता का 35.7% केवल 4 रह गया है। ऐसे में इमाम ने करदाताओं की मदद के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को सुबह 9 बजे से मॉरिशस में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि है 15 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम

0: दाताओं की मदद तक के लिए 309 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अधिकारियों ने हमले शाम 4 बजे तक यमन के विशेष सेवा विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत और 309 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अधिकारियों ने हमले
1: आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है। पूर्व से आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व दक्षिण सेट प्रातु
0: आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है।
1: कभी कभार आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे
0: रात के दौरान विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेट प्रातु
1: अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि सुबह के समय और दोपहर बाद में
0: पूर्व दक्षिण सेट प्रातु
1: से हल्की अपर बादल में रहेंगे और बारिश होगी।
0: कभी कभार बारिश तेज होगी
1: और बादल की रेखा के पास सामान्य रहेगा।
0: दक्षिण रात के दौरान विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेट प्रातु पर रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व पर अधिकतम तापमान 27 से 30 रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे तापमान सेंट्रल प्लेटो पर समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और साहिल पश्चिम की ओर से 2 मीटर से 22 सेशन के बीच
1: तापमान
0: जरूरी
1: अधिकतम तापमान
0: सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 को सलाद के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 30 जगह पर तथा पेड़ों के
1: तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 सेशन के बीच
0: और साहिल इलाकों पर अधिकतम तापमान 20 से 22 सेशन के बीच
1: शाम 6:10
0: जरूरी सलाह
1: जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें और खुली जगहों पर तथा पेड़ों के नीचे न जाएं।
0: तो इसके शुरू ये पहला फ्लैश सुबह 5 बजे चला हमारी
1: रॉक की मुलाकात
0: और सूर्यास्त शाम 6:10 पर।
2: On the hour, every hour, radio marches.
0: Puna hogi thi sahi chhip.
2: Your news on NBC Play and NBC.mu.
3: Suraj ki chamchamati kirnon ke saath subah.
2: On the hour, every hour, radio marches.
4: Namaskar, Suprabhat. Subah ki ye bela hai. Subah ka ye nazrana hai. Subah ka ye nazrana aapke liye prastut hai.
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
4: आइए नमस्कार सुप्रभात। सुबह की ये बेला है, सुबह का ये नजराना है, सुबह का ये नजराना आपके लिए प्रस्तुत है। माँ आपके घर आकर आपको सुख प्रदान करे, आए ऐसी कामना देवी मैया से। आइए साथ मिलकर धन्यवाद दें हम हर पल सुखमय और संतोषजनक रहे आपका। हम प्रार्थना यही करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ वैदिक माँ आपके घर आकर आपको सुख प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना देवी मैया जगदम्बे मैया से है। हर पल सुखमय और संतोषजनक रहे आपका। हम प्रार्थना यही करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ वैदिक वाणी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
3: आर्य सभा मॉरिशस के स्वामी आशुतोष की ओर से वैदिक वाणी।
5: मधुर शहद से आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।

कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है सबको, सादर सप्रेम नमस्ते सर्वेभ्यो मैंने नमो नमः से गायत्री मंत्र को विषय बना करके ज्ञान विज्ञान का विकास हमारा बढ़े। वैदिक वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, आगे विषय को बढ़ाते हैं सप्रेम नमस्ते। मैंने ये जीवन मनुष्य का जीवन गायत्री मंत्र को विषय बना करके ज्ञान विज्ञान का विकास हमारा बढ़े है, बहुत गहराई है इसको, आकाश की ऊंचाई बहुत अधिक को बढ़ाते हैं, कितनी हम नहीं जानते। जीवन मनुष्य का जीवन बहुत गहरा है, इस जगत को बनाने वाले परमात्मा अनंत, सागर की गहराई को हम जानते सुनते हैं बहुत गहराई है, ज्ञान भी अनंत है, आकाश की ऊंचाई बहुत अधिक है, उनमें करुणा भी हम नहीं जानते अनंत है, उनमें आनंद भी असीम है, इस जगत को बनाने वाले परमात्मा अनंत है असीम है, अनंत है तैतरीय ज्ञान भी अनंत, उपनिषद कहती है उनमें बल भी अनंत है, वेदा उनमें प्रभु करुणा भी ज्ञान अनंत है, उनमें आनंद भी अनंत है, और हम जीवात्माएं से अनंत है असीम है अल्प है तैतरीय परमाणु से भी सूक्ष्म है, अनंत है वेदा एक देश प्रभु है, उनका ज्ञान अनंत है, कर्म करने में स्वतंत्र सामर्थ्य अनंत है, और हम जीवात्माएं बहुत छोटे ईश्वर की व्यवस्था में अल्प हैं, पराधीन हैं, परमाणु से भी सूक्ष्म हैं, हम भी आत्मा नित्य काल से अनंत हैं, एक देशी हैं, न हमारी उत्पत्ति कभी हुई है, स्वतंत्र हैं, न कभी विनाश और फल भोगने में हमारे स्वर का साम्य है, ईश्वर की व्यवस्था में हम सब प्रकार से अनंत हैं, मैं जीवात्मा काल से अनंत हैं, इसको समझाया गया, हमारी उत्पत्ति कभी हुई है पंक्ति में, न कभी हम कैसे हैं आत्मा का परिचय दिया, इतना हमारे सब का सामने है, परमात्मा सब प्रकार से अनंत हैं, अपरिणामी अकाल से अनंत माया, दर्शित समझाया गया शुद्धाचार्य पंक्ति में कि हम कैसे हैं, हमारी का परिचय दिया है महर्षि वेद व्यास जी ने, संसार के चकाचौंध में भूल जाते हैं, अपरिणामी संसार अप्रतिसंक्रमाया, दर्शित अलग है, शुद्धाचा ऐसे हमारा देह भी आत्मा के लिए पहचान वस्त्र के तुल्य है, हम संसार निराकार हैं, चकाचौंध में भूल जाते हैं, साकार शरीर दिया है, संसार में स्वरूप मान लेते हैं, काम कपड़े अलग है, मोक्ष फलों की अलग है, सिद्ध करना हमारा देह भी आत्मा के लिए वस्त्र के तुल्य है, बातें वैदिक धर्म के विशेषता है, ऋषि लोग बार बार बोलते हैं साकार शरीर दिया है, धर्म सुनना सुनाना काम वैदिक जीवन को जीना की औरों को करना कार बताना को करना, तुम भी वैदिक जीवन जियो, दो बातें वैदिक धर्म की विशेषता है, ऋषि लोग बार बार बोलते हैं जीवन करना पढ़ाना आगे प्रगति का मार्ग सुनते हैं लेते हैं, वैदिक जीवन को जीना चर्चा की थी, औरों को इस प्रकार बताना चिति शक्ति अपरिणामी, वैदिक जीवन जीव आत्मा कैसे हैं अपरिणामी नित्य हैं, तो इस प्रकार जो जीवन का होते हैं न घटते हैं, प्रगति का मार्ग सुनते हैं लेते हैं, हमको आग जला सकते हैं, चर्चा की थी अभी पानी गीला करके लेते हुए, चिति शक्ति अपरिणामी, हम जीव आत्मा कैसे हैं निराकार निर्विकार नित्य हैं, न हम उत्पन्न होते हैं, सांख्य का सूत्र है, न घटते हैं, असंगो अयम हि पुरुषः, न हमको आग जला सकती है, न पानी के अंदर पानी मिला देते हैं, न पानी में चीनी मिला देते हैं, वो घुल मिल जाती है, आत्मा निराकार निर्विकार में सुख दुख घुलते मिलते नहीं है, सांख्य का सूत्र है, बुद्धि के धरातल पर बस आत्मा देखता है, जैसे कि सुख आया है, दूध के अंदर पानी मिला देते हैं, प्रतिकूल पानी में चीनी मिला देते हैं, वो घुल मिल जाती है, किसी का जन्म है, किसी की मृत्यु है, सुख दुख घुलते मिलते नहीं है।

0: करते हैं।
1: बुद्धि के धरातल पर के
0: आत्मा देखता है
1: कि धरातल सुखाया है,
0: अनुकूल है,
1: वस्तुतः
0: दुख प्रतिकूल है,
1: आत्मा स्वरूप से हो गई,
0: लाभ हुआ,
1: किसी का जन्म है,
0: शक्ति अपरिवर्तनीय
1: है, इन हम घटनाओं को
0: सुनते रहते हैं।
1: ये ज्ञान
0: में कुछ भी
1: मन के
0: बदलाव
1: बुद्धि के
0: धरातल तक
1: होता है,
0: वस्तुतः
1: किसी मकान को बनाते
0: हैं,
1: बन गया भवन, बन गया
0: अपरिनामनी,
1: अब वो बन के तैयार हो गया है, अब उसमें
0: कुछ भी
1: पुराना पनाने
0: बदलाव है,
1: परिवर्तन
0: जीर्ण हो गया है,
1: उसको डेमोलिश कर देते हैं,
0: मकान को बनाते हैं,
1: ऐसे परिवर्तन
0: विकार कहलाते हैं,
1: बन गया भवन, बन
0: ऐसा
1: गया
0: परिवर्तन
1: आत्मा में
0: अब कभी नहीं होता,
1: बन के तैयार हो गया है।
0: गीता का श्लोक है,
1: उसमें पुराना पनाने लग गया है,
0: नैनम छिंदन्ति
1: भवन जीर्ण हो गया है,
0: नैनम डेमोलिश
1: कर देते हैं,
0: न चैनम
1: परिवर्तन विकार कहलाते हैं,
0: न शोषित
1: ऐसा परिवर्तन आत्मा में,
0: सबके लिए उपदेश है।
1: संधि
0: गीता का श्लोक है,
1: तुम जीवात्मा हो,
0: नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि
1: में कहा गया,
0: नैनम दहति पावकः,
1: न चैनम क्लेदयन्त्यापो,
0: अग्नि नहीं जला सकती है,
1: मारुता
0: जल नहीं गीला कर सकता
1: है, सबके लिए उपदेश है,
0: पवन
1: संसार के लोगों
0: है,
1: जबकि जीवात्मा को
0: अग्नि जलाती
1: है, कैसा है,
0: अस्त्रकार
1: में कहा गया,
0: तो इस आत्मा को
1: देह में रहने वाले
0: नहीं काट सकते,
1: अग्नि नहीं जला सकती है,
0: चिति
1: जल नहीं गीला कर सकता है,
0: पवन नहीं सुखा सकता है,
1: दर्शित विषय
0: देह को तो
1: आत्मा को
0: जलाती है,
1: बुद्धि के माध्यम से
0: संसार सारते हैं,
1: विषयों का ज्ञान होता
0: देह में रहने वाले
1: को तो
0: विषय दिखाया जाते हैं,
1: और
0: चिति शक्ति
1: अपरिणामी
0: शुद्ध
1: अप्रतिसंक्रमा
0: और
1: दर्शित
0: विषय
1: आत्मा को
0: बुद्धि
1: ने विषय लिया गायत्री मंत्र का,
0: उसी क्रम का में
1: जीवात्मा का
0: प्रसंग भी ले लिया,
1: तो विषय दिखाए जाते
0: हैं, लिए है
1: मंत्र मंत्र के लिए नहीं है,
0: स्वरूप से
1: मंत्र
0: है,
1: प्रकृति के लिए नहीं, प्रकृति
0: जड़
1: काल से अनंत है,
0: मंत्र का विज्ञान
1: हम
0: मैंने विषय लिया गायत्री मंत्र का,
1: उसी क्रम से में
0: जीवात्मा बनाया है
1: हमारे लिए,
0: क्योंकि मंत्र किसके लिए है,
1: हमारे लिए,
0: मंत्र मंत्र के लिए नहीं है,
1: उन्नति का रास्ता दिखाया है,
0: प्रकृति के लिए नहीं,
1: प्रकृति जड़ है,
0: तो हम
1: मंत्र का
0: विज्ञान
1: इस संसार
0: के बहुत आत्माओं के लिए
1: महत्वपूर्ण घटक है,
0: भगवान ने संसार बनाया
1: तो हमारी
0: हमारे
1: बुद्धि है,
0: भगवान ने ज्ञान दिया
1: हमारे लिए,
0: कहते हैं
1: भगवान ने हमको
0: उन्नति का रास्ता दिखाया,
1: पहला
0: हमारे कल्याण के लिए
1: पहली क्रिएशन का नाम
0: आत्मा है,
1: इस संसार
0: के बुद्धि
1: कहते हैं
0: महत्वपूर्ण घटक,
1: उसी का नाम
0: अध्यवसाय भी है,
1: तो हमारी जो बुद्धि
0: के द्वारा हम
1: जिसको
0: सत्य असत्य
1: का निर्णय
0: कर लेते हैं,
1: महातत्व
0: यही बुद्धि
1: हम
0: पहला
1: प्रोडक्ट
0: पहली क्रिएशन का नाम है महातत्व,
1: सबके पास बुद्धि है,
0: किसी को बुद्धि
1: थोड़ी बुद्धि है,
0: उसी का नाम
1: भोजन
0: व्यवसाय भी है,
1: खाना पीना जानते
0: हैं, इसके द्वारा हम
1: संतति को जानते
0: हैं, सत्य का निर्णय कर लेते हैं,
1: स्वभाव से वो लोग कर लेते हैं,
0: यही बुद्धि हम मनुष्यों के
1: बीच बच्चा है,
0: छोटा पिल्ला
1: यूं तो
0: पशु पक्षी
1: सब पानी में डाल दो
0: तैर जाएगा,
1: थोड़ी बुद्धि है,
0: तैरना आता है,
1: भगवान
0: वो अपना भोजन जानते
1: हैं,
0: खाना पीना जानते हैं,
1: संतति
0: मनुष्य
1: के बच्चे को सिखाना
0: अपना स्वभाव से वो लोग
1: जान लेते हैं,
0: बढ़ते बढ़ते
1: बढ़ता
0: जाता
1: छोटा पिल्ला
0: नैमित्तिक है,
1: उसको पानी में
0: तो
1: डाल दो
0: तैर जाएगा,
1: वो हमारा साधन है,
0: भगवान ने सिखाया है,
1: जिसके द्वारा हम
0: मनुष्य के
1: पर मनुष्य के बच्चे को
0: सिखाना पड़ता है,
1: उसका ज्ञान
0: बुद्धि के
1: बढ़ते
0: बढ़ते
1: बढ़ता जाता है,
0: स्तर है,
1: नैमित्तिक है,
0: सामान्य बुद्धि है,
1: तो बुद्धि
0: वो हमारा
1: साधन है,
0: उपकरण
1: है, बुद्धि
0: जिसके द्वारा हम
1: सात्विक
0: मनुष्य
1: कहलाते हैं,
0: मनुष्य
1: की बुद्धि
0: संसार में बहुत चलती
1: है, खाने पीने में
0: अलग अलग
1: कैटेगरी,
0: किसी की बुद्धि राजनीति में चलती है,
1: सामान्य बुद्धि है,
0: किसी की बुद्धि
1: मध्यम
0: ज्ञान में चलती
1: है,
0: तीव्र बुद्धि,
1: किसी की बुद्धि गणित विद्या में चलती
0: है, सात्विक बुद्धि है,
1: और किसी की बुद्धि
0: अध्यात्म,
1: संसार में बहुत चलती खाने पीने
0: में अध्यात्म में,
1: किसी की बुद्धि राजनीति में चलती है,
0: ये बुद्धि के अलग अलग
1: कार्य
0: स्तर हैं,
1: विज्ञान में चलती
0: है, इसने जैसा काम लिया,
1: किसी की बुद्धि
0: गणित विद्या में चलती
1: है, सब्जी फल भी काटते हैं,
0: किसी की बुद्धि
1: किस शरीर को भी काट
0: सकते हैं, अध्यात्म में चलती है,
1: बुद्धि उपकरण
0: में अध्यात्म में,
1: इसका उपयोग हमको
0: बहुत महान कार्य,
1: बुद्धि के अलग अलग कार्य हैं, स्तर हैं,
0: जैसे हम विघटन भी
1: पैदा करते हैं, जैसा काम लिया
0: बुद्धि
1: से हम सब्जी फल भी काटते हैं,
0: तो बुद्धि का मुख्य
1: फल को भी काट सकते हैं,
0: जोड़ना न कि तोड़ना,
1: बुद्धि उपकरण है,
0: बुद्धि का मुख्य
1: फल है,
0: बहुत महान कार्यों में,
1: पृथ्वी से लेकर के
0: बुद्धि से हम
1: विघटन
0: भी पैदा कर देते हैं,
1: ठीक ठीक
0: बुद्धि से
1: हम सुधार
0: भी कर देते
1: हैं, मेजर कर देना,
0: तो बुद्धि का मुख्य फल है
1: जोड़ना,
0: न कि तोड़ना,
1: बुद्धि बनाई है,
0: बुद्धि का मुख्य फल है,
1: करते हैं, आशा करते हैं,
0: पृथ्वी से लेकर
1: तुम बुद्धि के द्वारा
0: ईश्वर परम पदार्थों
1: का कार्य करो,
0: ठीक ठीक
1: जोड़ देना,
0: मेजर कर
1: देना, जोड़ना,
0: ये बुद्धि का मुख्य,
1: लोगों को मिलाना,
0: जैसे भगवान ने
1: बुद्धि बनाई है।

0: वह भगवान हमसे इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि हे मनुष्य तुम विषम हो गए, मनों को शांत अर्थात क्या कार्य करो, शांति का मार्ग दिखाना,
1: जोड़ना,
0: तो बुद्धि के सारे कार्य हैं, अस्तु हम लोगों को मिलाना, भगवान से प्रार्थना करके फटे दिलों को सिल बनाएं, बुद्धि को प्रज्ञा जिनके मन से जान वाली बुद्धि बनाए, विषम हो गए मनों को शांत अर्थात अंबरा शांति का मार्ग, जो बुद्धि सत्य सत्य बुद्धि के सारे कार्य वाली है, अस्तु हम बुद्धि से बुद्धि को भगवान भी जाना जाकर के परमात्मा बना लेते हैं, बुद्धि को प्रज्ञा मुक्ति तक समस्त जान बनाए जाना जाता है,
1: बुद्धि को हम चल के ऐसी बुद्धि ऋतम भरा प्रज्ञा किया है, जो बुद्धि सत्य सत्य का निर्णय कराने वाली है, जिस बुद्धि से आसर भी जाना जाता है, भूमि को जाने जा रहे हैं, इति ओम,
0: बुद्धि से मुक्ति तक का समस्त ज्ञान विज्ञान जाना जाता है, ऐसी बुद्धि को हम ईश्वर की आराधना से भक्ति भावना से निर्मल बना करके संसार को स्वर्ग बनाने में अपनी भूमिका को अदा करें।
2: और आज आप सुन रहे थे स्वामी आशुतोष जी। अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी। और आज आप सुन रहे थे स्वामी
3: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पिछड़ा अफ्रीका के निवासियों को सूचित करता है कि मॉरिशस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा काजाजुला में आज रविवार 11 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे, इस वजह से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी में कटौती हो जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति आज का विशेष कार्यक्रम नवरात्र के अवसर पर वे अपना सनातन धर्म अवश्य कर लें। आचार्य सकलानी जी की ये थी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। चलिए जरा सुनते हैं।

0: दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करुणा सदा
1: की मनोकामना परिपूर्ण करे।
0: माँ भगवती
1: प्रार्थना करते हुए
0: जगदम्बा महर्षि
1: दुर्गा
0: वेद व्यास जी
1: पास रहे हैं,
0: आप सब लोग कर रहे हैं।
1: काला भगवती
0: भाम
1: शक्ति जगदम्बा
0: की मनोकामना भयदाम
1: मौली बद्धे इंद्रेखाम
0: महर्षि
1: शंखम वेदव्यासम कृपाणम
0: त्रिशिखम अपि
1: करेर
0: उद्वहन
1: भाम
0: कटाक्षेर
1: अरिकुल
0: भयदस्कंधाधि
1: मौली बद्धेन्द्रेखम
0: अखिलम
1: तेजसा पूरयन्ति
0: शंखम चक्रम कृपाणम
1: त्रिशिखम अपि
0: करेर
1: उद्वहन
0: त्रिदश
1: परिवृता
0: त्रिनेत्रा
1: सेवितां
0: सिंहस्कंधाधि
1: रूढाम
0: त्रिभुवनमखिलं
1: तेजसा
0: पूरयन्ति
1: देवगण चारों ओर से
0: ध्याये
1: दुर्गां
0: जयाख्यां
1: त्रिदश
0: परिवृता से
1: जिनकी
0: सेविता
1: सुसूरसा
0: में तत्परमयी
1: उन
0: जया नाम वाली
1: दुर्गा
0: देवी
1: की आराधना
0: करना
1: देवगण चारों
0: ओर से
1: घेर उचित
0: है।
1: उनके
0: अंगों का वर्ण
1: काले मेघों
0: के समान
1: से जिनकी
0: सेवा का
1: है
0: सुसूरसा
1: में
0: तत्पर
1: से ही
0: शत्रु समूह
1: जया
0: नाम वाली
1: दुर्गा देवी
0: उनके मस्तिष्क
1: पर चंद्रमा
0: की रेखा
1: बद्ध होकर
0: के
1: उचित
0: है।
1: उनके
0: अंगों का
1: वर्ण
0: काले
1: मेघों
0: के
1: समान
0: शंख
1: चक्र
0: तलवार
1: त्रिशूल
0: आदि
1: शोभित है।
0: वैसे ही
1: शत्रु
0: समूह
1: भयाकुल
0: हो उठता है।
1: अपने वाहन
0: सिंह
1: के
0: मस्तिष्क
1: पर चंद्रमा

0: की रेखाओं से होकर के त्रैलोक शोभायमान होती है, पूर्ण कर रही हैं।
1: उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित हैं। वे तीन नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर के अपने प्रभाव से त्रैलोक को निशेष देव गण शक्ति समूह वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मां।

शक्ति समूह देवता लोग कह रहे हैं कि हे मां आपका स्वरूप ही देव महर्षि पूज्य है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त शोभा है। निसान समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा लोग कह रहे हैं कि हे मां आपका स्वरूप ही हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते समूह है। आप आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य है। हे जगदम्बा ब्रह्मा हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हमारा कल्याण करें प्रार्थना करें श्रोताओं के।

देवी की बलम अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में स्वयं भगवान शेष नाग भगवान ब्रह्मा भगवान शिव असमर्थ्य मतिम वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अतुलनीय प्रभाव और शौर्य के नाश करने में स्वयं भगवान शेषनाग श्री ही भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ही असमर्थ है भवने वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा कृत धिया शुभ कारी भय के नाश का विचार करे।

0: सुबुद्धि
1: जो धर्मात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में प्रभाव दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता के रूप में और सारी ही साथ विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप से धर्मात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में के लज्जा के रूप में निरंतर विराजमान रहती है विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप से को हम और सज्जनों में श्रद्धा के रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निरंतर विराजमान रहती है उन महामचिन भगवती जगदम्बा दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन की

0: क्षयकारी भूरी
1: और इस अचिंतनीय रूप का
0: सुचरिता
1: असुरों के संहार को सौभूता
0: संपूर्ण
1: सर्वेषु
0: देवी असुर देव
1: उत्पन्न
0: किए हुए
1: अद्भुत चरित्र
0: देवी
1: कर ही नहीं सकते हैं
0: आपके
1: और इस अचिंतनीय रूप का
0: समस्त
1: असुरों के संहार को सौर्य तथा संपूर्ण
0: देव
1: दानवों के
0: सम्मुख
1: उत्पन्न किए हुए
0: अद्भुत चरित्र का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं।
1: हे मां
0: स्वाहा शिवाय
1: पितृगण
0: समस्त

0: देवी।
1: अरे जिनके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वो जो स्वाहा है, क्योंकि स्वाहा से ही वजन और देवता परिपूर्ण होते हैं। आप यज्ञ में
0: हे देवी
1: होम करते हैं, जिनके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है,
0: वो जो स्वाहा
1: उसी स्वाहा से, क्योंकि स्वाहा से ही श्रोता होते हैं
0: और देवता इसके परिपूर्ण होते हैं।
1: जो है यज्ञ में
0: पितरों को भी तृप्त
1: इसीलिए वास्तव में लोग आपको
0: भगवती के नाम से भी तो संबोधित करते हैं।
1: उसी स्वाहा से देवता लोग जो है ही जो है होते हैं,
0: और हम अपने पितरों को तृप्त कर ही जो है
1: और पितरों को भी तृप्त प्रदान करती हो,
0: इसीलिए
1: हमारा सभी लोग आपको
0: स्वधा के नाम

0: से भी तो संबोधित है,
1: तुरा विचिन्त्य
0: ही जो है
1: प्रतात्वम
0: अपने पितरों को तृप्त कर पाते हैं, इसलिए सुनियते
1: इंद्रिय तत्व सारैहि
0: हमारा कल्याण करें
1: भीर मुनि भीरास्त सम

0: वाली
1: आप अचिंत्य महाभ्रतस्वरूपिता हो और ये जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है श्रोताओं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पराविद्या की आवश्यकता होती है।
0: महाभ्रतस्वरूपता जो है जिससे समस्त
1: मुक्ति को देने वाली हो,
0: जो अचिंत्य महाभ्रतस्वरूपिता हो,
1: जितेंद्रियता
0: आप ही में है श्रोताओं
1: की और सारता होती है
0: श्रोताओं, सभी मुनिजन
1: महाभ्रतस्वरूपिता निरंतर
0: जिससे
1: समस्त रहते
0: दोषों से जो
1: वो हीनता आ जाती है,
0: जगदम्बा ही है,
1: जितेंद्रियता आती है,
0: तत्व की
1: शब्दात्मिका
0: होती है,
1: सुविमला जो
0: मुनिजन
1: निधान
0: के लिए निरंतर
1: उद्गीतशील
0: रहते हैं
1: वो भगवती आद्याशक्ति
0: जगदम्बा ही है।
1: देवी
0: त्रयी
1: भगवती
0: शब्दात्मिका
1: सुविमला
0: जो जगतां
1: निधानम
0: उद्गीतर
1: जो उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का सर्व जगत
0: उसके परम
1: पद्य के पाठ से युक्त सामवेद का आधार है।
0: देवी
1: आप ही शब्द स्वरूप
0: तीनों वेदों
1: अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद
0: से संपन्न भगवती
1: छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र है,
0: पालन के निमित्त
1: परम
0: ही पद्य के पाठ से
1: कृषि और जीविका का आधार
0: का मतलब है
1: कृषि और जीविका के रूप में
0: तीनों वेदों
1: ही तो प्रादुर्भूत
0: हुई हो
1: ऐश्वर्यों से
0: सभी जगत
1: भगवती हैं,
0: विश्व की
1: उत्पत्ति
0: करने वाली हो
1: पालन के निमित्त
0: शांति
1: शांति
0: कृषि और जीविका वार्ता का मतलब है कृषि और जीविका के रूप में आप

0: घड़ी मिला लीजिए सुबह के
1: 11 अक्टूबर 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में पानी का संकट
0: आज रविवार 11 अक्टूबर 2026
1: के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में
0: देश पानी की कमी किया जाता है के लिए दूसरे देशों के तरीकों पर विचार कर रहा है।
1: पंजीकरण की तारीख तय की गई है।
0: पानी की टंकी और खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता होगी
1: हेतु पंजीकरण सोमवार
0: शुक्रवार शाम
1: गोली लगने से गंभीर रूप से घायल
0: के पहले अक्षर के आधार पर
1: आज
0: रविवार 11 अक्टूबर
1: से मॉरिशस में दुर्गोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और घरों व मंदिरों में दुर्गा पूजा की विशेष प्रार्थना शुरू हुई है। इस पूजा में दाताओं की मदद के लिए मॉरिशस में रूपों की आराधना करेंगे जो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है। मॉरिशस में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि अमरीका के दक्षिण है और टैक्सपेयरों के पास अब केवल 4 दिन बचे हैं। भारी दबाव की मदद के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का विशेष सेवा की प्रशासन करा रही है।
0: और बढ़ रहा तूफान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका के दक्षिण हिस्सों में तूफान इसाइस ने भारी तबाही मचाई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। इस बीच मेक्सिको की प्रशासन को अब विस्तार
1: बढ़ रहा तूफान साइमन और दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा

0: ट्रॉपिकल तूफान रेचल भी घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है। काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम को शुक्रवार निर्वाचन में गंभीर रूप से घायल एलओजी नंबर मामले में सांसद घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है। काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्या नवोमाही ने लोगों से शांति बनाए रखने तथा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ी नंबर प्राथमिकता एलओजी सांसद देवेन नागालिंगम उनके परिवार से सरकार इस मामले पर की और उनके प्रति एकजुटता तथा समर्थन व्यक्त किया। आर्या नवोमाही ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता एलओजी तोमा का स्वास्थ्य लाभ है। उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीबी से नजर रख रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्या नवोमाही को सुनते हैं।
1: Prier donc, pour nous, nous calme, c'est cette madame-là trouve la famille aussi capable, donc, une famille qui trouve sa sérénité dans l'hystérie, sa situation difficile. Nous pouvons faire tout ce qu'il nous a fait pour que madame-là gagne un bon soin. Soutenir la famille, nous solidaire avec la famille.
2: Demain,
1: donc, nous, go, nous calme, aussi, jusqu'à ce que la famille aussi capable de faire le suivi, trouve sa sérénité pour que madame-là capable sa situation difficile.
2: Nous...
0: वहीं खेल मंत्री देवेन्द्र नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से उम्मीद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मौसम में पानी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। महोबा कुआ जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिर गया है। लेकिन क्या ये तकनीकें मॉरिशस की आर्थिक स्थिति और मौजूदा जल वितरण व्यवस्था के अनुकूल है? इसी पर अधिक जानकारी दी रही है शैली अर्बन अपने आसपास के विवरण के
3: तरीकों को समझें। इस काम के लिए यूएई की तरफ से 25 मिलियन डॉलर पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर पानी जमा करके पूरे उत्तरी और पूर्वी इलाकों में पानी की कमी को दूर कर रहा है। नाम सौर ऊर्जा से चलने वाला एक कारखाना हर रोज 80 क्यूबिक मीटर पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर जमा करके उत्तरी और पूर्वी इलाकों में पानी की कमी को दूर करना है। रोड्रिक्स में सौर ऊर्जा से बिजली और पैसा कारखाना हर रोज 80 क्यूबिक मीटर पानी बनाना शुरू करता है, जिससे 2400 लोगों की जरूरत है। हमारे यहाँ ये सभी तरीके काम आ सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा बिजली और पैसा चाहिए। मॉरिशस में समुद्र के पानी को समुद्र से बनाना शुरू करने से पहले एक बड़ी दिक्कत पर ध्यान मॉरिशस के लिए है। हमारे यहाँ तैयार होने वाली 62% पानी की बर्बादी पानी के ढांचे की मरम्मत करना

0: इलाके का पानी की बर्बादी इसलिए समुद्र से पानी लाने
1: पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण कल सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होगा। उपनाम का पहला अक्षर ए से एम तक होने वाले लोग सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। वही एन से ज़ेड रुपए की सरकारी सहायता पाने से पंजीकरण वाले सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होगा। शुक्रवार उपनाम का पहला अक्षर ए से पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल तक सीडब्ल्यू करा सकेंगे। वही एन से ज़ेड विभिन्न कार्यालयों में किया जा सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय पहचान होने वाले उपनाम के लोग गुरुवार और शुक्रवार को पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल इलाज के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बातचीत हुई है। उन्होंने घोषणा की भारत से चार डॉक्टरों की एक टीम कल सोमवार को मॉरिशस पहुंचेगी। ये टीम एलुजीटोमा का ऑपरेशन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सुनते हैं।
2: इलाज के लिए हम लोगों ने नहीं बताया का है मल्टी डिसिप्लिनरी की समस्या कुछ मरीज की देखभाल के लिए हम लोगों ने वहाँ पर क्योंकि आप जानते हो वे डॉक्टर है इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मरीज को देश के बाहर ऐसा इलाज के लिए चीन नहीं जा सकता है पेशेंट के साथ क्योंकि समस्या तो गंभीर निर्णय पर पहुंचे उतना आसान नहीं है भारत से क्योंकि आप जानते हो वे टीम है चुबे चार सदस्य ताकि टीम को मॉरिशस में हम कोई यहाँ बुलाए ऐसा के मरीज का जो ऑपरेशन होना है जो गोली के साथ हम लोग इस निर्णय पर भी निकाल कि भारत प्रधानमंत्री के संपर्क डॉक्टरों का एक टीम हूँ चार सदस्य उनकी टीम को मॉरिशस में हम हमारे साथ यहाँ बुलाएं अपना पूरा मरीज इस बात पर लगा ऑपरेशन करना है और जो गोली उनके सहयोग से गया है ये निर्णय निकाल के भारत से प्रधानमंत्री के संपर्क में आए और पेशेंट का ऑपरेशन और उनके पूरी सहयोग हमारे देश हमारे साथ है पति भी अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा रहे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता उनके सहयोग से ही हम लोग मैं ये निर्णय लिया आश्वासन दिलवाना चाहूंगा एक अच्छे चीज सरकार की ओर से हमारी ओर से डॉक्टरों की टीम की ओर से कर सके सब कुछ किया जा रहा है राष्ट्रपति भी जो पेशेंट है जो मरीज है स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता प्रकट किया है तो मैं सभी को
1: बिजली बचाने के लिए एक नया अभियान कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। ये अभियान अप्रैल 2027 तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गर्मियों में बिजली कटौती से बचना और बिजली की सबसे अधिक मांग वाले समय में बिजली बचाने के लिए एक नया अभियान कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। ये अभियान अप्रैल 2027 तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गर्मियों में बिजली कटौती से बचना और बिजली की सबसे अधिक मांग वाले समय है जब खपत को नियंत्रित करना है गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर पूर्व में तेल की कीमतों को लेकर तनाव के बीच देश में इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की है। इस अभियान में भी तेजी आती है। सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। फैसला मुख्य रूप से शाम के व्यस्त समय में बिजली का खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा ताकि तेल की कीमतों को लेकर तनाव के बीच देश में बिजली की मांग लगातार से बची जा सके। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया सोसाइटी और विभिन्न माध्यमों से लोगों वार्षिक आम सभा रूप से शाम के 11 समय में बिजली का खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा ताकि बिजली की कमी के किसी भी खतरे से बचा जा सके। पहले 4 अक्टूबर को होनी थी सोसाइटी आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी वार्षिक आम सभा आज रविवार 11 अक्टूबर था। माजा के अध्यक्ष जोएल कोरे के अनुसार सभा के लिए 98 सदस्यों की उपस्थिति है। यह सभा पहले 4 अक्टूबर को इस वार्षिक आम सभा लेकिन आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। माजा के अध्यक्ष जोएल कोरे के अनुसार सभा के लिए 98 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक आम सभा का उद्देश्य संस्था के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों और माजा में पंजीकृत लेखकों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आइए जोएल कोरे को सुनते हैं। उनसे बात की राजवीना सदामनी ने निर्मा नारायण रेड्डी के विवरण के साथ।
3: कलाकारों के बीच लंबित मामलों को आगे बढ़ाया जाए, इतिहास को दोबारा लिखने या पिछले कई वर्षों से आधुनिकीकरण किया जाए और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दिशा में ले जाए।

0: जाए। हमारा उपलब्धि पूरे कलाकारों के हित में लंबित मामलों को आगे बढ़ाया जाए।
1: ऐसे कई संवेदनशील और यथार्थवादी मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
0: दिशा में ले
1: मैं यह नहीं कह रही
0: यह उपलब्धि पूरे बोध जाना चाहिए, सामूहिक प्रयास परिणाम होगा।
1: हम ऐसे कई संवेदनशील और जटिल अधिकारी पर काम कर रहे हैं,
0: हमें पूरी पारदर्शिता बनाए रखना।
1: मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हमें अतीतों को जाना चाहिए,
0: लेकिन हमें और आगे बढ़ते काम लगातार जारी रखना होगा।
1: जबकि संबंधित इसी भावना के साथ हम अधिकारी और आवश्यक सभी सदस्य कर रहे हैं,
0: हमें पूरी पारदर्शिता बनाए
1: निर्वाहन करते रहेंगे,
0: निर्धारित प्रक्रियाओं का।
2: आज रविवार 11 अक्टूबर ऐसी माँ दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। नवरात्रों तक चलने वाली इस पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। इनमें शैलपुत्री से लेकर कालरात्रि और सिद्ध।
3: आज रविवार 11 अक्टूबर ऐसी माँ दुर्गा की आराधना का पर्व धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रों तक चलने वाली इस पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा की नौ रूपों की पूजा करते हैं। इनमें शैलपुत्री से लेकर कालरात्रि और सिद्ध सिद्धिदात्री को बुराई पर भाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार राक्षस पर विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति वाली एक दुर्गा और देवी शक्ति रूप में माँ दुर्गा का इसके अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान प्रतीक मानते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है। आज के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पुरानी परंपरा दुर्गोत्सव है। इसके अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान की जाती है। पूरा वातावरण में माँ शैलपुत्री आध्यात्मिक आस्था के बारे में बधर जाता है। आज के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ दुर्गोत्सव का मंगलारंभ हो रहा है। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट टीना बुधना के साथ, जो हमें माँ शैलपुत्री की महिमा व महत्व के बारे में बता रही है।
4: शारदीय नवरात्रि की

पर्वतराज हिमालय पृथ्वी होने के कारण ही शारदीय नवरात्र शैलपुत्री के नाम से दुर्गा की प्रथम स्वरूप पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री है। शैल जन्म में है माता सती और पुत्री का अगले जन्म बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें माँ शैलपुत्री ऋषभ यानी बैल पर सवार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें माँ शैलपुत्री शूल अपने और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित अगले जन्म माँ शैलपुत्री मालश्य घर पुत्री के रूप में धैर्य और दृढ़ माँ शैलपुत्री ऋषभ यानी नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन विधि विधान से त्रिशूल और बाएं हाथ में सुख शांति तथा सुशोभित कामना। माँ शैलपुत्री

0: पाक समृद्धि
1: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
0: माँ शैलपुत्री को सफेद फूल, दूध, रंग सफेद मिठाई और गाय की घी
1: सफेद
0: रंग शांति अर्पित करना शुभ
1: माना
0: जाता है।
1: भक्तजन श्रद्धा पूर्वक कई प्रसाद अर्पित कर
0: माता से सुख समृद्धि
1: माँ शैलपुत्री
0: उत्तम स्वास्थ्य
1: की प्रार्थना करती है।
0: नवरात्रि
1: में
0: दिन का समय
1: पूजा पाठ के साथ साथ
0: रात्रि में
1: सफेद रंग शांति
0: पवित्रता
1: और सरलता
0: विशेष
1: महत्व
0: माना जाता है।
1: इस दिन कई श्रद्धालु
0: संध्या
1: सफेद वस्त्र धारण कर
0: दीप
1: माँ
0: शैलपुत्री
1: है
0: दुर्गा चालीसा
1: का पाठ
0: करती है।
1: नवरात्रि में
0: और माँ समय
1: भजन पूजा पाठ
0: के साथ साथ
1: रात्रि में
0: माँ
1: दुर्गा
0: की
1: आराधना करती है।
0: नवरात्रि
1: विशेष
0: महत्व
1: रात से जुड़ा
0: है।
1: श्रद्धालु
0: संध्या
1: और रात्रि के समय
0: या रात
1: दीप
0: प्रज्वलित
1: करती है।
0: दुर्गा
1: चालीसा
0: भक्तों के लिए
1: विशेष
0: और
1: माता
0: के भजन
1: कीर्तन
0: है।
1: माँ
0: शैलपुत्री
1: की पूजा के साथ
0: नवरात्रि
1: के पावन
0: नवरात्रि
1: का नाम
0: होती
1: है
0: रात
1: से जुड़ा
0: कामना है
1: और इस पावन अवसर
0: पर
1: जीवन में
0: या रात
1: शांति
0: सच्चे मन
1: और सकारात्मक
0: ऊर्जा
1: भक्तों के लिए
0: विशेष
1: माँ शैलपुत्री
0: की
1: महिमा
0: अपरंपार।
1: माँ
0: शैलपुत्री
1: की पूजा
0: के साथ
1: नवरात्रि
0: के पावन
1: पर्व
0: और शुरुआत
1: होती
0: है
1: संचार
0: भक्तों की कामना है कि
1: माँ

0: शांति और शक्ति का हो संचार।
1: और मौसम में सूखे की स्थिति को देखते हुए मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी। सलात इस्तिस्का नाम की ये प्रार्थना मौवाक्फा में सुबह की नमाज फज्र के बाद होगी। और मौसम में सूखे की स्थिति और इमाम फादिल नकलन कॉक्स ने मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना ऐसे समय हो रही है जब मौवाक्फा जलाशय में पानी का स्तर नाम की ये प्रार्थना मौवाक्फा में सुबह की नमाज केवल 35.7% मस्जिद के सदस्य और इमाम फादिल नबी ने इसकी जानकारी दी है कि ये पहल लोगों से ऐसे समय हो रही है जब मौवा को जलाशय और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की भी अपील की है। कुल क्षमता ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ ही टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ रहा है। रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा लोगों से पानी अगले गुरुवार 15 अक्टूबर की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ यानी एमआरए के अनुसार पर दबाव बढ़ रहा है। रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा जमा की जा चुकी गुरुवार 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि जमा करने में मदद की जरूरत करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। एमआरए आज रविवार को विशेष रेवेन्यू अथॉरिटी यानी एमआरए के अनुसार 9 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से 17,000 बजे तक टैक्स रिटर्न जमा किए जा चुके थे। जिन करदाताओं को रिटर्न जमा करने में मदद की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद विशेष खाली सेवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 9 बजे से 4 बजे हो गई है जबकि 300 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार घायलों में कुछ की हालात गंभीर है। हमले के बाद हवाई अड्डे पर राजधानी रियाद के शेख खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 200 अन्य घायल हुए हैं। जॉर्डन अधिकारियों के अनुसार घायलों में कुछ सूडान तथा मिस्र की हालात गंभीर है। हमले के बाद हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन रोक दिया गया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार मृतकों में 4 सऊदी नागरिक बांग्लादेश के 2 नागरिकों को जिम्मेदार ठहराते फलिस्तीन सीरिया सूडान तथा मिस्र सऊदी अरब के समर्थन नागरिक शामिल हैं। और देश सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य रखने वाले हूती विद्रोहियों के हमले का जवाब दिनों में संघर्ष दी है। गठबंधन ने शनिवार को पूर्वी सऊदी विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहरा शहर में से युद्ध अपराध बताया है। यमन में सऊदी अरब के हवाई अड्डे के पास सरकारी सेना और देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों के बीच हाल के दिनों में संघर्ष तेज हो गया है। शनिवार को पूर्वी सऊदी अधिकारियों ने बताया कि हूती विद्रोह शहर में स्थित हमलों में एक पायलट समेत 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी एक मौत हुई थी। 6 और 7 अक्टूबर को सऊदी नेतृत्व वाली सैन्य गठबंधन ने हुए हमलों में भी 3 लोगों की एक दिन पहले अधिकारियों ने बताया कि हूती विद्रोहियों के 2 हमलों में एक पायलट समेत 3 सऊदी और उधर अमेरिका में तूफान इयास के असर और 7 अक्टूबर में सऊदी अरब की 2 बाधित हवाई अड्डे पर हुए हमलों में आपूर्ति पर नजर लोगों की जान गई थी। वेबसाइट विद्रोहियों को पावर का समर्थन stage.com के अनुसार नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में तूफान इयास के असर से कई राज्यों में बिजली है। हालांकि बाधित हुई है कारण बिजली आपूर्ति पर नजर रख ने अवाली तूफान वेबसाइट नॉर्थ कैरोलिना से होकर गुजरने की आशंका है। लेकिन कैरोलिना में 12,400 से अधिक राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका जता रही है। वहीं फ्लोरिडा में जहां तूफान कल पहुंचा था तूफान के नॉर्थ कैरोलिना से होकर गुजरने की आशंका नहीं है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका जताई है। वहीं फ्लोरिडा में जहां तूफान कल पहुंचा था 4,00,000 उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने बाधित है से ही काम शुरू कर दिया है। अलाबामा में ब्रॉन डिसांटिस के अनुसार अधिक उपभोक्ताओं की बिजली 80% से राज्य में 16,00,000 बिजली चली गई है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों के कारण कल रात बिजली आपूर्ति बहाल करने में कठिनाई अलाबामा में भी उधर 2,51,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बहाल है। जॉर्जिया राज्य में 16,00,000 कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। भारी बारिश और सभाओं के कारण बिजली आपूर्ति बहाल करने में कठिनाई आ रही है। उधर जॉर्जिया में 92,000 से अधिक हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित है। जॉर्जिया पावर कंपनी के अनुसार कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इसी बीच मेक्सिको के प्रशांत तटीय बहाल कर रहा तूफान साइमन और दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा अमेरिका के तूफान रिचर्ड हिस्सों में तूफान इयास ने जो तबाही मचाई है इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच मेक्सिको की प्रशांत तटीय ओर बढ़ रहा तूफान बढ़ते हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

0: हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है। पूर्व से आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व दक्षिण और सतपाटी पर
1: हम मौसम संबंधी जानकारियों बारिश होगी।
0: हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है। पूर्व से आने वाले बादल
1: के दौरान विशेषकर
0: पूर्व दक्षिण में हमारे स्थानीय पर प्रभावित होगी। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व दक्षिण सतपाटी पर बादल घिरेंगे और बारिश होगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल रेखा रचना सामान्य रहेगा।
1: रात के दौरान विशेषकर
0: पूर्व दक्षिण और सतपाटी पर जोर बारिश होगी। तापमान सुबह के समय पूर्व दक्षिण पर
1: 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच चंद जरूरी सलाह गर्जे तो जनता को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें, खुले मैदानों में तथा पेड़ों के नीचे न जाएं। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर, सूर्यास्त
0: समाप्त हो चला। हमारे साथ कंसल्ट पर यूसुफ थे जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं, समाचार डेस्क को भी धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों को भी आपको धन्यवाद देते हैं। अभी साथ के लिए हम बढ़ते हैं शुभ समाचार श्रीमती पारमावती रामधानी जिन्हें कुष्मा के नाम से बुलाता जानते थे,
1: शोक समाचार सुनिए।
0: उनकी अर्थी आज भाई सुनील दत्त रामधानी
1: श्रीमती
0: परमावती
1: रामधानी
0: कुष्मा के नाम से बुलाता जानते थे कि मृत्यु हो गई
1: 100 ईयर्स ओल्ड की
0: श्रीमती कांती भाई सुनील दत्त रामधानी की
1: अर्थी
0: और जिन्हें दादी शमशान भूमि ली जाएगी
1: उनके नाम से बुलाता जानते थे कि मृत्यु हो गई
0: जिन्हें अनिल के नाम से मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 75 ईयर्स ओल्ड
1: जिन्हें सुभाष के नाम से
0: बुलाया जाते थे
1: कि मृत्यु हो गई है। उनकी
0: अर्थी आज सुबह 10 बजे सुन के घर
1: श्री काबी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए
0: जिन्हें कवि के नाम से बुलाया जाते थे कि मृत्यु हो गई है।
1: उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे
0: उनकी पत्नी श्रीमती भारती दीपिनी में पार्वत लेन
1: इलो दीपिनी से उठाकर अंतिम
0: संस्कार 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्री काबी राम की सुन
1: श्री काबी
0: मुसलमान व्याजे
1: नंबर 2 पृथ्वी व्याजे पॉइंट साबल में
0: उनकी अर्थी आज मुसलमान
1: लिस्बन
0: श्रीमती भार नंबर
1: 2 पृथ्वी व्याजे
0: इलो दीपिनी से उठाकर 85 साल की वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी
1: श्रीमती गोइंदामा माधुरे
0: श्रीमती गोइंदामा माधुरे
1: जिन्हें माता नायकन
0: के नाम से पृथ्वी व्याजे पॉइंट साबल में
1: उनकी अर्थी आज मुसलमान व्याजे
0: लिस्बन
1: के बेटे
0: नंबर 2
1: पृथ्वी व्याजे नायकन
0: माधुरे में
1: 85 साल की
0: 85
1: श्रीमती गोइंदामा माधुरे
0: शमशान भूमि ले जाएगी नायकन
1: के नाम से बुलाता जानते थे कि मृत्यु हो गई है।
0: मुसलमान अफ्रे लोशे
1: में बेटे
0: अंगामुतु
1: नायकन माधुरे
0: की खैर
1: के पृथ्वी व्याजे पॉइंट साफ से उठा करंतिम संस्कार के लिए
0: श्रीदिनेश रामियाल
1: जिन्हें बन्दी शमशान भूमि ले
0: जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 एम
1: के नाम से बुलाता जानते थे कि मृत्यु हो गई है। मुसलमान
0: अफ्रे लोशे तेरोज में
1: 43 साल
0: के 43 ईयर्स ओल्ड
1: की श्री दिनेश रामनियाल
0: के 12 बजे दिनेश
1: रामनियाल
0: जिन्हें बंटी असामी
1: आयो
0: मुसलमान गाफरे
1: लोग जिन्हें उसे बुझा कर अंतिम संस्कार
0: और जो बीच एंड जुएल
1: शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9
0: के मालिक थे
1: उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे

0: Sal,
1: avenu Virasami,
0: Ayo,
1: Salmer Afri, le chute rouge, c'est au Takan, et
0: je suis allé par les bruits,
1: valet des provinciales, Castelmé,
0: Jajagi,
1: Assimilante,
0: Krishna
1: Mangrush, Krishna Mangrush, Krishna Mangrush,
0: Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah, Shri Pravin Lal Devchan Karman Shah,
1: वो बसें से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन ऑन ट्यूसडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
3: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout.
2: On the hour, every hour, Radio
3: Mauritius. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité. La MBC se réinvente et vous accompagne désormais aucune nouveauté. Avec l'application la richesse des contenus de la notre MBC sur une nouvelle plateforme digitale. Regardez vos chaînes TV en direct. Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité. Découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile, MBC au bureau ainsi que notre nouveau site web MBC.fr. Regardez vos chaînes TV en direct. Écoutez vos radios préférées en live. Suivez le JT, les courses MBC. Consultez la programmation et profitez du replay. Où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, sur la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
2: Sports News.
4: 819 किलोहर्ट्ज़ सुनने वाले को भी कास्ट रामनी का प्यार भरा नमस्कार। मॉरिशस खेल समाचार में आपका स्वागत है और इस समय सुबह के साढ़े दो मिनट और दो मिनट आज रात 7:30 बजे इंग्लिश प्रीमियर लीग महान मुकाबला एनफील्ड में लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के बीच भरा जो खास तौर पे सिटी की सेहत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हार्दिक शुभकामनाएं के आज रात 7:15 बजे इंग्लिश प्रीमियर लीग में आरोप के मुकाबले में है निर्धारित है और लिवरपूल के लाल आज अपने घर मैनचेस्टर सिटी के बीच खास तौर पे सिटी की सेहत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इंग्लैंड का दूसरा मैच के स्काई ब्लूज 115 अपने ही बंगले में के घेरे में है फंस गए लिवरपूल के लाल खिलाड़ियों के बावजूद टोटनहम हॉटस्पर इंजरी टाइम में उन्हें ललकारा या फिर कम से कम कोशिश तो करेंगे और इस बीच इंग्लैंड का दूसरा लाल भाग में कोई भी गोल न बन पाया तो सेकंड हाफ में दूसरे अपने ही बंगले में 73rd मिनट पर ब्रायन एम्बिलारियों के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड को आने किया इंजरी टाइम में उन्हें ललकारा यानी 5 मिनट बाद ही 78 को पर घायल रोड्रिगो बेंटन खेल के प्रथम भाग में कोई भी गोल न बन पाया तो सेकंड हाफ में और भी कमजोर पड़ गया लेकिन मिनट पर जाकर एमबेमो ने खेल के मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे किया। मिनट पर डोमिनिक सोलांकी 5 मिनट बाद 78 मिनट पर फाइनल रिजल्ट बेंटन को मिला रेड कार्ड टोटनहम हॉटस्पर एक टोटनहम हॉटस्पर और भी कमजोर पड़ गया लेकिन इंजरी टाइम में जाकर खेल के 92 बाकी नतीजे इस प्रकार 92nd मिनट पर डोमिनिक सोलांकी डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल ने फाइनल टाइटल मैनचेस्टर यूनाइटेड किया टोटेनहम हॉटस्पर

एक ही दो एक से लीड्स माइकल कैरिक को हराकर फिर से दबाव में प्रेशर में आ गया। पहला गोल स्कोर किया 55 इस प्रकार है। कल की पर्ली की कॉफ में डिफेंडिंग चैंपियन कोलाइजर ने 70वें मिनट पर ब्रूनो की मैरिज ने विनिंग गोल स्कोर करके आर्सेनल को अपने टाइटल की दो एक से लीड्स माइकल को हराकर हालांकि लीड्स के जस्टिन ने ही पहला गोल स्कोर किया 55वें मिनट पर और से लेकिन 62वें पर में बोल मूव की कोलाइजर और 70वें मिनट पर ब्रूनो की मैरिज ने विनिंग गोल स्कोर करके आर्सेनल दूसरे मिनट पर आगे और 70वें पर लीड्स मोगन रोजर्स ने 30वें मिनट पर और वाओ पेड्रो का एक डबल और से स्टैमफोर्ड ब्रिज में बोर्नमुथ को 5-1 से पछाड़ा। जॉर्डन एंडरसन का एक डबल खेल के दूसरे मिनट पर भी और 70वें पर मोगन रोजर्स यात्रा 30वें मिनट पर और वाओ पेड्रो का एक डबल 2-0 से हराया। चेल्सी 5 और बोर्नमुथ का एक गोल खेल के फुलहम और इसमें 2-1 से हराया। ब्राइटन मैच को लेकर क्रिस्टल पैलेस वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट रखी जा रही है। सिटी का मुकाबला एवर्टन से और आज समस्याओं से बचे भुलेगी या फिर लिवरपूल के आगे निकल पाएगी। लिवरपूल का मुकाबला मैनचेस्टर साबित करना है कि लिवरपूल के है और एक दो मैच जीतने वाली को लेकर बहुत सारी सभी मैचों में वो रखी जा रही है सकता है। इस कारण आज रात अपनी समस्याओं से उबर पाएगी या फिर लिवरपूल के आगे निकल पाएगी। मैनचेस्टर सिटी राउला को भी साबित करना है कि लिवरपूल केवल एक दो मैच जीतने वाली टीम नहीं रही बल्कि लालिगा की ओर जहां ललकार सकता है। इसका आज रात रियल मैड्रिड 7:30 बजे दोनों की देखना है कि कौन कितने पानी में है। मैड्रिड ने केवल 1-0 से जीत हासिल की। आज रात बार्सिलोना ने 3-3 गोल दागे। बढ़ते हैं रियल मैड्रिड स्पेन विलारियल लालिगा की ओर जहां विनिसियस जूनियर और रियल मैड्रिड गोल फिर दोनों की रिकॉर्ड जीत ली है। मैड्रिड ने पर केवल 1-0 से जीत हासिल की। जूनियर को एफसी बार्सिलोना ने 3-3 गोल रियल मैड्रिड एक विलारियल बार्सिलोना ने अपनी ओर से विनिसियस को 3-0 से तोड़ा। ये गोल फिर उसको पहला गोल भी मिला बार्सिलोना के लिए पर खेल के दूसरे मिनट पर ही गोल गैब्रियल मेजुस और विनिसियस को रेड कार्ड ने बाकी गोल स्कोर किया। विलारियल बार्सिलोना 3-0 बार्सिलोना ने अपनी ओर से रेटाफे को 3-0 से तोड़ा। एंटोनी गॉर्डन का पहला गोल एफसी बार्सिलोना के लिए वो भी खेल के दूसरे मिनट पर ही गैब्रियल मेजुस और जिल कुंडे ने बाकी गोल स्कोर किए। बार्सिलोना 3 ने गोल तो नहीं बनाया लेकिन उसने दोनों असिस्ट मैड्रिड साइबारियो और वालेकोनो और एटलेटिको मैच बैन म्यूनिख बर्खास्त कर दिया गया। होफेनहाइम जर्मनी के बुंडेसलीगा में बैन म्यूनिख ने एविजाकर ऑक्सबर्ग के साथ मैच ड्रॉ किया। 4-2 पलेबोन हैरी ने गोल तो नहीं बनाया लेकिन उसने दोनों असिस्ट भी किए। 0 साइबारियो और ब्राउनिक ने ऑक्सबर्ग 2 बैन म्यूनिख को 6-0 से होफेनहाइम 2 हैमबर्ग एसवी 3 शानदार हैट्रिक बायर इन लेवरकुसन 4 पलेबोन सीरिया में इंटर मिलान 3 बर्लिन 1 एवर्सबर्ग 0-0 मिलान के लिए एफसी लाइप्ज़िग ने हैनोग्लू और एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट को 6-0 से परास्त किया। नापोली ने भी फ्रोज़िनोनी को 3-0 से ही परास्त किया। केविन डी ब्रुइन ने एक डबल स्कोर किया। नापोली के सीरिया में इंटर मिलान 3 फ्योरेंटिना 0 फ्रांस मिलान के लिए सुसिच हैनोग्लू और हॉले हॉले डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन आगे बढ़ रही है। नापोली ने भी फ्रोज़िनोनी को 3-0 से ही परास्त किया। केविन डी ब्रुइन ने एक डबल स्कोर किया नापोली के लिए। जिनोवाटो और लुकास बेराल्डो ऑन टारगेट के लिए पारी टीम में धीरे धीरे हॉले हॉले डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन आगे बढ़ रही है। लोयोक डिफेंस में उसने ल्यूमों को 0 पारी एफसी की हार हुई। परास्त किया उसने एंजे को 5-1 से हराया। अक्लियुश और लुकास बेराल्डो ऑन टारगेट 0 बालकरेया 1 मोनाको और टूलूज ने मैच ड्रॉ किया 2-2 क्रिकेट में लोयोक 1 पारी एफसी 0 पारी एफसी की हार हुई। ब्रेस्ट बीच आज इंडोर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज इन दो देशों के बीच एक एक की बराबरी फुटबॉल के अलावा क्रिकेट कार्लोस अल्काराज कास्पर रूड ओजे अल्यासीमे डैनियल मेडवेडेव और वेस्ट इंडीज के बीच सब के सब शंघाई होलकर स्टेडियम में तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज इन दो देशों के बीच सिंगापुर ग्रैंड प्री में टेनिस में कार्लोस अल्काराज कास्पर रूड ओजे अल्यासीमे डैनियल मेडवेडेव और वेस्ट इंडीज के बीच सब के

0: सब शंघाई ओपन के लास्ट 32 राउंड बहुत कुछ है,
1: बहुत सारे मैच
0: फॉर्मूला 1 मोटो रेसिंग चैंपियनशिप आज की सिंगापुर ग्रैंड प्री में मैक्स वेरस्टैपेन पेनमैनियो में आगत सप्ताह की तरह
1: कप रखा
0: पोल पोजीशन से रेस शुरू करेगा। क्षेत्रीय स्तर पर भी मॉरिशस में
1: ओलंपिक विदेहों कप पेनमैनियो में बहुत सारे मैच खेले जा रहे हैं।
0: सबसे पहले खास तौर पे 3 बजे पेनमैनियो में मुकाबला मैड्रिड
1: पेनमैनियो में आज
0: दूसरा मैच जो कप रखा गया है जिसमें विदेहों का है खेलेंगे रोजबेल
1: ओलंपिक
0: मुकाबला है
1: सिलेक्शन
0: पेंडेंट कैरोलिन से वही
1: इस पोची है और
0: कैरोलिन जिने स्पोर्टिव दे कैरोलिन फुटबॉल टूर्नामेंट दिवाली कप
1: के अंतर्गत सुबह के 7 बजे
0: आज शाम 3:30 बजे वही के मैदान पे
1: क्यूपी
0: प्रेसिजन मिल का मुकाबला है एफसी कैरोलिन से वही पेची बॉय कैरोलिन के।

0: Crisis.
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité. La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Regardez vos chaînes avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité. Découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Bureau ainsi que notre nouveau site web mbc.nu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement. La MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
2: लोगों के लिए पढ़ते हैं दो विज्ञप्तियां सेंट्रल
3: NBC रेडियो 24 आवर्स अ डे
2: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लमाह के निवासियों को सूचित करता है
4: इस समय सुबह के 7:11 हुए हैं हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर है और आप ये गली लगते हैं दो विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी गली लाफोरे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लमाह के निवासियों को सूचित करता है कि लाफासरी गली बेटो और दो जार्डिन केबला गली लीला गोयाफी गली लक्ष्मी गली मोसिल मोस्टू गली लाफोरे गली लाफोरे आज रविवार 11 अक्टूबर गली को सुबह 8:00 से शाम के 5:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से केबला गली लीला गली और मोसिल मोस्टू गली में तथा रॉयल रोड में आज रविवार में के मायबू के निवासियों को सूचित करता है 8:00 से शाम के 5:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से रॉयल रोड मेबा के एक भाग में जो सिम के आसपास पाया जाता है आज रविवार 11 अक्टूबर को सुबह 8:30 इधर मेबा के मायबू के निवासियों को सूचित करता है सीपी की लाशो रॉयल रोड मेबा के एक भाग में जो सिम के आसपास पाया जाता है आज रविवार 11 अक्टूबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी मरम्मत कार्यों
5: की बाहर सुबह का नजराना
2: ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी
4: तो अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति सुन रहे थे और हम लेकर आए हैं आपके लिए सुबह का नजराना तो अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति सुन रहे थे और वहाँ पर आए हैं आ गया है नवरात्रि का आगमन हर नजराना जब सुबह का मिलता है तो

मन भगवान को बहुत हर्ष और उल्लास में हर माता बहुत ही श्रद्धा के साथ धन्यवाद देता है। और अभी तो अपने नवरात्रि का महापर्व भी आ गया है, नवरात्रि का आगमन है, माता हर हमारे हृदय में एक अलग सा उल्लास दूर करें, हर किसी के मन हर्ष और उल्लास में और हर माता धन करें, जय भक्ति नवरात्रि के साथ अपने दिल में भक्ति लिए हुए अर्चना व्रत में संलग्न है। माता से प्रार्थना है कि वे सभी का संकट दूर करें, हर किसी

0: संस्कारों का क्या महत्व?
1: प्रिय श्रोताओं,
0: सादर नमस्ते।
1: विचार करें,
0: महर्षि राजानंद
1: के सामने
0: मानव जीवन के निर्माण के लिए
1: शिक्षा देने का प्रश्न उठा।
0: बहुत
1: ब्राह्मणों ने
0: राजा को सुझाव
1: संस्कारों
0: दिया
1: का क्या
0: महल में
1: है,
0: राजकुमारों की
1: विचार
0: की
1: व्यवस्था की जाए।
0: राजा दशरथ
1: राजा
0: ने
1: यह सुझाव
0: जब अपने पुत्र को
1: शिक्षा देने का प्रश्न उठा,
0: अपनी आँखों
1: ने राजा को
0: सुझाव
1: दिया
0: नहीं चाहते
1: कि महल में ही
0: परंतु
1: राजकुमारों
0: की
1: शिक्षा की
0: व्यवस्था
1: की
0: जाए।
1: संस्कार प्राप्त
0: राजा
1: करने
0: को
1: यह सुझाव
0: यह
1: आवश्यक है
0: क्योंकि
1: वे अपने
0: ऐसे
1: स्थान पर
0: भेजा जाए
1: जहां
0: प्रतिदिन
1: नहीं
0: धर्म का
1: उपदेश
0: दिया
1: जाता
0: है।
1: मंत्रियों ने
0: गुरु
1: कहा
0: की सेवा की
1: संस्कार प्राप्त करने के
0: स्थान
1: यह
0: आवश्यक
1: है
0: कि
1: बालकों को
0: ऐसे
1: स्थान
0: पर
1: भेजा जाए।
0: राजा
1: दशरथ
0: जहां
1: प्रतिदिन
0: धर्म
1: का उपदेश दिया
0: जाता है
1: गुरुकुल में
0: और
1: गुरु
0: की
1: सेवा
0: ऋषि
1: वशिष्ठ
0: ने
1: वैदिक
0: धर्म
1: का
0: ज्ञान
1: एक
0: गुरुकुल
1: चारों
0: राजकुमारों
1: की सलाह
0: पर
1: किया।
0: राजा
1: दशरथ
0: कारण
1: है
0: अपने
1: जब
0: एक
1: भाई
0: ऋषि
1: वशिष्ठ
0: के
1: गुरुकुल
0: में
1: भैया
0: कहकर पुकार
1: ऋषि
0: वशिष्ठ
1: ने
0: तब
1: इस
0: वैदिक
1: धर्म
0: का
1: ज्ञान
0: देकर
1: चारों
0: राजकुमारों
1: को
0: पुत्र
1: संस्कारित
0: अपनी
1: माँ
0: को
1: यही
0: कारण
1: है
0: था
1: कि
0: जब
1: एक
0: भाई
1: दूसरे
0: भाई
1: को
0: झलकता
1: भैया
0: कहकर
1: पुकारता
0: था
1: अपनी
0: पत्नी
1: को
0: करुणा
1: निधि

0: का भाव होता था, कोई इसमें अपनी माँ को माते कहता था, मित्र तब अपने मित्र को आदर का भाव झलकता था, स्नेह व्यक्त करता था, अपनी पत्नी को चारों राजकुमारों ने कहकर गुरु वशिष्ठ करते थे आश्रम में, तो इसमें धर्म प्रेम प्रकट होता था। इसीलिए मित्र हर एक अपने मित्र को प्रिय कहकर से अपना स्नेह व्यक्त करता था। अपने चारों राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कई वैदिक रुपये खर्च करते हैं। इसलिए हर एक का जीवन की शिक्षा देने के लिए सुंदर बिल्कुल खर्च नहीं करते। अपने बच्चों की गाड़ी में शिक्षा पर को ट्यूशन ले जाते हैं, कई लाख रुपए खर्च करते हैं, नहीं हो जाता, लेकिन तब उन्हें गाड़ी में ही शिक्षा देने के लिए वे बिल्कुल खर्च नहीं करते। वे अपने बच्चों को गाड़ी में किसी सत्संग में नहीं ले जाते हैं, नौकरी दिलाने वाली शिक्षा के साथ नहीं हो जाता, बच्चों को जोड़ने तक वे गाड़ी में ही इंतजारों से उन्हें हैं। न जोड़ना, परंतु एक दिन भी गलती है, वे अपने बच्चों को किसी सत्संग में नहीं ले जाते, स्वयं माता नौकरी दिलाने वाली शिक्षा के साथ बच्चों को जोड़ने के बाद खाकर संस्कारों से उन्हें न जोड़ना कूड़ेदान में ऐसी भारी गलती है, तो यह एक सामान्य कार्य होता है। बच्चों को व्यक्ति और स्वयं माता पिता को छिलका रास्ते पर फेंकता है, एक व्यक्ति गलत काम होता है, और व्यक्ति यदि किसी कूड़ेदान में फेंकता है रास्ते पर, तो यह एक सामान्य केले का छिलका उठाकर व्यक्ति कूड़ेदान में डालता है, छिलका रास्ते पर फेंकता है, तो यह गलत काम होता है। करने वाला व्यक्ति, और व्यक्ति यदि किसी दूसरे द्वारा रास्ते पर फेंका हुआ एक बूढ़े केले का छिलका उठाकर कूड़ेदान में डालने के लिए, तो यह बेटे की सहायता मांगता है। बेटी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति अनसुना होता है। एक बहन पलंग पर पड़ी हुई एक सोढ़ी पर अपने कमजोर की जगह पर बैठ गई, जाने के लिए उसे ढकेल कर बेटे की सहायता मांगी। एक पत्नी बेटे ने माँ को सुनकर भी भोजन अनसुना कर दिया। पति ने देखा बहन की थाली में वह सब्जी सोफे पर जो उसे पसंद नहीं है बैठ गई, तो नाराज भाई ने उसे ढकेल कर भोजन की थाली पटक दी। पत्नी ने दो लड़के अपने रास्ते पर भोजन पड़ोसा बच्चे ने कर रहे थे कि थाली में वह सब्जी है जो उसे पसंद नहीं है, मुख से तो गालियां निकल रही थी। पति ने भोजन की थाली पटक दी, एक कर्मचारी ने काम पूरा करने के लिए दूसरे कर्मचारी से सहायता मांगी। साधारण दूसरे कर्मचारी ने कहा उनके मुख से काम है गालियां निकल रही थी। एक दफ्तर घर के भीतर कर्मचारी या बाहर काम पूरा करने के लिए व्यक्ति दूसरे कर्मचारी से सहायता मांगी हो जाए, दूसरे कर्मचारी ने हो जाता है तुम्हारा काम है मैं क्यों करूं। श्रोताओं, कोई घर के भीतर हो या बाहर, पिता हर स्थान पर शिक्षक का व्यवहार प्रयास जब क्यों न हो जाए कि बच्चों की अकादमिक शिक्षा पूर्ण हो, संस्कार और प्राप्त करने में धार्मिक शिक्षा कोई कमी रह गई है, शिक्षा में माता पिता कोई कमी न रहे, शिक्षिका बच्चों को ऐसा प्रयास क्यों न करे और संस्कार भी अकादमिक शिक्षा पूर्ण हो, संस्कारी बने उनकी और आनंद धार्मिक शिक्षा धन्य और संस्कारों की शिक्षा में भी कोई कमी न रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से। सुबह का नजराना रेडियो
1: इस समय सुबह के 7:28 हुए हैं। हमारा आपका साथ हो रहा है। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम ऐसा
0: सुबह का नजराना रेडियो है, बल्कि
1: एक साल में इस समय सुबह के 7:28 हुए हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर हो रहा है। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम जो एक जमाने का बहुत मशहूर सा गाना है, बल्कि एक साल गाना हम पेश कर रहे हैं। आप गाने को बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1995।

0: 1993 की बात कर रहे हैं,
1: कुमार सानू की सुनिएगा।
0: और ये गाना हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए फिल्म

0: झलकियां
1: झलकियां
2: और हमारे रेडियो मॉरिशस कार्यक्रम में इस
3: झलकियां में चलिए जरा एक झलक हम देखते हैं हमारे रेडियो कार्यक्रमों की ओर। हमारे रेडियो मनोरंजन पर जो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम
2: बीच में
3: और हमारे समाचार सुन पाएंगे उस कार्यक्रम में इस वक्त आपके नाम सुबह का नजराना जिसके दौरान कुछ गाने
2: फिर आप 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद सुन पाएंगे
3: और ये कार्यक्रम चलेगा 9 बजे मंगलाचरण के दौरान
2: बीच में आप 8 बजे भोजपुरी
3: समाचार सुन पाएंगे
2: उसके बाद
3: मोर्चा सनातन
2: आपके नाम प्रोग्राम होगा
3: फिर आप 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम
2: बज़्मे अकीदत कार्यक्रम होगा
3: और आज मंगलाचरण के दौरान
2: कार्यक्रम होगा
3: मोर्चा सनातन धर्म समाचारों के बाद
2: 11 बजे के संक्षिप्त
3: समाचारों के बाद
2: आप सुन पाएंगे
3: प्रोग्राम
2: जिसे पेश करेंगे सुंदरम
3: बज़्मे अकीदत कार्यक्रम होगा
2: उर्दू भाषा में
3: जिसे निशा पेश करेंगे 10 बजे
2: की मराठी प्रोग्राम आज का
3: जो 1 बजे
2: 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद
3: आप
2: जिन
3: लेके
2: आएंगे आज का चाइनीज प्रोग्राम
3: जिसे पेश करेंगे 3:30 बजे
2: तक और 12:30 बजे आप सुनेंगे
3: आज वर्षा की प्रस्तुति में प्रीति पेश करेंगी मराठी प्रोग्राम आज का
2: जो 1:00 बजे 4:00 बजे
3: होगा हम
2: और आप
3: जिन लेकर आएंगे आज का चाइनीज प्रोग्राम
2: पूजा ही लेकर आएंगे आज का 3:30 बजे
3: तो हर पसंद कार्यक्रम
2: 3:30 बजे
3: आप सुन पाएंगे
2: आज का गुजराती
3: 6:00 बजे समाचार बुलेटिन होगा उसके बाद 6:30 बजे
2: हम पूजा की प्रस्तुति
3: आज का पूजा ही लेकर आएंगे आज का हमारा
2: 7:00 बजे
3: होगा तमिल प्रोग्राम
2: पुवाना की प्रस्तुति में
3: कृति काली कराएंगे
2: छह बजे
3: समाचार बुलेटिन होगा उसके बाद 6:30 बजे
2: हम
3: पेश करेंगी आज का प्रोग्राम
2: 8:10 मिनट
3: पर भजली प्रवाना की प्रस्तुति में
2: कृति काली कराएंगे
3: जिसे रोशनी लेकर आएंगे
2: 7:00 बजे
3: उसके बाद 8:40 मिनट
2: पर श्री
3: समीर पेश करेंगे
2: आज का
3: महिलेश्वर
2: कार्यक्रम
3: 8:10
2: और नवरात्रि का आरंभ हो चुका है
3: सो
2: रात्रि के
3: 9:00 से 10:00 बजे
2: तक
3: उसके बाद
2: 8:40 मिनट
3: पर
2: आप सुन समय
3: पेश करेंगे आज का कार्यक्रम
2: फिलेशब
3: माता दुर्गा पर
2: आधारित माता जगदम्बे पर आधारित
3: और नवरात्रि का आरंभ हो चुका है
2: सो
3: रात्रि के 9:00 से 10:00 बजे तक
2: फिर उसके बाद 10:00 से 11:00 बजे
3: तक आप सुन पाएंगे
2: विशेष कार्यक्रम
3: प्रोग्राम
2: माता दुर्गा पर आधारित माता जगदम्बे
3: और
2: आज 11:00 से 10:00 बजे
3: तक
2: पूनम की प्रस्तुति में
3: फिर उसके बाद 10:00 से 11:00 बजे
2: तक उषा ही पेश करेंगे
3: फिलहाल याद दिलाते हैं रेडियो
2: मॉर्निंग में रात्रि के 11:00 बजे से
3: 12:00 बजे
2: तक पूनम की प्रस्तुति

ऐसी में पुराने गानों का प्यारा सा प्रोग्राम सुनहरे पल सुनिए। फिर हाथे याद दिलाते हैं रेडियो मॉरिशस पर इस वक्त हम आपके लिए सुबह का नजराना पेश कर रहे हैं और ये छोटा सा नजराना आपके लिए गुनगुनाने के लिए, मन को खुश करने के लिए, थोड़ा सा झूम जाने के लिए। आहिस्ते आहिस्ते जो झूमिएगा ये गाना गुनगुनाने का मजा अलग सा आ जाएगा आपको।

0: Click le e-filing saison 26 et suivre Ban S. Pour toujours faire un individual income tax return 26, profitez de la seulement 5 jours pour remplir le à travers le site web de la MRE. Après que vous finissez de mettre return, ou capable de e-filing saison 26 et suivre Ban S. Et remplir le e-filing pour un rendez-vous le 25 et deuxième site de la MRE et pour remplir le return à travers WhatsApp. Remplir le return après que vous finissez de mettre return. Ce qui part par d'ici dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remporte ND73
1: prix. Premier prix,
0: 25 euros. Deuxième prix, 15 000 euros. Et troisième prix, 10 000 euros. Faire vite, remplir au return avant le 15 octobre. Passer ce ticket, vous risquez une pénalité et l'intérêt.
1: प्रोग्राम्स की झलकियाँ
2: एक ऐसा बम भरा एक ऐसा बम भरा
1: 11 अक्टूबर को आपके या एक शूटर की पोस्ट काली उनके बारे में
2: तो अपनी जिंदगी में मक्खी नहीं मारी है सर आदमी क्या मारोगे सर
1: अल्बर्ट मूवी तुषार कपूर और सुनील शेट्टी पर फिल्माई गई कॉमेडी से भरपूर मूवी 1 2 3 रविवार 11 अक्टूबर को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म 1 2 3 2008 की मूवी तुषार कपूर प्रोग्रामों का खजाना पर फिल्माई गई कॉमेडी से भरपूर मूवी 1 2 3
3: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है
4: उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा दुनिया
1: प्रोग्रामों का खजाना
4: देश राम के घरों से चलता है
3: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है
4: उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं
1: अक्षय कुमार और सेतु अरुचा पर फिल्माई गई राम सेतु रविवार 11 अक्टूबर को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म राम सेतु अक्षय कुमार और नुसरत भरूचा पर फिल्माई गई राम सेतु

0: शक्ति प्रदान करती हैं, जहां आंतरिक शक्ति होती है वहां कोई भी बाधा नहीं।
1: नौ रात्रियों का ये महापर्व आ चुका है।
0: हमारे मन को शक्तिशाली बनाने की ये रात्रियां
1: गांव के छोर पर
0: माँ हमारे हृदय को शक्ति प्रदान करती हैं।
1: उस पेड़ के नीचे
0: शक्ति होती है
1: वहां
0: कोई भी बाधा नहीं।
1: शक्ति क्या होती है?
0: चलिए
1: इसी वह आंतरिक अखाड़े के पहलवानों को देखता
0: आपको
1: तो यह सोचता
0: गांव के ये इतने भारी भारी
1: विशाल उठा देते हैं
0: शायद
1: उन्हीं में
0: इतनी शक्ति होती
1: है।
0: उनकी शक्ति असीम होती है।
1: शक्ति क्या
0: उसके पिता गांव के सरपंच थे
1: जिनके
0: एक इशारे पर सब काम हो जाते थे।
1: सोचता
0: कि ये
1: उसे लगा भारी भारी मुग्धता उठा देते
0: हैं। पद और अधिकार
1: उन्हीं में
0: इतनी शक्ति होती है।
1: एक दिन
0: उनके
1: गांव में
0: भारी
1: तूफान
0: आया।
1: उसके पिता गांव के सरपंच थे
0: कच्चे
1: जिनके एक इशारे पर
0: सब
1: काम तबाह कर दिया।
0: तूफान
1: लगने के बाद
0: पूरा गांव
1: मायूस
0: था।
1: अधिकारी
0: हर तरफ
1: असली नुकसान का मंजर था।
0: एक दिन
1: गांव में भारी तूफान
0: अन्य बड़े लोग
1: इस अचानक आई विपदा
0: से परेशान होकर
1: छतें
0: उड़ा दी और खेतों को तबाह
1: किसी को समझ नहीं आ रहा था।
0: तूफान थमने के बाद
1: पूरा गांव में मायूस था।
0: गांव की एक
1: हर तरफ नुकसान
0: जिन्हें सब काकी कहते थे
1: आरव के पिता
0: अपने गांव के
1: अन्य बड़े लोग
0: इस अचानक आई विपदा
1: से परेशान होकर बैठ गए
0: थे।
1: शरीर कमजोर था,
0: किसी को समझ नहीं आ रहा था
1: कि शुरुआत कहां से करें।
0: लेकिन उनके चेहरे पर निराशा
1: का वृद्ध महिला
0: जिन्हें सब काकी
1: उन्होंने अपनी कांपती आवाज में
0: गांव वालों से कहा
1: बाहर
0: रोने और बैठने से
1: यह
0: मलबा
1: साफ
0: नहीं होने वाला।
1: कमजोर
0: जिसके पास
1: जो भी
0: औजार है
1: उठाओ।
0: लेकिन
1: हम सब मिलकर अपने गांव को
0: एक भी
1: फिर से खड़ा करेंगे।
0: उन्होंने अपनी कांपती
1: आवाज में
0: गांव वालों से कहा
1: रोने
0: और बैठने से
1: यह
0: मलबा साफ नहीं होने वाला।
1: जिसके पास
0: जो भी औजार
1: होने
0: उठाओ।
1: भी
0: हम

0: सब मिलकर अपने गांव को फिर से खड़ा नहीं उठाइए। काकी ने खुद के हाथ में रास्ते में गिरा एक बड़े पेड़ का तना उठाने की कोशिश की। उनके कमजोर हाथों में उतनी ताकत नहीं थी। उन्होंने कोई भी अंदर कोई भी डाली नहीं
1: उनके इस जज्बे को देख उनके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वे कुछ उठा पाए।
0: देखते पूरा गांव काम पर लग गया।
1: कमजोर हाथों में
0: असहाय महसूस कर रहे थे वे अखाड़े के पहलवानों से भी तेजी से भारी लकड़ियां उठाने लगे। महिलाएं और
1: उनके
0: बच्चे भी मदद करने लगे।
1: देखकर गांव के युवाओं में जोश हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव काम पर लग गया। जो पुरुष असहाय महसूस कर
0: इंतजाम भी
1: वे अखाड़े के पहलवानों से भी ज्यादा तेजी से भारी लकड़ियां उठाने लगे। महिलाएं और बच्चे भी मदद करने लगे।
0: शाम होने तक इतनी बूढ़ी और कमजोर है
1: और प्रभावित घरों के लिए
0: उनके पास कौन सी
1: इंतजाम भी हो गया था।
0: यह सब चुपचाप देख
1: और
0: रहा
1: कहा बेटा
0: रात को उसने अपने पिता से शरीर की मांसपेशियों में
1: काकी तो इतनी ऊंचे पद पर नहीं होती
0: फिर भी उनकी शक्ति एक बात पर पूरा काम खड़ा हो गया।
1: विल पावर कौन सी शक्ति
0: और मानसिक पिता ने मुस्कुराकर
1: आरव के सिर पर हाथ फेरा
0: के पास
1: कठिन परिस्थितियों में हार न मानने
0: की मांसपेशियों में
1: दूसरों को प्रेरित करने की
0: पद पर नहीं होती
1: यही असली शक्ति है
0: जो बाहर से नहीं
1: बल्कि विल पावर होता है
0: भीतर से आती
1: है।
0: आरव पीपल के पेड़ का तरफ पास
1: कठिन परिस्थितियों
0: में हार न मानने
1: और दूसरों को प्रेरित करने की
0: शक्ति हुक्म चलाना
1: यही
0: भारी वजह है
1: जो बाहर से नहीं
0: बल्कि समय में
1: के अडिग भीतर से
0: और दूसरों के जीवन में
1: आरव पीपल के पेड़ की तरफ देखने लगा
0: तो उसे समझ
1: कहानी से हम
0: किस शक्ति का
1: उस अशक्ति का
0: आभास करने की
1: कोशिश चलाना
0: या
1: भारी वजन उठाना नहीं
0: बल्कि विपरीत
1: समय में भक्ति करेंगे
0: तो मां की दूसरों के अवश्य
1: हमारे
0: का दिया जलाना है।
1: इस भक्ति
0: इस कहानी
1: इस शक्ति को
0: बस
1: उस शक्ति का आभास करने की कोशिश करें
0: जो दुर्गा मैया
1: हमारे अंदर देती है। हम भक्ति करेंगे
2: सुबह
1: तो माँ की शक्ति अवश्य हमारे अंदर आएगी
2: और
1: आप इस भक्ति इस
0: तो चलिए गाना आप लोगों के नाम करते हैं
1: अलका याग्निक
0: और
1: कुमार सानू की आवाजों का। ये गाना मिस्टर आशिक से लिया गया
2: आप सुनिएगा ये गाना
1: 7:57 हुए हैं थोड़ी देर में 8 बजने
0: तो चलिए ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू
1: के बाद मिलते हैं हम
0: का ये गाना के नाम करते हैं।

0: 8 बजे की भोजपुरी समाचार में सब कोई की स्वागत है।
1: घर ही मिला जा भजूर के 8 बजे तक
0: देश की स्थिति के बारे में बोला जा मौसम में पानी के संकट जो स्तर
1: समाचार में सब कोई स्वागत है।
0: सब कोई मोटका पानी बरसे स्थिति के बारे में उपकर में पानी के संकट बाटे जो में लगातार गंभीर होते जाता
1: कमी
0: मौवा जलाशय में पानी के
1: नीचे
0: आगल
1: पर का मोटका पानी बरसे के अनुभव से कुछ उपकर शुरू होई
0: में अभी
1: समुद्र में पानी के योग बनाए
0: दूर करे खातिर करल जाता
1: नवा उपाय तलाश
0: मजबूत करल जाता
1: हुए परिवेशन में ई कामर्स
0: अपन पड़ोसी देश के
1: परियोजना पर आदमी के राय
0: की प्रक्रिया की
1: सेशंस में
0: के समुद्र के पानी के लिए
1: प्रक्रिया
0: योग बनाए जब
1: रोड्स में करल जाता
0: के इस्तेमाल पर
1: उकरा मजबूत करल जाता
0: हुए परिवेशन
1: में ई सप्ताह के
0: मेरन परियोजना पर अजार में
1: पानी प्रक्रिया शुरू
0: करके जो
1: टैंक
0: राय लेके
1: 15,000 रुपया
0: के जो
1: सरकारी सहायता
0: इस्तेमाल पर
1: मिले
0: ध्यान देवल जाता
1: ओकर खातिर पंजीकरण
0: एंस्ट्रीमेंट
1: काल लेंदी
0: 12 समाचार
1: में पानी
0: के
1: जेतु
0: हरना
1: यानी के जो टैंक बा
0: और
1: यानी के
0: तोहर जो सियानो
1: बाते खातिर
0: 15,000 रुपया
1: के जो
0: सरकारी
1: सहायता तोहरा
0: मिले
1: काल लेंदी
0: ओकर खातिर
1: पंजीकरण
0: अपन एंस्ट्रीमेंट
1: काल लेंदी
0: 12 अक्टूबर के शुरू होता
1: जेतु हर नाम
0: आर जेड
1: ए ले
0: यानी के तोहर जो सियानो
1: बाते
0: ओ बी से एम
1: के बीच
0: जाके
1: अपन पंजीकरण
0: कराए के लेंदी
1: पंजीकरण
0: फजी 9 बजे
1: अपन
0: सीडब्ल्यू
1: के मुख्यालय या फिर देश में
0: कोनो भी
1: कार्यालय
0: में जाके करा
1: सकबा
0: राष्ट्रीय
1: पहचान पत्र
0: अपन पंजीकरण
1: कराए के
0: 9 बजे से
1: दिन के 3 बजे
0: ले सैंपल
1: के सीडब्ल्यू
0: के मुख्यालय
1: या चलाई में
0: चलाई ला
1: से गंभीर
0: कार्यालय में
1: जाके कराई सकबा
0: के मंगा
1: खातिर राष्ट्रीय पहचान
0: पत्र सब
1: की नजर
0: सीडब्ल्यू
1: के एगो
0: काम से
1: घर
0: आने के पड़ी
1: बखत
0: ओकर पर गोली
1: चलावल गल
0: के सांस
1: के गोली चलाई
0: चलाई ला
1: से गंभीर रूप से घायल
0: होल एलजी
1: आर खेल मंत्री
0: में घटनाक्रम
1: पर निर्वाचन
0: के नजर नंबर
1: 19 के
0: सांसद देवेन नागानी
1: घर
0: परिवार से बखर
1: करे गल रल
0: ओकर पर गोली
1: चलावल गल
0: जुटता
1: समर्थन के
0: डीपीएम
1: आर्यना वर्मा
0: मिस्टर आर्यना वर्मा
1: के आर
0: खेल मंत्री रथवान
1: तथा
0: निर्वाचन
1: क्षेत्र नंबर 19
0: के सांसद देवेन
1: नागानी
0: घर परिवार से
1: भेंट करे गल
0: और
1: उनकर
0: पति एक जुटता
1: समर्थन
0: व्यक्त करना
1: पर आर्यना वर्मा
0: भी अधिक से
1: शांति बना के रखे
0: देवनांगलिंगम
1: अपील कर
0: परिवार के
1: सदस्य से उम्मीद
0: बना के
1: रखे की अपील कर लेबा
0: फिलहाल सबसे
1: आश्वासन दे राज्य
0: सरकार की
1: मुश्किल
0: एलोजी दुमा
1: में परिवार
0: के संगे खड़ा बा
1: और उनकर
0: अनुसार
1: सरकार की ममना
0: पर
1: करीब से नजर रखता
0: कॉलेवियो में
1: गोली खेल मंत्री देवनांगलिंगम
0: घायल
1: परिवार के सदस्य
0: से उम्मीद
1: बना के रखे की अपील
0: कर लेबा डॉक्टर
1: की एगो टीम
0: आश्वासन दे राज्य
1: सरकार
0: की मुश्किल
1: बुलाई
0: के परिवार
1: के संगे खड़ा बा
0: और उनका
1: हर संभव
0: के मुताबिक
1: सहायता
0: मामला में
1: उनकर
0: कॉलेवियो में गोली
1: अलग अलग
0: से घायल
1: जीतो माँ के
0: इलाज कर रहे
1: हैं वंती
0: भारत से विशेष
1: डॉक्टर की डॉक्टर टीम
0: तुरंत मौसम
1: के संगे
0: बुलावलंदी
1: के मौसम
0: फैसले वन जा
1: वो लोग
0: स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेलू
1: के मुताबिक
0: इस मामला
1: में
0: उनकर बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर
1: सोसाइटी ऑफ
0: हेल्थ
1: मासा की जो
0: बरिस की
1: भारत से 4 गो विशेष
0: डॉक्टर
1: रहेला
0: टीम के संगे
1: कालेंदी
0: के मौसम
1: पहुंचा था वंजा
0: अक्टूबर के
1: लोग
0: फजीर
1: एलुजिटो
0: मासे
1: में कॉलेज
0: जु बों ए पेपेचुअल
1: मौसम सोसाइटी ऑफ ऑथर्स
0: मासा
1: की जो
0: बरिस की
1: आगे 4
0: अक्टूबर के
1: रहेला
0: पर
1: आवश्यक सदस्य की
0: संख्या
1: पूरा नहीं हो रहा
0: अक्टूबर के
1: कारण ओके
0: स्थगित कर दिया गया
1: मासा के अध्यक्ष
0: जोएल को
1: कॉलेज

0: कि सभा का 53 सदस्य की उपस्थित होई के आवश्यक
1: लगी होलाबाती
0: इस सबलन की वार्षिक 4 सभा के उद्देश्य के रहल पर आवश्यक सदस्य की संख्या और मासा के पंजीकृत लेखक के बीच विचार के आदान प्रदान के बढ़ावा दिया जोएल को बोलन कि सभा का 93 सदस्य की उपस्थिति मास की आवश्यक
1: है। मां दुर्गा की आराधना के पर्व दुर्गा पूजा
0: आम सभा के उद्देश्य संस्था के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य और मासा के पंजीकृत लेखक के बीच विचार दुर्गा के आदान प्रदान के बढ़ावा दिया जाए। मैं शैल पुत्री से लेकर आज दिमाग से रात्रि मास 11 अक्टूबर से मां दुर्गा की आराधना के पर्व दुर्गा पूजन के अनुसार राक्षस महिषासुर के वध कर ले चले होला ई पर्व में श्रद्धालु मां दुर्गा के नौ रूप की पूजा कर लिया जाए। इमे रूप में मां दुर्गा के कालरात्रि सिद्धि मां दुर्गा से ले बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक माने जाला।
1: धर्म ग्रंथ के अनुसार राक्षस महिषासुर के विजय पाए होला दिव्य शक्ति के रूप हवा नौ दिन में चले होला
0: एकजुट कर ले रहा और देवी शक्ति के रूप में मां दुर्गा के प्राकृतिक सहाय करण मां दुर्गा के कलश बुराई पर अच्छाई के जीत जाए
1: लाखन आदमी के घर में बिजली नहीं बाटे।
0: दूसरा देश के समाचार में अमेरिका के दक्षिण से बढ़ते तूफान सिमन दक्षिणिया कैलिफोर्निया देने भारी तबाही मचाई बाटे। रेचल एक चलत चार रंगो आदमी के मौत हो गल बाटे। सऊदी अरब के राजधानी रियाद में हवाई अड्डा बाटे हमला हो बाटे। चेकर में शांत कम से कम 15 जना की मौत हो गल बाटे। सिमन और दक्षिण जना के कैलिफोर्निया देने से बढ़ते अधिकारी तूफान रेचल की चिंता के कारण बन बाटे। उधर सऊदी अरब के राजधानी रियाद के हवाई अड्डा पर हमला हुई बाटे जिकर में कमती से कमती 15 जना के मौत हो गल बाटे। धन्यवाद अभी 9 जना के घाव लगल सऊदी अरब अधिकारी
2: हमला। न्यूज़ ऑन एमबीसी प्ले एंड nbc.mu
0: संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भई
1: मरने के समाचार सुनब
0: धन्यवाद अभी आज कृत
1: स्थानीय रोजल में अभी कृत स्थानीय
2: Your news on NBC Play. NBC.mu श्रीमती गोइंदामा माधुरे जिनका नाम है नंबर 2 पृथ्वी विजय पॉइंट 2 साहब में

0: जीवन में कोई अच्छा सा रेडियो मौजूद है, आप जहाँ भी होंगे हमारे माहौल चल रहा है आप पैगाम आपके नाम अपने अपनों को मैसेज भेजिएगा।
1: जन्मदिन
0: आपके अपनों के जीवन में कोई अच्छा सा इवेंट हो,
1: कोई प्यारा सा इवेंट
0: कामना भेजिए,
1: या फिर अभी तक नवरात्रि
0: का माहौल चल रहा है नवरात्रि के
1: अवसर पर मैसेज कीजिएगा।

0: कामनाओं को
1: या शुभकामनाएं मंगल कामनाएं भेजना मैसेज चेक करने के
0: जन्मदिन के अवसर पर मंगल 5170
1: और अगर आप कॉल करना चाहते हैं कामनाएं भेजना चाह रहे हैं आप जरूर नंबर है हमारा
0: आप बोल लीजिए हमारे इस प्रोग्राम में आप बोल लीजिए अपने प्रोग्राम में हम साथ साथ का मैसेज चेक
1: ये प्रोग्राम पे नंबर है 5170
0: के नाम हमारे श्रोताओं के नाम ये गाना पेश करते हैं हम सुरेश पाटकर
1: और लता हमारा
0: कर के आवाजों पर लीजिए हमारे इस प्रोग्राम में आप बोल लीजिए अपने इस प्रोग्राम में हम साथ साथ मिलकर ये प्रोग्राम पेश करेंगे हमारे अपनों के नाम हमारे श्रोताओं के नाम ये गाना पेश करते हैं

0: आज सुबह से हमारा आपका साथ है। सुबह 6 बजे से हमारे कई श्रोताओं ने हमारा साथ दिया सुबह से और हमें मैसेज भेज रहे हैं और उनमें शामिल है माला सुमाहू जी और सभी हमारे श्रोताओं।
1: आज सुबह से हमारा आपका साथ है। सुबह 6 बजे से हमारे कई श्रोताओं ने हमारा साथ दिया सुबह से
0: नवरात्रि
1: और हमें मैसेज भेज रहे हैं और आप लोगों के लिए शामिल है माला सुमाहू जी और सभी हमारे श्रोताओं ने हमारे माला सुनने वालों को बहुत सारी मंगलकामनाएं भेजी हैं।
0: मैसेज भेजा है नवरात्रि
1: की। कुछ लोग फूलों की तरह होते हैं जो आरंभ आप भी उनके लिए मंगल में
0: रहते रहते हैं।
1: फासले चाहे कितने भी और हुए हमेशा यादों
0: और माला सुमारू
1: यादों के दिल में बसे प्यारा सा है और ऐसे में आप लोग भी इस तरह से
0: फूलों की तरह बिखरते रहे। आप लोग इसी तरह से बिखरते रहते हैं।
1: फासले चाहे कितने भी हो माला जी की प्रार्थना है तो नवरात्रि की मंगलकामनाएं लेकर आए और ऐसे में आप लोग भी इस तरह से खुशबू बिखेरते रहिए। आप लोग इसी तरह से नवरात्रि की मंगलकामनाएं भेजी है।
0: विश्वानी दुमन जी ने हमारी प्रार्थना है माला दुआ की प्रार्थना है
1: तो नवरात्रि की मंगलकामनाएं लेकर आए हुए लेकर मैसेज भेजे हैं।
0: अनीता जी ने मौदार
1: श्रोताओं ने आप लोगों के लिए माला सुमारू जी ने नवरात्रि की मंगलकामनाएं भेजा की है।
0: विश्वानी दुमन शरण में भी हर के लिए दुआ की है और कि देवी मैया की कृपा की है।
1: अनीता जी ने अपने कॉम्फ्लेक्स से रहे
0: पूरी अनीता जी ने मौदार पे फ्रेंड्स को
1: और हमारे सभी श्रोताओं को मंगल कामनाएं भी इल्तिजा की है
0: और मां के शरण में आकर हर किसी हमारे सभी श्रोताओं को शक्ति मिले की कामनाएं भेजी है।
1: अनीता जी ने अपने कॉम्फ्लेक्स से अपनी पूरी फैमिली को अपने सभी फ्रेंड्स को और हमारे सभी श्रोताओं को

0: के इस महापर्व में हर किसी के मन को सुखाया, हर किसी के मन को संतुष्ट किया। हम हमेशा उनके भक्तों पर और ऐसे में हर किसी की रात्रि प्रकाश मान रहे।
1: नवरात्रि के इस महापर्व में हर किसी के मन को शक्ति मिले, हर किसी के मन रात के अंधेरे मिले और देवी मैया की कृपा रात्रि रहती है हमेशा उनके भक्तों पर। और
0: चलिए जरा हम नाम लेते हैं हमारे रेगुलर श्रोता।
1: ये नवरात्रियां होती हैं मन को प्रकाश प्रदान करने के लिए, रात के अंधेरे
0: और हमारा साथ देने हमारे शो में अपनी मामा प्रीति, पापा कृष, बहन उर्वशी।
1: चलिए जरा हम नाम लेते हैं हमारे रेगुलर श्रोता के आकाश चेतन, अपनी नाविया का बॉम्बे के रहने वाले हैं और हमारे साथ देते हैं हमारे शो में अपनी मामा प्रीति, पापा कृष, बहन उर्वशी। हमारे इस

और इधर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं लक्ष्य को, लक्ष्य को बहुत मंगल कामनाएं मिली है, गुड हेल्थ एंड बहुत बहुत शुक्रिया आकाश चेतन मनसुख जी।

0: happy birthday to you. Vishal and Kelly,
1: happy birthday wish करते हैं हम विशाल असगर जी को जो थियो लेके रहने वाले हैं।
0: happy birthday to you
1: विशाल असगर जी, आप विनोद जी की तरफ से मंगल कामना है, आपकी पत्नी प्रिया की तरफ से सिया और यानी
0: हमारी पूरी तरफ से, और मामा happy birthday to you।

0: से और इस जन्म
1: सो चलिए जरा हम हैप्पी बर्थडे हमारे श्रोता और
0: उनको जन्मदिन की मंगल कामनाएं मिली है गोपी परिवार की तरफ से और हमारी पूरी टीम के जीवन में हमें इस जन्म के अवसर पर गोपी जी आपको बहुत सारी

0: अष्ट भवानी हमारे सर पर अपनी कृपा का हाथ रखे। ऐसी प्रार्थना के साथ हमारे कई श्रोताओं ने हमारे सुनने वालों को मंगल कामनाएं भेजी हैं और उम्मीद यही है कि वे अष्ट भवानी हमारे सर पर अपनी कृपा का हाथ रखे। ऐसी प्रार्थना के साथ हमारे कई श्रोताओं ने कल्पना हमारे सुनने वालों को मंगल कामनाएं भेजी हैं और उम्मीद यही है कि वे और ऐसे में हमारे कई श्रोताओं ने देवी मैया के आशीर्वाद की दुआएं की हैं और देवी मैया की कल्पना भी कर रहे हैं और हमारे श्रोताओं के बीच सुख का सागर रहे, सुख की धारा बहती रहे।
1: और ऐसे में हमारे कई श्रोताओं ने और इनमें शामिल आशीर्वाद की इंदिरा लाउट हैं
0: देवी मैया से
1: और उन्होंने लंदन के लाउट और हमारे श्रोताओं की
0: बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी है।
1: नवरात्र
0: सुख की धारा बहती रहे
1: उन पर हमेशा कामना कृपा और इनमें शामिल हैं इंदिरा लाउटन जी,
0: इधर लीला जी बॉशे
1: लंदन के लॉर्ड फैमिली के लिए भी बहुत सारी देवी कामनाएं भेजी है। नवरात्रि के अवसर पर देवी माँ और शांति हमेशा रहे
0: कृपा की बारिश करती रहे।
1: सुनीता
0: इधर लीला जी
1: बॉशिहारी हमारे श्रोताओं के लिए
0: उन्होंने लिखा है
1: कि आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना।
0: माँ दुर्गा आप सभी को सुख शांति और बहुत खुशी दे। राधा कृष्ण सत्संग मंडल
1: सुनीता जी हैं, सुनीता बिहारी जी हैं,
0: मंडल की ओर
1: उन्होंने लिखा है
0: कि
1: आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना। माँ दुर्गा आप सभी को सुख शांति और बहुत खुशी दे। राधा कृष्ण
0: आशा जानू जी
1: की ओर से मैसेज कर रहे हैं
0: इस मंडल की ओर से बहुत की शुभकामनाएं। आभार
1: सूरत फैमिली और
0: बिहारी परिवार
1: के साथ आपके लिए
0: उनकी मामा कुमारी उनके नेफ्यू शुभकामनाएं।
1: इधर आशा जानू जी कटेज से हमें मैसेज
0: कर रहे हैं
1: पूरे जानू परिवार की तरफ से
0: आप सभी को नवरात्रि की पवित्रता का आभार।
1: नवरात्रि
0: सभी पर पवित्रता के साथ
1: सुख शांति समृद्धि
0: उनकी मामा कुमारी उनके नेफ्यू
1: शुभकामनाएं
0: सब की तरफ से ले आरती
1: और हमारे की तरफ से
0: पूरे जानू परिवार की तरफ से
1: माता माता दुर्गा की शुभ कृपा दृष्टि
0: ऐसा भी कामना की है।
1: सुख शांति समृद्धि
0: परिवार
1: स्वास्थ्य का आशीर्वाद माता की तरफ से मिले आपको और हमारे देश में बारिश हो
0: सब और देवी माँ
1: हमारे देश में
0: की प्रार्थना
1: हो।
0: देवी माँ की प्रार्थना करते हुए सभी के लिए
1: सुख और शांति अपने परिवार
0: की ना की है हमारे देश में और देवी माँ
1: की अनिता जी जो रहत
0: की प्रार्थना
1: है उन्होंने
0: देवी माँ की प्रार्थना करते हुए सभी के लिए
1: सुख और शांति की प्रार्थना
0: की है हमारे
1: दुर्गा मैया हमारी माता है।
0: दुर्गा मैया सारे संसार की माता है
1: उनके आंचल के अंदर ये जो रहती
0: है
1: उन्होंने
0: पूरे परिवार
1: के सुख शांति
2: शेरों वाली
0: दुर्गा मैया सारे संसार की माता है।

0: की माता जी दमयंती मूलचंद जी का जन्मदिन है। इधर हमें वीना संधू जी ने मैसेज भेजा है कि आज उनको
1: बहुत सारी मंगल उनकी वो देवी
0: जी हैं। वीना संधू जी ने उनकी माता जी
1: सारी भाई बहनों के साथ मिलकर
0: दमयंती जी की छह बेटियां हैं, उनके दामाद हैं,
1: उनके नाती पोते,
0: उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी है। वीना संधू जी ने उनके
1: बस ये अपनी
0: उनके भाई बहनों के साथ मिलकर
1: बच्चे
0: दमयंती जी
1: छह बेटियां हैं,
0: दुर्गा दामाद है,
1: हमेशा के नाती
0: पोते सब मिलकर उन्हें मंगल कामनाएं दे रहे हैं।
1: 94
0: ईयर्स की है उनकी माता जी, दुर्गा मैया के
1: बच्चे मिलकर पावन
0: परिवार मिलकर
1: कि
0: दुर्गा माता
1: उन पर
0: हमेशा
1: कृपा दृष्टि
0: बनाए
1: रखे, उनको अच्छी सेहत दे। 94
0: ईयर्स की है
1: अपना जन्मदिन मना रही है,
0: दुर्गा मैया
1: खुश रहे,
0: इस पावन हंसती
1: रहे, मुस्कुराती रहे,
0: हमेशा
1: दमयंती जी
0: आपके पूरे परिवार
1: के बच्चों ने
0: आपके लिए जगदम्बे
1: मैया
0: ढेर सारा प्यार
1: बहुत सारे

0: का ये मैसेज है। ला फ्लोरा से श्वेता रामफल जी ने मैसेज भेजा है कि उनकी बेटी गुड़िया से श्रीतेजा रामफल का जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: सो जन्मदिन की मंगल कामना का ये मैसेज है।
0: ला फ्लोरा से श्वेता रामफल जी ने मैसेज भेजा है कि उनकी बेटी अरविंद दादी सुनीता रामफल का जन्मदिन है। नानी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गुड़िया नाश बंदी जा आपका जन्मदिन की बधाई
1: बहुत बहुत सारी दुलार के साथ आपकी मम्मा श्वेता दे रही
0: है आपको बहुत सारी अरविंद दादी सुनीता और वाशिली से नानी की दुआ है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए और आपको हमेशा बहुत बहुत सारा प्यार बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं आपको बहुत सारी खुशियां मिले आपको बहुत सारा सुख मिले यही दुआ है हमारी पूरी टीम की तरफ से आप

0: आज अनिल रामचरण जी का जन्मदिन है और अनिल जी को शुभकामनाएं रेशमा की तरफ से, बेटी यश अनुष्का की तरफ से, मनोज, श्वेता
1: और फिर श्यामा जी ने भी मैसेज फोन किया, बताया कि उनके दामाद अनिल रामचरण जी का जन्मदिन है और अनिल जी को शुभकामनाएं
0: हैप्पी बर्थडे
1: रेशमा की तरफ से, बेटी यश, बेटी अनुष्का की तरफ से, मनोज, श्वेता, परी, यानिश, नीतू, निधि और विष्णु की तरफ से जो फ्रांस में है, रामचरण परिवार और मिलाप परिवार की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम।

0: हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हम
1: मनीषा और दामाद जी की तरफ से, पूरे
0: सरिता जी की तरफ से,
1: सरिता जी को,
0: सरिता जी जो दागोचक की रहने वाली है, अपना जन्मदिन मना रही है,
1: जन्मदिन फ्रॉम
0: उनके पति मोहन लाल जी,
1: उनकी बेटी शिरीष,
0: उनकी बेटी
1: मनीषा और दामाद जी।

आज दादू जी की सरिता जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं देने के बाद हम समाप्त करते हैं आज का हमारा ये पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। आपके अपनों ने आपको बहुत सारे मैसेज अनिल राम सरन जी को बल देवी करने के बाद दागुचिया की सरिता जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं देने के बाद हम समाप्त करते हैं आज का हमारा ये पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। आपके अपनों ने आपको बहुत सारे मैसेजेस दुआएं भेजे इसके लिए आप लोग बहुत मिलते हैं शुभ संडे ये कार्यक्रम मंगल कामनाएं समाप्त करते हैं पैगाम आपके।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: आज रविवार 11 अक्टूबर सी मां दुर्गा की आराधना है, नवरात्रों तक चलने।
0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं आशिता, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार, और स्वागत है। आज रविवार 11 अक्टूबर सी मां दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी शक्ति के रूप में मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। शैलपुत्री से लेकर कालरात्रि और की जी दात्री तक के रूप शामिल है। नकारात्मक शक्तियों पर धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस दिव्य शक्ति का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक सदियों पुरानी देवी शक्ति के रूप में मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। स्थापना दुर्गा विभिन्न बुराई पर अनुशाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। पूरा नकारात्मक शक्ति और आध्यात्मिक विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है और आज नौ दिनों तक चलने वाली ये दुर्गोत्सव सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। दुर्गोत्सव के अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं।
0: खबरों में मॉरिशस में बिजली बचाने के लिए और आध्यात्मिक अभियान कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। मां शैलपुत्री की पूजा तक जारी रहेगा। इसका मंगल गर्मियों में बिजली कटौती से बचना और बिजली की सबसे अधिक खबरों में मॉरिशस में बिजली बचाने के लिए नियंत्रण अभियान गर्मियों के दौरान दिनों में और आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। यह अभियान की तेजी तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य समय में बिजली कटौती से बचना और बिजली की जब जलवायु परिवर्तन और मध्य पूर्व खपत को नियंत्रित करना है। लेकर दौरान एयर कंडीशन के बीच देश में बिजली की मांग इस्तेमाल बढ़ रही है। बिजली की मांग अभियान के तहत सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से पहलों को समय शुरू किया जाएगा। मुख्य रूप से शाम की जब जलवायु परिवर्तन और मध्य पूर्व में तेल की कीमत कम को लेकर जोर दिया जाएगा ताकि बीच देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। खतरे से इस अभियान के तहत सोशल मीडिया सहित और मौसम में सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्य रूप से रविवार को बारिश के व्यस्त समय में बिजली की खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा। इस्तेकादान बिजली की कमी किसी भी खतरे से बचा जा सके बाद हुई और मॉरिशस में सूखे की स्थिति को देखते हुए ग्लेन पॉक्स ने मस्जिद रविवार को बारिश के समय विशेष प्रार्थना आयोजित जलाशय में पानी का स्तर घटकर 35% सुबह की नमाज फज्र के बाद और बारिश के लिए प्रार्थना करने मस्जिद के सदस्य और इमाम फादिल नबी बकर जानकारी दी। ये पहले इस्तेमाल करने की भी हो रही है। जमा जलाशय में पानी ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 35% टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ा और बारिश के लिए रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा गुरुवार 15 अक्टूबर जिम्मेदारी मध्य रात्रि इस्तेमाल करने के बाद रिटर्न जमा करने की जुर्माना और ब्याज देना पड़ता है। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ-साथ टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ा है। रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा गुरुवार 15 अक्टूबर जमा करने में मध्य रात्रि तक है। इसके बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में तूफान जमा करने की असर से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली आपूर्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट powerartisan.com के अनुसार नॉर्थ कैरोलिना में 12,000
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में तूफान इसाइस के असर से कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली आपूर्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट powerartisan.com के अनुसार नॉर्थ कैरोलिना में 12,400 से चली गई है। उन्होंने बताया है हालांकि व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने होकर गुजरने की आशंका नहीं है दिया है। और अलाबामा में भी 251,000 से अधिक के अनुसार कुछ काउंटियों में 80% से जॉर्जिया में 91,000 से बिजली चली गई है। उन्होंने बताया कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था है बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने कर्मचारी सुरक्षा इलाकों में पहुंचकर दिया है आकलन कर

0: बाबा में भी 2,51,000 से अधिक
1: इसके साथ साथ की बिजली गुल है।
0: उधर जॉर्जिया में 91,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित है। जॉर्जिया पावर कंपनी के अनुसार कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं और बिजली बहाल करने में जुटी हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त।
1: धन्यवाद
0: और नमस्कार। एनएचडीसी गोंबुआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री बासुदेव सिबालक जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं, उनकी मृत्यु हो गई है।
2: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
3: मंगलाचरण
2: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
3: आज 11 अक्टूबर से माँ दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र पर्व शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इसी संदर्भ में आज का मंगलाचरण का अभिवादन है श्रोताओं। आज 11 अक्टूबर से माँ दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र पर्व शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है।
4: पितृपक्ष के समापन के बाद आज का मंगलाचरण देवी आराधना के 9 दिनों सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वाधान में वो आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी द्वारा शारदीय नवरात्रि प्रस्तुत किया जा रहा है।
3: कृपया बताने की चेष्टा करें कि शारदीय नवरात्रि का असल
4: पितृपक्ष के समापन के बाद देवी आराधना के 9 दिनों की जो प्रार्थना है
5: सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
4: शारदीय नवरात्रि। कृपया बताने की चेष्टा करें कि शारदीय नवरात्रि का असल आध्यात्मिक महत्व क्या है।
5: शास्त्रों में शक्ति के सुंदर प्रसरूपों का वर्णन किया गया है। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे शरद ऋतु में शास्त्रों में शक्ति के नवरात्र स्वरूपों का वर्णन किया गया। वैसे वर्ष में महाकाल नवरात्रियां महालक्ष्मी मानी गई है, महासरस्वती, लेकिन दो प्रमुख शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र कहने का अर्थ ये प्रमुख नवरात्रि में ये शरद ऋतु में पड़ने वाली
6: होता है बासंती नवरात्रि होती है
5: जो बसंत।
6: वैसे वर्ष में है
5: मार्च
6: चार नवरात्रियां
5: ऋतु होती
6: मानी गई है
5: और इस समय
6: लेकिन दो प्रमुख हैं और शरद ऋतु है
5: क्योंकि भारत जो है वहाँ
6: प्रमुख नवरात्रि
5: शरद ऋतु चल रही है।
6: एक होता है बासंती
5: शरद ऋतु में ये
6: जो बसंत है
5: ये नवरात्रि है
6: मार्च अप्रैल में जब
5: और इसका बड़ा भारी विशेष
6: और इस समय
5: हमारे
6: शारदीय नवरात्र मतलब शरद ऋतु है क्योंकि भारत जो है
5: अन्य अन्य पुराणों में
6: शरद ऋतु का महत्व है।
5: इसमें
6: शरद ऋतु में ये
5: काली का जो हार पड़ता है
6: ये नवरात्रि शक्ति जगदम्बा
5: दुर्गा
6: और इसका बड़ा भारी विशेष महत्व हमारे
5: देवी माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के विषय
6: अन्य अन्य पुराणों में
5: बहुत बड़ा भारी इसका महत्व जगदम्बा
6: इसमें
5: महिमा वास्तव में
6: हम महाकाली
5: का जो दिव्य स्वरूप
6: है
5: इसका हम पूजन
6: भगवान अनंतो
5: ब्रह्मा हरश्च
6: नहि
5: वाक्मलम
6: वलम च
5: में कहा है
6: सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय
5: महिमा का तो कोई
6: नाशाय
5: सुभायस्य
6: मतिलम
5: करोतु
6: भगवान अनंतो
5: ब्रह्मा हरश्च नहि वाक्मलम
6: वलम च
5: सा चंडिका
6: अखिल जगत
5: परिपालनाय
6: नाशाय
5: च
6: सुभवयस्य
5: मतिम करोतु
6: संपूर्ण जगत का
5: अनुपम प्रभाव
6: और जो ये अशुभ
5: में भगवान
6: स्वयं
5: अशुभ भय का
6: विनाश
5: करें
6: स्वयं ब्रह्मा जी
5: तथा हमारे
6: क्रांतिदर्शी
5: महादेव भी
6: कहा है
5: समर्थ नहीं है
6: वे भगवती आज्ञा
5: शक्ति जगदम्बा चंडिका
6: संपूर्ण
5: जगत का पालन करें
6: और जो ये
5: अशुभ भय है
6: संसार में
5: का विनाश करें
6: उसी की महिमा
5: में हमारे क्रांति दर्शकों
6: ने कहा है
5: कि आप शक्ति की निरंतर पूजा
6: की हमें
5: शक्ति ने कहा
6: पूजा का अर्थ ही है
5: कि आप
6: शक्तिशाली
5: बनिए
6: क्योंकि
5: और
6: संसार में
5: और
6: जो इस समय
5: उसी की महिमा का वखान किया जाता है
6: जिसके पास शक्ति
5: एकदम मध्यांतर हम कह सकते हैं।
6: तो ये समय जो
5: हमें
6: और ऋषियों ने कहा
5: है माँ दुर्गा की
6: उपासना जगदम्बा दुर्गा की आराधना
5: कीजिए
6: और
5: ये जो
6: समय है
5: जो इस समय
6: ने
5: महिषासुर
6: वर्ष का
5: जो ये
6: विनाश करके धरती
5: एकदम मध्यांतर हम कह सकते हैं।
6: तो
5: ये समय
6: निरंतर
5: और
6: बहुत
5: शुभ समय है
6: माँ भगवती आदि शक्ति।

0: एकदम और हमें आज्ञा दी आराधना कि हम इस अवसर पर समय में माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ने महिषासुर आदि राक्षसों का विनाश करके धरती पर धर्म की स्थापना की थी
1: समय
0: तो
1: और
0: निरंतर जगदम्बा के आराधना ऋषि गण जो है उनकी पूजा में आज्ञा देते हैं कि हम इस अवसर पर माँ भगवती नवरात्र जो है आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करें
1: और आप देख रहे हैं
0: भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस अवसर पर माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना जप कर रहा है उनकी पूजा कर रहा है तो ये शारदीय नवरात्र जो है
1: पूजा करते हैं
0: शुभ होते हैं और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस अवसर पर माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करते हैं।
2: तो आचार्य जी जब नवरात्रि में नौ रूपों में माँ की उपासना की जाती है
0: उनका पाठ
2: क्या इन नौ रूपों को इंसान के जीवन की नौ जो स्पिरिचुअल जैसे कहते हैं गुण आपने कहा के रूप में भी
0: देखा जा सकता है कहा जाता है।
2: तो आचार्य जी नवरात्रि में नौ रूपों में माँ की उपासना की जाती है
0: हमारे शास्त्रों
2: क्या इन नौ रूपों को इंसान के जीवन की नौ जो स्पिरिचुअल जैसे कहते हैं गुण उनके रूप में भी देखा जा सकता है।
0: जी देखा जा सुंदर है जरूर देखा जा सकता है क्योंकि हम इस समय माँ भगवती की भक्ति कर रहे हैं और हमारे शास्त्रों के नौ रूप बताए गए हैं। भगवान राम ने भी जब सबरी को भक्ति का
1: प्रकार है
0: तो वास्तव में बहुत सुंदर व्याख्या
1: तो नौ रूपों में भक्ति की
0: भक्ति के संबंध में नवदा भगति कहो तो उपाय
1: और सावधान से
0: सुनो उसकी धर्म माही ऐसा भगवान श्री राम ने
1: और भक्ति के तो माँ जगदम्बा का रूप जो है वास्तव में चराचर जगत में जगदम्बा दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको
0: ऐसा कोई रूप नहीं है जो नौ प्रकारों से
1: तो फिर भी आराधना प्रमुख जो हमारे और प्रथम तो माँ जगदम्बा का रूप जो है संपूर्ण संसार में चराचर जगत में जितना भी रूप है सबका सब तो
0: पंचम
1: स्कंधम
0: आते थे
1: और ऐसा कोई रूप नहीं है जो शक्ति से बाहर हो
0: तो फिर भी प्रमुख जो हमारे नवमम प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कूष्माण्डे हैं
1: तो ये नवम स्कंधम आते
0: प्रत्येक रूप
1: कात्यायनी सप्तम काल
0: मजबूत कर सके
1: तो दिए हैं
0: ये हमारे नौ दिन में हम प्रत्येक रूप का ध्यान करते हुए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं अपनी भक्ति को और पुष्ट करें अपनी आराधना को जो है
1: पर्वत को
0: मजबूत कर सके तो
1: ये हमारे पार्वती ने इनका
0: ये शक्ति के नौ रूप हमारे सामने रखे
1: तो शैल पर्वत जो है जो पर्वत से
0: शैलपुत्री
1: अर्थात
0: प्रथम शैलपुत्री जो
1: इतनी शैल का पर्वत कितना कठोर है ना
0: शैल करते हैं
1: कठोरता से
0: पर्वत
1: जब तक उत्पन्न हुई पार्वती जीवन में
0: और शास्त्रीय नाम है
1: कठोरता पैदा
0: शैल पर्वत
1: नियम है
0: जो पर्वत से जब
1: अर्थात
0: दृढ़ता
1: जो
0: नहीं रखेंगे
1: पर्वत कितना कठोर
0: आपकी भक्ति जो है
1: कठोरता
0: चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाएगी
1: आप अपने जीवन में
0: जगदम्बा और
1: इतनी कठोरता पैदा नहीं करेंगे नियमों का पालन करने में जब तक आप इतनी दृढ़ता
0: हृदय होना
1: नहीं रखेंगे
0: अपने जो संकल्प है
1: उन संकल्प को चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाएगी
0: तब तक
1: नहीं आप
0: तो
1: जगदम्बा कल्पों
0: से
1: कृपा को आदि शक्ति
0: जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो
1: कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको पाषाण हृदय होना पड़ेगा
0: अपने अपने जो संकल्प हैं उन संकल्पों को आपको पहाड़ जैसा बनाना पड़ेगा है ना अभी तो उन संकल्पों से भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का प्रादुर्भाव होगा।

0: श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मॉरिशस पर मंगलाचरण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं। आचार्य जी, नवरात्रि में देवी और असुर के
1: बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप पर रेडियो मॉरिशस पर
0: क्या ये सिर्फ मंगलाचरण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं,
1: चलने वाले हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं।
0: आचार्य जी, नवरात्रि में देवी और असुर के युद्ध की काफी कथाएं मिलती हैं, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या हमारे अंदर चलने वाले अच्छाई और बुराई के संघर्ष का भी प्रतीक है?
2: वास्तव में हो सकता है ये जो कथाएं हैं, ये बहुत व्यापक रूप इन कथाओं का है, आप करती हैं जिस चश्मे से चाहे
3: भी हैं
2: आप उस समय शायद उसी रूप रहे होंगे, लेकिन आज असुर जो है
3: हम लोगों के भीतर में बैठ गए।
2: माँ भगवती आदि,
3: जैसे माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा ने असुरों का नाश, असुर राक्षस का भी नाश,
2: असुर
3: जब हम दर्शन
2: सामने भी हैं
3: देखते हैं
2: तो उस समय शायद कहता है सामने रहे होंगे वो,
3: लेकिन आज असुर जो है हम लोगों के भीतर में बैठ
2: जब तक आप
3: अब जैसे माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा ने सबसे महिषासुर राक्षस का भी नाश किया,
2: जब हम दर्शन
3: और उस चरण शिखर को प्राप्त,
2: तो दर्शन शास्त्र कहता है महिषासुर जो है
3: वो अहंकार का प्रतीक है,
2: क्योंकि यदि अहंकार
3: जब तक
2: आ गया
3: आप अपने भीतर के
2: अहंकार का नाश नहीं करते हैं,
3: इतना धन है
2: सब कुछ का,
3: और आप
2: उस चरण शिखर को प्राप्त कर सके,
3: जैसा
2: अहंकार भीतर का

0: पंडित को ही चाहिए,
1: उसके
0: यदि अहंकार जीवन में आ गया समय में भी वो इतना शक्तिशाली बलशाली ज्ञानी था, कितना धन है सब कुछ का, और आप विनाश हो जाएगा। रावण के जैसा अहंकार की वजह से पंडित कोई नहीं हुआ,
1: उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, और अपने समय में भी वो इतना शक्तिशाली बलशाली नहीं
0: ज्ञानी था,
1: अस जन्मा
0: एक ही चीज ने उसका विनाश कर दिया,
1: वो था प्रभुता पाई जाए
0: अहंकार की वजह से नाश
1: कि शायद संसार में ऐसा कोई पैदा हुआ होगा कि कुर्सी पर बैठने के बाद
0: नहीं
1: प्राप्त करने के बाद
0: अस जन्मा जग माही
1: एक व्यक्ति अहंकार पाई
0: जाए मदनाई
1: आपके साथ में
0: कि शायद संसार में ऐसा कोई पैदा हुआ होगा
1: कि कुर्सी पर बैठने के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद उसको अहंकार न हुआ।
0: अहंकार चीज ऐसी है,
1: प्रत्येक व्यक्ति अहंकार की चपेट में आ जाता है,
0: बचना
1: जो कल तक आपके साथ में बातचीत कर रहा था, खेल कूद रहा था,
0: अगर
1: वो आज मंत्री बन जाए तो वो मंत्री बनते ही उसको इतना अहंकार हो जाता है कि वो आपसे बात करना बंद कर देता है।
0: माँ भगवती आदि जगदम्बा की
1: कथाओं में माँ जगदम्बा अहंकार रही
0: से बचना आसान नहीं है, अहंकार को
1: हमारे
0: बचाना
1: प्रतिष्ठा की जो बचाना बहुत कठिन काम है।
0: तो
1: वास्तव में ये जो जितने भी राक्षस
0: ये सब माँ
1: अनेक नामों से जगदम्बा की कथाओं में माँ जगदम्बा मार रही है,
0: और जब तक आप अपने राक्षस
1: हमारे ही भीतर की जो बुराइयां हैं जिसको हम काप क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है
0: ये सब भीतर
1: अनेक अनेक नामों से जानते हैं,
0: विनाश करना
1: इतना आसान भी नहीं है,
0: और जब तक आप हमको अथाह के राक्षसों का विनाश नहीं करते
1: इसीलिए
0: माँ भगवती आदि शक्ति
1: संसार में आकर
0: प्रतिष्ठा
1: नहीं हो सकती है,
0: तो इन भीतर के राक्षसों का विनाश करना इतना आसान
1: भी नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए कि
0: जब आपको दुर्गा पूजा करने की बात जरूर कही
1: तो कहा कि कम से कम 9 दिन माँ भगवती आदि शक्ति
0: की आराधना करने का हमारे शास्त्र
1: विचार किया होगा,
0: निर्देश
1: जब हम भगवान शिव की आराधना से
0: धूमधाम
1: ध्यान दीजिए
0: कि जब आप
1: वर्ष में
0: पूजा करने की बात ने कही
1: और वो भी कहा कि कम से कम 9 दिन तक
0: आप दुर्गा पूजा करें,
1: ऐसे ही अन्य अन्य सब जितने भी देवता
0: विचार किया होगा
1: कि जब हम भगवान शिव की
0: विस्तार
1: से धूमधाम से पूजा करते हैं
0: तो वर्ष में एक बार
1: महाशिवरात्रि को
0: और वो भी एक दिन
1: वो भी
0: महाशिवरात्रि में कम से कम 4 बार करो,
1: नहीं तो 2 बार
0: जितने भी देवता हैं
1: अनिवार्य है कि 2 बार करो
0: ही करते हैं,
1: लेकिन जब दुर्गा की
0: भगवान शंकर की बारी आई
1: साल में एक ही बार
0: एक ही दिन कहते हैं कि कम
1: से कम अन्य देवताओं के साथ
0: और दुर्गा की बारी आई
1: तो साल में कम से कम 4 बार करो,
0: नहीं तो 2 बार,
1: तो इसके पीछे भी
0: अनिवार्य है कि 2 बार करो।
1: दुर्गा जो है
0: जब भगवान शंकर की बारी आई
1: साल में
0: एक ही बार एक ही दिन
1: है,
0: ऐसे ही अन्य देवताओं के साथ, लेकिन जब दुर्गा की बारी आई तो है नहीं,
1: और जब एक बार बैठे आंख बंद किए
0: इसके पीछे भी कुछ रहस्य भरा पड़ा हुआ है,
1: ऐसा तो है
0: दुर्गा जो
1: आप गए वहां पर आपने उठाया
0: सिंबल आप कह सकते
1: और खाली आप
0: का प्रतीक है,
1: ऐसा तो है नहीं
0: भाई,
1: कोई ऐसी चीज तो है नहीं
0: कि आप बैठे आंख बंद किया और आप कुछ आप शक्तिशाली बन गए,
1: ऐसा तो है नहीं
0: कि आप गए वहां पर आपने उठाया एक लड्डू और खाली आप से
1: कम
0: 9 दिन
1: भाई
0: शक्ति प्राप्त करने के लिए
1: तपस्या करो
0: पड़ती है,
1: उसके लिए
0: ये 9 दिन
1: बहुत ज्यादा नहीं
0: हमारे
1: बहुत सारे लोग कहते
0: हैं हमने 9
1: दिन का व्रत
0: शक्ति को प्राप्त तो करना
1: है भाई, तो कम
0: से कम
1: है,
0: ये तो शुरुआत है
1: ना,
0: तो
1: आराधना करो कहा कि
0: 9
1: दिन
0: तक
1: बैठ
0: के
1: ये
0: 9
1: दिन
0: बहुत ज्यादा
1: नहीं है,
0: बहुत सारे लोग कहते हैं हमने 9
1: दिन का व्रत
0: सानिध्य में
1: बैठ कुछ भी नहीं है भाई,
0: बैठ कर
1: 9 दिन तो कम से कम है,
0: ये तो शुरुआत है,
1: अर्थ व्रत
0: भी होता है
1: आप को कहा कि
0: 9 दिनों तक
1: समीप में वास
0: माँ जगदम्बा के समीप
1: करो,
0: उनकी
1: कथा के समीप
0: उनके सानिध्य में
1: बैठ
0: चरित्र
1: के सामने
0: बैठ
1: करके
0: और
1: उपवास
0: करो
1: कहा है,
0: उपवास का अर्थ व्रत भी होता है,
1: उपवास
0: का अर्थ जो है
1: समीप में
0: वास
1: मतलब दुर्गा के समीप
0: बैठो,
2: उनकी यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है आचार्य जी की, क्या उपवास
0: उनके चरित्र
2: भोजन से दूर रहना है या अपने विचारों और इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना है?
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी बात
0: है,
1: उपवास का मतलब ही है
0: कि आत्मसात
1: करो समीप
0: शक्तिशाली बनोगे।
2: तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है आचार्य जी की, क्या उपवास सिर्फ भोजन से दूर रहना है या अपने विचारों अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना है?
0: बिल्कुल,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: उपवास का मतलब
1: ये है
0: कि आपको समीप आएंगे
1: आपको
0: दुर्गा
1: को जो है
0: बहुत निवास करना है,
1: तपस्या की जरूरत है।

0: शासन की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, पहले आपको
1: सब चाहिए जीवन में पात्र बनना पड़ेगा ना। जब तक आप वो सब पात्र नहीं बनेंगे कैसे इत्यादि नहीं करोगे तो आपका मन पवित्र
0: आपको जो है
1: जब तक आप संसार से दूर नहीं होंगे तब तक आप
0: तपस्या की जरूरत है,
1: शासन की जरूरत है,
0: अनुशासन की जरूरत है,
1: ये सब चाहिए जीवन में।
0: आप जब तक आप
1: तपस्या
0: ये सब नहीं करोगे, व्रत इत्यादि नहीं करोगे तो आपका मन पवित्र कैसे होगा। जब तक आप संसार से दूर नहीं होंगे तब तक आप माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के समीप कैसे बैठोगे, कैसे बैठ सकोगे,
1: नियंत्रण नहीं किया
0: तपस्या
1: तब तक आप होगी
0: आपका व्रत सफल नहीं हो सकता है। तो ये
1: तब आप जो है
0: अपने आपको
1: नियंत्रण में रखोगे,
0: वाणी में नियंत्रण करना है, अपने खान पान में,
1: इंद्रियों को
0: अपने विचार में नियंत्रण नहीं किया
1: तो तब तक आप आपका व्रत सफल नहीं हो सकता है। तो ये उपवास जो है
0: आपको संपूर्ण रूप से
1: आपका
0: वाणी में नियंत्रण करना है, आपके खान पान में नियंत्रण करना, आपके विचार में नियंत्रण करना है,
1: आचरण
0: में नियंत्रण करना, ये सब नियंत्रण जब आप कर पाओगे तब आप दुर्गा के समीप बैठोगे।
1: दिन तक लगातार
0: के ना एक ये चीजें एक दिन में तो हो नहीं सकती है,
1: आपको
0: इसके लिए तो
1: अभ्यास
0: और समय शक्ति की आवश्यकता होती है।
1: उस शक्ति को प्राप्त करने
0: कम 9 दिन लिए
1: अब हमने
0: हमारे भीतर
1: एक दिन दो दिन तीन दिन ये सब करते
0: करते अभ्यास
1: 9 दिन तक लगातार
0: किया ना एक ये चीजें
1: एक दिन में तो हो नहीं सकती है,
0: इसके लिए तो
1: अभ्यास
0: और समय शक्ति की आवश्यकता
1: जो है ज्ञानी बन
0: जाता कम से कम 9 दिन।
1: तो अब
0: हमने
1: एक दिन दो दिन तीन दिन ये सब करते करते
0: अभ्यास
1: करते करते कहते ना कि
0: करते करते
1: अभ्यास से
0: जड़मत
1: हो सुजान
0: भाई,
1: और फिर
0: अभ्यास से तो है
1: एक भी जो है ज्ञानी बन जाता
0: है।
1: आपने
0: तो अभ्यास
1: 9
0: दिन
1: है,
0: तक संघर्ष किया,
1: 9
0: दिन
1: हम
0: तपस्या की,
1: 9 दिन तक
0: उपासना
1: की, 9
0: दिन
1: तक
0: आपने
1: दुर्गा की
0: अपने
1: बाह्य
0: और आभ्यंतर
1: और फिर
0: दोनों तरफ
1: सामान्य संसार में
0: एक अद्भुत बात है आपको
1: अब
0: कि
1: 9
0: दिन
1: के पश्चात
0: 9 दिन तक संघर्ष किया,
1: 9
0: दिन तक
1: तपस्या की,
0: 9
1: दिन तक
0: उपासना
1: की,
0: 9
1: दिन
0: तक
1: आपने
0: अगर
1: कोई
0: बाह्य और
1: आभ्यंतर
0: दोनों तरफ
1: आपने
0: पवित्र किया
1: अपने
0: आप को,
1: आप इससे
0: छूटने
1: 9 दिन के पश्चात
0: आप व्रत को
1: छोड़ने की
0: सामान्य भाषा में बोलते हैं
1: जुड़ने के
0: लिए तोड़ रहे हैं,
1: तो
0: सामान्य भाषा में कहते हैं
1: अगर
0: कोई बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा
1: तो फिर आपने
0: व्रत तोड़ने के लिए
1: किया था
0: क्या,
1: कारण से तो आपको जुड़ना
0: इससे
1: छोड़ने के लिए
0: आगे बढ़ाना था,
1: ये हमारे सामने कितना बढ़िया अवसर था
0: जुड़ने के लिए,
1: जिस चीज से हम
0: 9
1: दिन
0: सामान्य
1: भाषा में कहते हैं
0: काश संकल्प
1: तो भाई जब कार्यम कासे कर
0: 15 दिन तक
1: बचें
0: ऐसी
1: बुराइयों से
0: कार्यम से तो आपको जुड़ना था,
1: उससे आप निरंतर
0: आगे बढ़ाना था,
1: ये हमारे सामने कितना बढ़िया अवसर था
0: कि
1: जिस चीज से हम
0: 9
1: दिन तक बचे रहे
0: और थोड़ा सा संकल्प आगे बढ़े कि
1: इसी चीज से हम 15 दिन तक बचें
0: ऐसी इन बुराइयों से
1: हम थोड़ा 15 दिन
0: जब जिस चीज से आप 15 दिन बच सकते हैं
1: तो भाई
0: एक महीना बचे
1: तो आप आगे इसको एक वर्ष तक तो
0: धीरे धीरे आगे बढ़ करके
1: आप
0: हमारे सारे
1: सारी बुराइयों से
0: हमारे द्वारा जो है
1: हमेशा
0: जो भी कर्म किए जाए
1: उससे
0: करके
1: और इस जीवन
0: अपने इस जीवन को
1: धन्य बना सकते हैं।
0: और
1: तो ये व्रत के पीछे का
2: दिखावा नहीं
1: करना चाहिए,
0: दर्शन है
1: धर्म में तो
0: वही दिखावा
1: संपूर्ण
0: जीवन जो है
1: ये तो
0: होना ही नहीं चाहिए दिखावा
1: हमारे सारे कर्म
0: जो है
1: अगर हमारे द्वारा जो है
0: जो भी कर्म किए जाए
1: वहां से
0: दिखावे में
1: लाभ तो हुई
0: पूरे समाज को
1: आप विचार कीजिए
0: उसका लाभ
2: दिखावा नहीं करना चाहिए
1: जी बिल्कुल
0: धर्म में तो कहीं दिखावा
1: है ही नहीं
0: पहले तक
1: ये तो होना ही नहीं चाहिए
0: दिखावा
1: लेकिन आज जो है अगर हम ठीक से देखें
0: तो
1: हमारे वहाँ तो दिखावे ने ज्यादा जगह ले लिया
0: होती थी ना।
1: अब आप विचार
0: को भी
1: फुर्सत नहीं मिलती थी कभी कभी एक दिन में दो दो निमंत्रण मिलता था
0: 15 वर्ष पहले
1: आप कर रहे हैं कि आज
0: आपको
1: कोई निमंत्रण मिल रहा है
0: दुर्गा पूजा के दौरान
1: है
0: तो इसका मतलब क्या हो
1: मिलता था प्रत्येक
0: निमंत्रण नहीं मिल रहा मतलब
1: नहीं हो रहा
2: है
1: ना
0: तो नहीं हो रहा है
1: फुर्सत नहीं मिलती
0: क्यों नहीं हो रहा है
1: कभी कभी एक दिन में दो दो निमंत्रण मिलता
0: था
1: लेकिन अनुभव आप कर रहे हैं कि आज आपको कोई निमंत्रण मिल रहा है
0: इसके कारण ये
1: है
0: कि हमने
1: मतलब क्या
0: पूजा की जगह पर
1: निमंत्रण नहीं मिल रहा
0: मतलब नहीं हो रहा
1: है
0: नहीं हो रहा है
1: हमने
0: क्यों नहीं हो रहा है प्रत्येक घरों में
1: दुर्गा पूजा
0: अब क्या हुआ
1: जिनका कोई
0: तो इसके कारण
1: को ढूंढना पड़ेगा
0: इसके कारण यही है
1: कि
0: हमने
1: पूजा की जगह
0: पर
1: परसों नीला रंग चाहिए
0: ऐसा
1: कभी था क्या पहले
0: हमने बहुत सारी ऐसी ऐसी
1: सब
0: ये सब चीजें
1: जोड़
0: क्या हो रहा बर्डन बढ़ रहा है
1: मतलब ही नहीं था
0: ये वो चाहिए
1: आपने पहले कभी सुना था कि
0: आज लाल
1: रंग चाहिए कल पीला रंग चाहिए
0: परसों
1: नीला रूप
0: सामने हो
1: ऐसा कभी था क्या पहले
0: उसके पश्चात
1: नहीं था ना
0: आप अपनी आराधना
1: ये सब
0: चीजें क्या हो रहा बर्डन बढ़ रहा है
1: दुर्गा सब तो
0: अब ये चाहिए
1: वो चाहिए

0: पाठ
1: अरे
0: करें।
1: भाई सबसे
0: उसका पाठ करें है दुर्गा के नाम दुर्गा
1: जप करें
0: सच्ची रूप सामने हो
1: और उसके
0: पात्रम पुष्पम फलम
1: तोयम यो मे भक्त्या
0: वंद्यो सती
1: कि जो दुर्गा सप्त सती
0: भक्ति से और पाठ करें
1: मुझको
0: उसका अर्पण करें
1: मैं उतने से ही प्रसन्न हो जाऊंगा।
0: ये जरूरी नहीं
1: तो भगवत गीता में स्वयं अपने वास से कहा है
0: पात्रम पुष्पम फलम
1: तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
0: कि जो

0: युवक अपने जोड़ा
1: खीर पूरी इतना रोट इतना प्रसाद ये सब
0: है तो उतने से
1: की इतनी आवश्यकता नहीं है,
0: श्रद्धा नहीं है, केवल दिखावा करना है।
1: समय
0: एक जोड़ा नहीं, 1000 जोड़ा चढ़ा दो तब भी कल्याण होने वाला।
1: अगर आप श्रद्धा पूर्वक ध्यान समय चाहिए
0: सजावट पर नहीं बल्कि जोड़ा भी चढ़ाते हैं
1: तो उतने से आपका कल्याण हो जाएगा।
0: का मंत्र
1: श्रद्धा नहीं है केवल दिखावा करना है, 1 जोड़ा नहीं 1000 जोड़ा चढ़ा दो तब भी कल्याण होने वाला नहीं है।
0: आपका ध्यान जो है
1: ध्यान होना चाहिए वो सजावट पर नहीं बल्कि प्रार्थना चाहिए,
0: पूजा
1: आप पाठ
0: जो दुर्गा पूजा का जो रहस्य है
1: इस रहस्य को
0: उस पर ध्यान
1: जनता के सामने लाने की आवश्यकता है,
0: न कि आप से भी आज ये श्रृंगार करेंगे कल वो श्रृंगार करेंगे
1: और पूरा समय शक्ति सब इसी में
0: जनता के बीच समाप्त होने का
1: तो फिर
0: आपने दुर्गा पूजा का जो रहस्य है
1: इस रहस्य को
0: जनता के सामने लाने की आवश्यकता है,
1: न कि आप आज ये श्रृंगार करेंगे कल वो श्रृंगार करेंगे
0: और पूरा समय शक्ति सब इसी में
1: समाप्त हो जाए तो फिर
0: इतना आपने
1: दुर्गा पूजा क्या
0: आपने लंबा चौड़ा है ही
1: कथा की कौन मंत्र जाप किया दुर्गा जी की
0: ये सब चीजें
1: मूर्ति के पर हमको
0: विचार करना होगा।
1: दीपक जलाया
0: कारण है
1: कि घरों में दुर्गा पूजा बंद हो गई
0: क्योंकि आपने उसको बहुत
1: बर्डन बना दिया है,
0: बहुत
1: इनका पाठ भी
0: इतना लंबा चौड़ा कर दिया
1: चाहिए
0: जबकि इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं
1: उस मंत्र का जप होना चाहिए
0: यही सबसे मुख्य चीज है।
1: एक अखंड दीपक जलाया
0: ये प्रसाद वो प्रसाद ये फल वो फल
1: दुर्गा
0: सप्तशती के जो ये 700 श्लोक है
1: इनका पाठ
0: सामर्थ्य के अनुसार तो
1: इनका पाठ होना चाहिए
0: और जो निवारण मंत्र है
1: जितना आपका समय है
0: जब होना चाहिए
1: यही सबसे
0: मुख्य चीज है
1: वो है,
0: बाकी तो ये प्रसाद वो प्रसाद ये फल वो गुण ही हमें
1: हटा दिया।
0: वो आपके समय शक्ति
1: टाइम चाहिए
0: वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए
1: जितना आपके समय लगा दिया सारा समय जो है
0: जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से श्रृंगार
1: सजावट में लगा दिया
0: रोज जरूरी
1: में लगे
0: वो है
1: तो दुर्गा सप्तशती का पाठ
0: ये जरूरी है
1: एक दिन वही हमने हटा दिया
0: आज
1: पाठ करने के लिए
0: टाइम चाहिए
1: तो आपने सारा समय जो है
0: वो प्रसाद पकाने में लगा दिया
1: सारा समय जो है आपने
0: आपका
1: वो जनता है
0: श्रृंगार सजावट में लगा दिया
1: रोज आप बहुत अच्छा बनेगा
0: और प्रत्येक घर में दुर्गा पाठ पाठ करोगे
1: शुरू हो सके
0: एक दिन आपने श्रृंगार कर दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।
0: बस
2: अब आप माँ की आराधना हो रही है ये जो 9 दिन है जब माँ दुर्गा की बात हो रही है तो उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र
0: प्रत्येक घर में दुर्गा पूजा पुनः
2: क्या हर शस्त्र किसी विशेष शक्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। माँ की आराधना हो रही है ये जो 9 दिन जब माँ दुर्गा की बात हो रही है तो उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र क्यों दिखाए जाते हैं,
0: हमारे सामने
2: क्या हर शस्त्र किसी विशेष शक्ति का प्रतीक है।
0: कोई
1: जी हाँ
0: विग्रह
1: केवल माँ दुर्गा ही नहीं,
0: नहीं है जिनके
2: ये भी हमारी
0: हाँ ये अद्भुत बात है कि हम
1: ये
0: सनातन धर्मावलंबी
1: कि
0: ऋषियों ने
1: पास
0: जो हमारे सामने जो
1: शस्त्र होने
0: देवताओं के विग्रह सामने दिए
1: एक पुरोहित है
0: पुरोहित
1: का अस्त्र शस्त्र क्या है।
0: अस्त्र शस्त्र का मतलब तलवार बंदूक पिस्तौल ही नहीं है
1: तो
0: कहने का मतलब ये है
1: उसके अस्त्र शस्त्र क्या है,
0: हमारे पास
1: भी शस्त्र है
0: शस्त्र होने चाहिए।
1: अज्ञता चतुर्वेद
0: एक पुरोहित
1: धनु
0: पुरोहित का अस्त्र शस्त्र क्या है,
1: अब अस्त्र
0: शस्त्र का मतलब तलवार बंदूक पिस्तौल ही नहीं है,
1: है ना
0: पुस्तक
1: अब एक
0: ये सब
1: विधि विधान
0: शस्त्र क्या है
1: उसके सामने होना
0: ही शस्त्र है।
1: एक पुरोहित
0: के पास अगर पुस्तक नहीं है
1: चतुर्वेदा पृष्ठता
0: ससरम धनु
1: कहीं ना कहीं
0: ये अगर गड़बड़ हो गया
1: तो कैसे
0: कि आपके पास में
1: तो
0: मंत्र
1: अस्त्र शस्त्र
0: पुस्तक
1: सज्जित होना चाहिए।
0: ये सब विधि विधान
1: विद्यार्थी के पास
0: आपके सामने होना चाहिए
1: उसके अस्त्र शस्त्र
0: एक पुरोहित के पास
1: अगर पुस्तक नहीं है
0: जितने भी नोट्स होते हैं
1: तो फिर कहीं ना कहीं
0: अगर गड़बड़ हो गया
1: तो फिर कैसे
0: वो इन अस्त्र शस्त्रों
1: से परिपूर्ण होगा
0: अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए।
1: फिर एक विद्यार्थी
0: के पीछे दर्शन
1: जो है
0: उसके अस्त्र शस्त्र
1: उसकी पुस्तक है
0: कि भाई
1: उसके
0: आप यदि जीवन में नोट्स होते
1: हैं
0: यही तो सब उसके अस्त्र शस्त्र हैं
1: जब
0: वो इन अस्त्र शस्त्र से
1: पूर्ण होगा
0: आप
1: तभी तो
0: में
1: वो आगे बढ़ पाएगा
0: शस्त्र भी होना ही चाहिए।
1: इसके पीछे दर्शन हमारा जो दर्शन है वो बहुत अद्भुत है
0: कि भाई
1: आप यदि जीवन में सुख शांति चाहते हो
0: तो
1: आप देवता का पूजन कर ही रहे हो
0: लेकिन आपके पास में
1: कपड़े से
0: शस्त्र भी होना ही चाहिए
1: रख दिया है
0: हर रोज
1: उस पे जो है दुर्गा
0: पूजा गौरम
1: करुणा अवतार
0: आरती भी कर रहे हैं
1: लेकिन
0: क्या मजाल है
1: कि उसके दिन किसकी पूजा होती है
0: कपड़े
1: शस्त्र की पूजा होती है
0: वो
1: शस्त्र की पूजा होनी चाहिए। आप पढ़ोगे नहीं कपड़े से सजा करके उसको रख दिया है और रोज उस पर जो है कपूर गौरम करुणा अवतारम नजर भी दौड़ा रहे हैं कि इसके क्या मजाल है, ये हमको बोल क्या रहा है, क्या कर कपड़े से खोल करके उस पुस्तक को पढ़ रहे
0: हैं। जितने भी अस्त्र
1: आप पढ़ोगे नहीं तो रामायण शास्त्र में रखने का अपना महत्व है
0: घर में रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
1: उस पर थोड़ा नजर भी दौड़ानी चाहिए कि इसके भीतर है क्या, ये हमको बोल क्या।

0: देवता क्या कर रहा है,
1: तो उसका
0: ये जितने भी अवतरण जीवन में कीजिए इनके उनकी प्रत्येक जो का अपना भगवान राम का महत्व है।
1: और तो भगवान राम ने अपने जीवन को कैसे जिया
0: बता रहे हैं
1: कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसका संपूर्ण चरित्र का अनुकरण जीवन में कीजिए, उनकी कथाएं जो भगवान राम का अवतरण लड़ने का कार्य है,
0: तो भगवान राम ने अपने जीवन को कैसे जिया
1: ये भी तो आपको देखते हैं में ढाल पड़ेगा। शक्ति का स्वरूप दुर्गा ने किस प्रकार से शक्ति का जबकि राक्षसों का विनाश की लड़ाई करने का काम
0: इतना युद्ध लड़ने का कार्य किया,
1: हम युद्ध में जाने
0: ये देखिए ना।
1: आप यदि आप
0: पूरी की पूरी कथा हमको
1: कथा को देखते हैं
0: अलग बात अलग
1: तो दुर्गा
0: शक्ति का स्वरूप है
1: लेकिन एक है देवी दिखाई का रूप है
0: जबकि शास्त्रकर्ताओं ने कहा है कि लड़ाई करने का काम किसका है,
1: कौन है देवी की सेना है मतलब सारी की सारी
0: देवी का है
1: लेकिन ये पूरी की पूरी कथा हमको तो
0: अलग
1: अलग तरफ ले जा रही है।
0: यहाँ तो लड़ती हुई स्त्रियों के लिए
1: दिखाई दे रही है
0: और चेतावनी भी दी है कि यदि
1: देवी के देवी के साथ में लड़ने वाली कौन है, देवी की सेना है मतलब सारी की सारी देवियां
0: हैं युद्ध मैदान में आगे
1: सब स्त्रियां हैं
0: और जो लड़ रही है।
1: आप उस कथा को शिक्षा ये स्त्रियों के लिए
0: ये
1: और चेतावनी भी दी है कि यदि सब अगर जरूरत
0: पड़े
1: तो भाई आप भी लड़ सकते,
0: पुरुष नहीं
1: आपको भी युद्ध मैदान में आगे आना पड़ेगा
0: तो ध्यान देंगे
1: यदि
0: तो
1: आप उस एक आश्चर्य चकित कर देने वाली बात दिखाई देगी कि
0: उस समय को युद्ध में आना पड़ा
1: क्यों आना पड़ा था,
0: इसलिए नहीं लड़ पा रहा था
1: पुरुष नहीं थे
0: कमजोर पर
1: हुआ था।
0: यदि आप ठीक से देखोगे
1: तो ध्यान देंगे
0: तो आपको
1: एक आश्चर्य क्योंकि पुरुष
0: कर देने वाली बात दिखाई देगी
1: कि
0: उस समय
1: इंद्रादि देवता
0: पुरुष कमजोर हो गया था
1: इसलिए नहीं लड़ पा रहा था,
0: पुरुष कमजोर
1: यही
0: हुआ था।
1: यदि आप ठीक से देखोगे
0: तो पुरुष के कमजोरी का कारण क्या था
1: क्योंकि पुरुष कर क्या रहा था,
0: पी रहा था।
1: भाई दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट तो है
0: नहीं,
1: कोई डॉक्टर बैठ कर
0: तो ऐसा है नहीं जो ये बताए कि आप जो है पी करके
1: यही सब सामान्य जीवन में भी हो रहा था।
0: पुरुष जो है खाओ
1: तो कोई डॉक्टर नहीं बोलने वाला है,
0: हर डॉक्टर यही बोलेगा कि तेरा
1: भाई दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट तो है नहीं,
0: पैदा हुई
1: डॉक्टर बहुत
0: तो ऐसा है नहीं जो ये बताए कि आप जो है पी करके
1: आपसे जीवन में कमजोर
0: होता है
1: तो उस समय का
0: ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं बोलने वाला है,
1: हर डॉक्टर यही बोलेगा
0: तब
1: तेरा
0: अब
1: ये जो ये बीमारी पैदा हुई है क्योंकि तूने बहुत पिया है इसीलिए तू ये बीमार हुआ है।
0: तो और यदि
1: ये सब चीजें
0: आज क्या हो रहा है,
1: व्यक्ति जो है कमजोर होता है
0: तो उस समाज समाज जो है पुरुष समाज कमजोर हो गया था,
1: तब जाकर के
0: समाज जो है
1: वो यही कर रहा है
0: और नारी समाज
1: जितने नौजवान लोग हैं वो कहाँ
0: है, ये कथा हमको बताती है
1: आज सब।
0: और यदि इस चीजों पे लग गए हैं
1: आज क्या हो रहा है हमारे समाज में,
0: ये फालतू की चीजों पे लग गए
1: हमारा समाज,
0: तो भगवान की कृपा से केवल पुरुष ही नहीं
1: कर क्या रहा है,
0: कुछ स्त्रियां भी जो है इसमें
1: समाज जो है
0: गंदा मिला रही है
1: क्योंकि
0: हमारे जितने नौजवान लोग हैं वो कहाँ है,
1: भी अधिकार बराबर का अधिकार
0: मिला है, इन्हीं चीजों पे लग गए हैं।
1: खाली बोतल पी रहा है
0: तो महिलाएं कोई कम है क्या,
1: और अब तो भगवान की कृपा से केवल पुरुष ही नहीं
0: अब तो कुछ मिला रही
1: स्त्रियां भी जो है इसमें
0: समाज कंधे से कंधा
1: मिला रही है क्योंकि
0: कथाएं हमको बता रही हैं
1: है ना,
0: इन भी अधिकार बराबर का अधिकार मिला है,
1: पुरुष
0: अगर एक बोतल पी रहा है तो महिलाएं कोई कम है क्या,
1: हम इन कथाओं
0: भी जो है
1: इन पूजाओं को
0: कर तो रहे हैं
1: लेकिन
0: हमें सुर मिला रही है
1: तो इस तरह से समाज कमजोर हो रहा है,
0: जबकि ये कथाएं हमको बता रही हैं
1: कि
0: इन चीजों से हमारा समाज हमारा जीवन कमजोर होता है, तो हम इन कथाओं को इन पूजाओं को कर तो रहे हैं लेकिन अपने जीवन में विधिवत नहीं उतार रहे हैं। अब हमको इन कथाओं को अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है।

0: छाकर जैसे कहते हैं,
1: आचार्य जी,
0: गिरावट है
1: कलश स्थापन
0: भोजपुरी में,
1: नवरात्रि की
0: इसका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं
1: कलश और उसमें स्थापित जीवन तत्व का, क्या सिंबोलिज्म, क्या महत्व
2: है,
1: और कृपया छाक के बारे में, कई जो महिलाएं हैं
2: छाक जैसे कहते हैं, छाक गिरावट है जा
1: जैसे भोजपुरी में कहते हैं,
2: तो
1: इसका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं
2: बनाए उसमें
3: नवरात्रि के पहले दिन
2: बना सके, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है
3: शके का जो
2: जो यंत्र
3: शुभ जगह
2: है, यंत्रों का
3: या आपका जो पूजा घर है
2: उसके
3: पूजा घर में है,
2: और एक सुंदर चौकी का निर्माण करें,
3: प्रतिमा को बिठाएं,
2: वेदी बनाएं,
3: यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है
2: बना
3: तो
2: सकें
3: तो
2: अष्टदल
3: कमल
2: या शक्ति का जो
3: कलश के
2: जो यंत्र होते
3: और
2: हैं, उन
3: नारियल को
2: ही
3: सजा
2: करके
3: और
2: उसके ऊपर जो है आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की
3: प्रतिमा
2: को बिठाएं,
3: तो
2: यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है
3: तो
2: जिस तरह से
3: मॉरिशस
2: में कलश के ऊपर और नारियल को ही सजा
3: करके
2: रख देते हैं दुर्गा माता
3: पुरोहित होना चाहिए,
2: वो
3: प्रतीक के
2: रूप
3: घर में कलश की
2: तो
3: स्थापना
2: इसको
3: रखें,
2: क्योंकि
3: कलश जो है वो
2: प्रत्येक
3: पूजा में
2: कलश
3: की स्थापना होती
2: है,
3: तो वो तो
2: उस कलश
3: की स्थापना करने के लिए
2: तो
3: आपके सामने
2: पुरोहित
3: कलश चाहिए,
2: वो
3: आकर के
2: वो एक दूसरा है,
3: और जिस
2: कलश की आप
3: चर्चा कर रहे
2: हैं
3: वो शक्ति दुर्गा की, दुर्गा का जो प्रतीक के रूप में
2: उस कलश
3: गौरी गणपति
2: आप
3: तब वो कलश की स्थापना
2: अपने ही भाव से,
3: तो
2: अपने
3: वो
2: मन
3: एक
2: के भाव
3: दूसरा
2: से
3: है,
2: और
3: जिस
2: कलश
3: की
2: आप
3: चर्चा
2: कर
3: रहे हैं
2: मेरे ख्याल से,
3: तो वो शक्ति दुर्गा की
2: कलश के
3: दुर्गा का जो
2: शुद्ध
3: प्रतीक के रूप में
2: जो है
3: उस कलश को
2: यही
3: आप
2: ओम
3: दुर्गाए नमः
2: अपने
3: ही भाव से,
2: अपने
3: मन के भाव
2: जो है
3: भी आप
2: उस
3: जल कलश
2: को
3: भरा
2: पड़ा
3: है
2: जल
3: तत्व
2: जल
3: से ही
2: जो है
3: कलश के भीतर में
2: जल
3: भरे शुद्ध जल,
2: क्योंकि
3: जल जो है
2: उसके
3: ऊपर
2: यही
3: नारियल में
2: प्रकृति का
3: सबसे
2: महत्वपूर्ण
3: अंग है,
2: जिनके
3: पास
2: शरीर में
3: भी
2: जो है
3: मूर्ति
2: है,
3: तो फिर
2: पूरा जल
3: हमारे
2: शरीर में भरा
3: पड़ा हुआ
2: है,
3: जल
2: ये सब
3: जल
2: से ही
3: जो
2: है जीवन प्रारंभ
3: होता है
2: हमेशा,
3: तो ये सब
2: उस मूर्ति
3: प्रतीक
2: को सामने रखें,
3: तो उसके
2: ऊपर
3: हम
2: नारियल
3: में
2: दुर्गा
3: माँ
2: की
3: जो
2: नौ दिनों
3: तक सजा
2: देते
3: हैं,
2: जिनके
3: पास
2: में
3: दुर्गा
2: माँ
3: की
2: मूर्ति
3: है,
2: तो
3: फिर
2: उनको
3: कलश
2: के ऊपर
3: ये
2: सब
3: दोबारा
2: बनाने
3: की
2: जरूरत नहीं है,
3: वो
2: दुर्गा
3: हमेशा
2: जो है
3: प्रार्थना
2: उस मूर्ति
3: को सामने
2: रखें,
3: और फिर
2: एक
3: अखंड
2: दीपक
3: बना
2: दे
3: जो
2: नौ
3: दिनों तक
2: जो
3: जल
2: दुर्गा
3: है,
2: कोशिश
3: करें
2: कि
3: वो दीपक
2: न बुझे,
3: जो
2: निवारण
3: मंत्र है
2: अखंड
3: दीपक
2: ओम
3: नमः
2: जला
3: करके
2: आप
3: फिर
2: जो
3: निवारण
2: मंत्र
3: है
2: निवारण
3: करें,
2: दुर्गा
3: चालीसा
2: करें,
3: नहीं
2: तो
3: अगर कोई
2: दुर्गा
3: सप्तशती
2: का पाठ
3: कर
2: सके
3: तो
2: दुर्गा
3: सप्तशती
2: का पाठ करें,
3: मंत्र को ये
2: मंत्र
3: जो है
2: जागरूक
3: करें,
2: जो
3: निवारण
2: मंत्र
3: है
2: ही
3: मंत्र
2: से
3: ओम

0: चंडिका तो आए
1: विधिवत जो
0: नवारण मंत्र है जब उन नवारण मंत्र का जप करें
1: सुबह एक माला जप सांझ को उन्दाये करें
0: तो इससे नवारण मंत्र जो है
1: तो इस मंत्र को ये मंत्र जो है गुरु के और बाह्य जो है
0: आपका तभी मंत्र सिद्ध
1: शरीर जो है शुद्ध होता है मन
0: विधिवत इस मंत्र का जप कम से कम
1: एक माला जप को होती है
0: सुबह पहले दिन आप एक कढ़ा में इससे
1: तब आप जो है अच्छे किस्म के अभ्यंतर
0: और बाह्य जो है आपका वहाँ पर रूप दे
1: शरीर जो है शुद्ध होता है
0: मन पवित्र होता है
1: दुर्गा माँ की कृपा की प्राप्ति आपको होती है।
0: फिर पहले दिन आप एक कढ़ा में थोड़ा मिट्टी डाल
1: करके धान्य अच्छे किस्म के जौ को जो है
0: माँ दुर्गा की वहाँ पर रूप दे
1: हमारा जीवन धान्य जो है
0: फिर वो नौ दिनों में तैयार हो जाते हैं
1: जो है
0: हमारे में आगे बढ़ जाए।
1: तो ये हम पहले दिन हम अर्पण करें संकल्प
0: तो जिस तरह से इतनी शीघ्रता से और धान्य
1: छाक जो है ये उत्पन्न
0: हुआ माँ दुर्गा का चार है हमारे
1: जीवन लवंग हमारे जीवन भी इसी तरह से शीघ्र
0: जो है
1: और शीघ्र से शीघ्र जो है
0: उसका आगे बढ़ जाए।
1: तो ये
0: हम पहले दिन यहाँ पर
1: लोकल संकल्प पूर्वक ये लोकाचार
0: है
1: और ये सब छाक जो है ये
0: जहाँ से
1: एक लोकाचार है
0: लवंग इलायची
1: इत्यादि को जो है
0: और बिहार में जाएंगे
1: उसका अर्घ्य देने का भी
0: गांव में
1: गांव की तरफ
0: यहाँ पर लोकल विधान है ये लोकाचार है
1: समझ में आता है।
0: ये सब चीजें जो है
1: जहाँ से पूर्वज लोग आए थे
0: उसमें कर रहे
1: सब
0: हैं
1: बिहार इत्यादि प्रांतों से
0: वहाँ से
1: तो बिहार में परंपरा जाएंगे
0: तो एकदम
1: लेकिन यदि आप
0: गांव में गांव की तरफ
1: आप जाएंगे
0: आप पूछे ना
1: तो
0: दुर्गा के बारे में
1: जाकर के समझ में आया ही
0: कि वास्तव में भीतर में
1: दुर्गा पूजा
0: दुर्गा के विषय में
1: लोगों को ज्यादा जानकारी होगी
0: नहीं
1: वहाँ से
0: ये परंपरा आई है
1: होंगे
0: लेकिन यदि आप वहाँ गांव में जा करके
1: अगर आप पूछे ना
0: दुर्गा के बारे में
1: वहाँ तो पर शायद ही
0: गांव के भीतर में
1: जानकारी
0: दुर्गा के विषय में लोगों को ज्यादा जानकारी हो है
1: वहाँ पर
0: नहीं
1: शीतला
0: तो वहाँ पर बहुत कम लोग होंगे
1: ज्यादातर
0: दुर्गा माता पाया जाता है
1: के बारे में ज्यादा जानकारी पूर्वी
0: उत्तर प्रदेश
1: पर गांव में बिहार
0: शीतला माता के
1: कई इलाका है
0: जानकारी में
1: के लोगों
0: को है वहाँ पर
1: लोग है वहीं से
0: शीतला माता परंपरा वहीं से आई है
1: और ज्यादातर विधान है
0: शीतला माता का पूजन होता है
1: प्रत्येक गांव में एक
0: उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार
1: और आप जानते ही हैं
0: बचपन में
1: बच्चों गांव में
0: तो ये क्योंकि
1: ये एक बड़ी अजीब बात
0: पूर्वज लोग हैं
1: जब एक बच्चे को आती है तो वहीं से आई
0: पूरे इलाके भर के बच्चे को
1: पूरे गांव भर के
0: जितने बच्चे हैं
1: सबको माता होता है
0: प्रत्येक गांव में एक मंदिर होता है
1: सभी लोग जो हैं
0: और आप जानते ही हैं
1: बचपन में बच्चों को माता आती है
0: और ये एक बड़ी अजीब बात है
1: कि जब एक बच्चे को आती है तो उस
0: तो पूरे इलाके भर के बच्चे को
1: पूरे गांव भर के जितने बच्चे हैं सबको माता आ जाती है
0: तो वहां पर सभी लोग जो हैं
1: और माता
0: अपने घर से
1: लवंग इलायची
0: सभी लोग अच्छा
1: हल्दी
0: और ये सब
1: औषधियां
0: माता को वहां पे चढ़ाते हैं
1: एक बार जटामासी
0: नाग केसर
1: नागरमोथा
0: ये सब पीस करके इनके बाद
1: और तब ये सब
0: वहाँ पे दिया जाता है
1: माता के मंदिर में जाते हैं पुजारी
0: ये सभी लोग लेकर के हैं
1: और ये सब हैं
0: और उन बच्चों को वहाँ पे चढ़ाते
1: हैं
0: जो बच्चे जिनको माता आगे चढ़ाए
1: तो उनको स्नान करी वहाँ पे पूजन करते हैं
0: तो
1: पूजन
0: यही वो
1: तब ये सब
0: के रूप में
1: दिया जाता है
0: फिर से वापस
1: तो ये
0: वहाँ से
1: ये सब लेकर के बाकी
0: अन्य भर आते हैं और उन बच्चों को
1: कहीं पर स्नान कराते
0: हैं जो बच्चे
1: तो
0: जिनको माता आ गई है
1: तो उनको स्नान कराते हैं
0: तो गांव में
1: यही वो
0: आप शहर में बिहार में
1: जाएंगे
0: वहां पर
1: आपको नहीं है
0: इसके
1: तो वहां से
0: जानकारी
1: ये विधान
0: आया
1: बाकी अन्य
0: आई है
1: वहां अन्य
0: कहीं जगह पर
1: कहीं पर भी
0: माता
1: छाक नहीं है
0: आप छाक बोलेंगे
1: तो लोगों को समझ में नहीं आएगा छाक क्या है
0: हमारे पूर्वज यहां पर आए होंगे
1: ये गांव में इंटीरियर में
0: आप
1: शहर में बिहार में ये
0: वहां भी आपकी
1: तो यही जो छाक में
0: जानकारी मिलेगी
1: तो ये सब चीजें आई है वहां से
0: भक्ति से
1: आप लोग जो है
0: जगदम्बा को
1: चढ़ाई है और साथ साथ
0: हमको ये भी ध्यान देना है
1: कि जब आप कोई भी चीज माँ
0: पर आए होंगे तो
1: अपने देवता को चढ़ा होगा
0: तो चढ़ाने के
1: बाद ये पूजा शुरू हो जाती
0: है तो यही जो छाक है
1: और
0: बस ये है
1: कि आपको श्रद्धा भक्ति से आप जब माँ जगदम्बा को चढ़ाई है और साथ साथ
0: हमको ये भी ध्यान देना है कि
1: जब आप
0: कोई भी चीज माँ
1: बना
0: अपने देवता को चढ़ाते हैं
1: तो चढ़ाने के बाद वो चीज
0: प्रसाद हो जाता है
1: ग्रहण करें
0: का नहीं जाता प्रसाद
1: अपनी समय शक्ति के हिसाब से
0: कई बार
1: लोग छाक आचार्य जी
0: बनाएंगे
1: कितना
0: तो लवंग
1: डालना है
0: घड़ा इलायची
1: डालना थोड़ा सा बना करके वो अर्पण
0: इलायची डालो
1: माँ जगदम्बा को
0: नहीं नहीं हमारे पंडित जी कह रहे हैं
1: ग्रहण करें
0: दो लवंग
1: दो इलायची
0: अपनी समय शक्ति के हिसाब से
1: कई बार लोग हमको फोन करके पूछते हैं कि आचार्य जी
0: कितना
1: लवंग डालना है
0: कितना इलायची डालना
1: छाक पर ज्यादा
0: लवंग
1: उनका डालो
0: ध्यान रहता है,
1: तो कहते नहीं नहीं हमारे प्रसाद पर ज्यादा ध्यान रहता है,
0: दो लवंग
1: दो इलायची डालना था।

0: डाल दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, डाल दो आप समय शक्ति से, नहीं नहीं आपके हिसाब से कितना डाल ले
1: पाठ पर ज्यादा,
0: तो वो झाक पर ज्यादा वो उनका ध्यान रहता है, पूजा पे ध्यान कम, प्रसाद पर ज्यादा ध्यान रहता है, पूजा पे ध्यान कम,
1: इलायची डाल दो बस इतना से आप काम हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कितना करें,
0: पूजा पर अपनी कथा पर ये सब, तो ये पाठ पर ज्यादा ध्यान दे,
1: ये है
0: न कि कितना लवंग कितना इलायची,
1: अरे बस
0: क्योंकि जगह
1: इलायची डाल दो बस इतना से आप काम हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कितना करें,
0: तो यथाशक्ति
1: चढ़ाने का
0: तो ये परंपरा है
1: भारत में,
0: ये है
1: तो इस तरह से चढ़ाए
0: जो इच्छाएं का इतिहास है
1: चढ़ाने
0: का, तो क्योंकि अन्य अन्य जगह भारत में जो है पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, पान
1: पान
0: में जो है लवंग इलायची चूना का
1: अर्पण वो ले भी सके,
0: ग्रहण भी कर सके,
1: परंपरा है क्योंकि भारत में पान खाया जाता है,
0: पूजा
1: इस तरह से
0: धूमधाम चढ़ाए भी जाते हैं,
1: चढ़ाने के बाद
0: प्रसाद रूप में लोग
1: बनी रहते
0: भी है,
1: तो हम इतना चढ़ाए छाक को,
2: अगर माँ दुर्गा के सामने बैठ कर
1: अर्पण वो ले भी सके, ग्रहण भी कर सके,
2: तो इस तरह से को क्या मांगना चाहिए, धन सुख सफलता या फिर ऐसी बुद्धि और शक्ति जिसे वो हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल, अगर माँ दुर्गा के सामने बैठकर हमें सिर्फ एक ही वरदान मांगने का अवसर मिले, तो एक भक्त को क्या मांगना चाहिए, धन सुख सफलता या फिर ऐसी बुद्धि और शक्ति जिसे वो हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सके।
1: तो सब चीज देखिए, माँ भगवती आद्य शक्ति दुर्गा होगा जो उनका स्वरूप
0: तो
1: है,
0: वो वास्तव में
1: नहीं शक्ति का प्रतीक,
0: तो फिर उस धन का क्या करोगे,
1: तो हमको शक्ति मांगनी चाहिए,
0: क्योंकि
1: अगर आपके पास शक्ति को प्राप्त मांगेंगे, यही हमारी कथाओं में भी बोला गया है कि आप शक्ति को प्राप्त करो,
0: तो
1: क्योंकि
0: धन होगा
1: से ही सब
0: तो
1: कुछ संभव,
0: शक्ति नहीं होगी
1: शक्ति
0: तो
1: के बिना
0: का क्या करोगे,
1: शिव भी शव है ऐसा कहा गया,
0: क्योंकि हम अगर शक्ति को प्राप्त मांगेंगे, यही हमारी कथाओं
1: हमारे शास्त्र
0: गया
1: कि आप शक्ति को प्राप्त करो,
0: मानव
1: क्योंकि
0: दिया है
1: शक्ति से ही सब कुछ संभव,
0: पहला लक्ष्य शक्ति ही,
1: शक्ति के बिना
0: शक्ति का
1: शिव भी शव है ऐसा
0: हमें मांगना क्या है,
1: शक्ति सर्वोपरि है,
0: जगदम्बा से अपने देवता से
1: हमारे शास्त्र कर्ताओं ने हमको
0: शक्ति मिलेगी
1: दिया है,
0: तो हम अपने
1: मुख्य लक्ष्य माने हैं
0: सब,
1: पहला लक्ष्य शक्ति है
0: और धर्म जो है वो
1: संपूर्ण
0: कर सकेंगे,
1: तो नहीं
0: हमें मांगना क्या है,
1: होगा
0: शक्ति
1: जगदम्बा से
0: अपने देवता
1: से,
0: किसी
1: शक्ति की प्राप्ति
0: है
1: हमें प्राप्त,
0: के पास
1: हमको शक्ति मिलेगी,
0: तो हम अपने
1: जीवन के अन्य सब अंगों को
0: आप शक्ति
1: और
0: मांग करें
1: संपूर्ण कर सकेंगे,
0: मिले शक्ति
1: परिवार को, शक्ति
0: धन बहुत होगा
1: को, आप
0: देश को
1: नहीं
0: है
1: तो
0: वो धन हमारे किसी
1: काम का नहीं है,
0: सबको
1: आपके पास
0: में शक्ति
1: होगी, तो
0: होना चाहिए
1: अपने आप
0: दुर्गा की पूजा कर रहे हैं,
1: समाज अपने आप शक्तिशाली हो
0: जाएगा, शक्ति की मांग करें
1: जो है,
0: आपको शक्ति मिले, आपके परिवार को शक्ति मिले, आपके गांव को,
2: आपके
0: देश को शक्ति मिले,
2: नई पीढ़ी उनके बारे में बात कर रही थी कि कैसे
0: सबको
2: भटक रहे हैं
0: प्राप्त होगी तो
2: सही रास्ते से,
0: तो
2: आज की जो नई पीढ़ी है उनको नवरात्रि की जो स्पिरिचुअल वैल्यू जो आध्यात्मिक जो मूल्य है उनको कैसे जोड़ा जा सकता है,
3: हमारे जो
2: नई पीढ़ी उनके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ना सेलिब्रेशन
3: भटक रहे
2: ना बने बल्कि
3: सही रास्ते
2: से काफी तो
3: बने,
2: आज की जो नई पीढ़ी है उनको नवरात्रि
1: इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने
2: स्पिरिचुअल वैल्यू जो आध्यात्म जो मूल्य है उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, ताकि ये जो सिर्फ एक कहते हैं ना सेलिब्रेशन ना बने बल्कि संस्कार काफी पर्व
1: बने।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कथा की परंपरा दिया है ना,
1: और कथाएं भी हमको बताई
0: हैं
1: कि किस तरह से
0: आसानी से
1: और दुर्गा जो है वो स्त्री का रूप है, देवियां साथ में हैं,
0: कथा
1: तो सब यदि मिलते
0: हैं दुर्गा की
1: उत्पत्ति
0: कहाँ
1: हुई है,
0: ये आपको ध्यान देना,
1: हमें
0: बड़ी से
1: बड़ी
0: समझाना है
1: आपदा
0: कि दुर्गा कहीं बाहर से नहीं आई,
1: और
0: कथा ने बताया है
1: कि प्राप्ति हमें कैसे हो, देखिए
0: कथा कितनी अद्भुत है,
1: दुर्गा उत्पत्ति कहाँ हुई,
0: कोई महिषासुर को मार नहीं पा रहा,
1: तो
0: भगवान ब्रह्मा के पास गए,
1: को यही समझाने
0: का है
1: कि भाई
0: दुर्गा
1: तो मैं भी नहीं मार
0: सकता
1: हूँ,
0: चलो भगवान
1: कथा ने बताया
0: विष्णु के पास में,
1: जब भगवान विष्णु ने भी कहा
0: महिषासुर वरदान
1: ऐसा मिला
0: हुआ है,
1: सब दुखी हो गए,
0: हम तो मार नहीं सकते हैं, चलिए चलिए भगवान शिव,
1: कोई महिषासुर को मार नहीं पा रहा,
0: तो सब भगवान ब्रह्मा के पास गए,
1: भगवान ब्रह्मा ने कहा
0: मार नहीं
1: सकते कि भाई इसको तो मैं भी नहीं मार सकता हूँ,
0: दुर्गा
1: चलो भगवान
0: आद्याशक्ति
1: विष्णु के पास,
0: वही
1: भगवान विष्णु ने भी
0: कहा
1: इसको वरदान ऐसा मिला
0: ही मार सकती है नारी शक्ति,
1: हम तो नहीं सकते,
0: चलिए
1: चलिए
0: भगवान
1: शिव
0: के पास,
1: जब
0: पता चला सब देवताओं को
1: भाई, भाई दुर्गा मार
0: इसको मार नहीं सकते हैं,
1: हाँ
0: यदि
1: दुर्गा आए
0: दुर्गा के
1: आए तो वही
0: इस महिषासुर को मार सकती है, कहाँ
1: है
0: ही मार सकती
1: है, कोई कह रहा
0: है
1: वो देवी लोक में है,
0: इसको मार सकती है
1: विष्णु लोक में,
0: जब पता चला सब देवताओं को कि भाई दुर्गा

0: मार सकती है तो लोग देवता लोग
1: इसी बात में जो है।
0: लेकिन थोड़ी देर बाद निराशा हो गई,
1: भेद
0: दुर्गा के बारे में कोई जानता नहीं है, दुर्गा कहाँ रहती है,
1: कोई कह रहा है कोई कह रहा नहीं,
0: कोई कह रहा है कि वो देवी लोक में है, कोई कह रहा है कि वो
1: भेद
0: लोक में है, कोई कह रहा है बैकुंठ में, कोई कह रहा है यहाँ, कोई कह रहा है वहाँ।
1: तो
0: इसी बात में जो है
1: शक्ति कभी नहीं मिली,
0: चारों तरफ भेद सामने आ गया।
1: देवता ने पूछा है भगवान पड़ गई
0: क्यों नहीं मिली,
1: कह रहा यहाँ है कोई कह रहा नहीं,
0: विचार नहीं है कोई
1: यहाँ है,
0: तो इसमें
1: तुम्हारे भाव
0: भेद हो गया
1: है, तुम में एकता ने
0: सब देवताओं को समझाया
1: शक्ति मिलेगी,
0: शक्ति तो तभी मिलती है,
1: शक्ति कभी नहीं मिलेगी,
0: भाव विचार।
1: देवता ने पूछा है भगवान हमको क्यों नहीं मिलेगी,
0: कहा तुम्हारे अभी तक विचार एक
1: भाव विचार
0: अभी तुम्हारे भाव
1: हो जाएगी, उन्हें
0: तुम में एकता नहीं है,
1: जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: शक्ति तो वहीं प्राप्त हो जाएगी,
1: तुम्हारे वहीं आ जाएगी,
0: विचार तुम में एकता होगी तभी शक्ति मिलेगी,
1: तुम यहीं पर बैठ करके इकट्ठा होकर
0: एक चार शक्ति की आराधना
1: एकता हो जाएगी,
0: उस दिन तुमको शक्ति को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
1: तुमको उस दिन शक्ति
0: उन्होंने
1: वहीं प्राप्त हो जाएगी,
0: शक्ति वहीं आ जाएगी।
1: इसलिए
0: भगवान विष्णु
1: हे देवता तुम यहीं पर बैठ करके इकट्ठा होकर
0: एक साथ उस शक्ति की आराधना करो,
1: और कथा बोलती है कि
0: सब देवता इकट्ठा हुए उस दिन
1: के अंदर से एक दिव्य
0: प्रार्थना उन्होंने की,
1: एक साथ सबने प्रार्थना की,
0: उस प्रार्थना में भगवान शिव
1: भगवान ब्रह्मा संपूर्ण भगवान विष्णु भी उस
0: प्रार्थना में थे,
1: निकली
0: सब उस शक्ति में
1: शामिल हुए,
0: सब सारी की सारी शक्तियां
1: सम्मिलित होकर के
0: करते
1: शक्ति भगवान जगदम्बा शिव के अंदर प्रकट हो गई,
0: दिव्य प्रकाश का मतलब जो है कि
1: भगवान विष्णु के साथ नहीं
0: शरीर से निकला, भगवान ब्रह्मा के
1: संपूर्ण देवताओं के शरीर से
0: आएगा
1: निकली एक शक्ति निकली,
0: और वो सब सारी की सारी शक्तियां
1: सम्मिलित होकर के
0: और कोई नहीं आएगा आपका कल्याण करने के लिए, जगदम्बा
1: के रूप में प्रकट हो गई।
0: तो कहने का मतलब ये है कि शक्ति बाहर नहीं है,
1: हमारी गलती यही
0: है,
1: प्रकट किया
0: कर रहे हैं
1: आएगा
0: इसका बचाने के लिए,
1: कोई हमारा
0: कल्याण करने के लिए
1: आएगा, यहाँ हम गड़बड़ हो गए हैं,
0: बस
1: कोई नहीं आएगा आपका कल्याण करने के लिए, आपको स्वयं उठना पड़ेगा अपना कल्याण करने के
0: लिए,
1: तभी कल्याण होगा। तो दुर्गा
0: हमारे ऋषियों ने कहा
1: लिखे
0: प्रकट किया
1: अच्छे से कथाओं को पढ़े,
0: नौजवानों को समझाना पड़ेगा
1: कि शक्ति हमारे
0: भीतर है,
1: बस
0: नौजवान शंकर जैसा
1: एक
0: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
1: नौजवान नहीं आना चाहता,
0: समझा सके
1: ये तो हमने बहाना बना रखा
0: है, नौजवान नहीं आना चाहता,
1: नौजवान आना चाहता है,
0: लेकिन और को अच्छे से कथाओं को पढ़े
1: हमें समझाओ तो सही,
0: हमारे नौजवानों को
1: जवान
0: हमारा आएगा
1: ही रहेगा कि
0: सभी लोग
1: नौजवान नहीं आना चाहता
0: जरूर जाए,
1: ये तो हमने बहाना बना रखा है कि नौजवान नहीं आडंबर
0: नौजवान आना चाहता है,
1: लेकिन उनको
0: पुनः हम
1: उनके
0: भी समय समझाओ तो सही,
1: अपनी पूजा के ऊपर
2: आचार्य जी चलते चलते आपका संदेश
1: यदि ऐसा कर पाएंगे,
0: हमारा संदेश यही रहेगा कि
1: सभी लोग
0: अपने निश्चित मंदिरों में जरूर जाएं,
1: मां दुर्गा
0: आपके लिए कल्याण,
1: ये सब आडंबर को
0: छोड़ कर
1: जय दुर्गे माँ,
0: पुनः हम
2: तो श्रोताओं आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, कोटि कोटि धन्यवाद सनातन धर्म कैंपस फेडरेशन
0: विशेषकर आपको हमारे ऊपर
2: निश्चित रूप से बरसेगी माँ
0: दुर्गा, और टेक्निकल
2: श्रीमती अंजू को भी बहुत धन्यवाद, आप सभी को नवरात्रि की
3: तो श्रोताओं आज का यह मंगलाचरण
2: कार्यक्रम
3: जय माता दी
2: चला, कोटि कोटि धन्यवाद मॉरिशस सनातन धर्म कैंपस फेडरेशन विशेषकर आपको आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी, और टेक्निक पर श्रीमती अंजू को भी बहुत धन्यवाद, आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं, प्रणाम, शुभ दिन, जय माता दी।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्शिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मौसम में पानी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। महोबा जलाशय में पानी का स्तर 40% गिर गया है।
0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्शिता।

0: आप
1: होने में अभी नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत है। जल्द से जल्द नई मॉरिशस में पानी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। पड़ोसी देशों के अनुभवों से सीख सकता है। सेशल्स में समुद्री पानी बड़ी बारिश बनाने की व्यवस्था को होने में अभी दो महीने का समय है। इसमें पानी की कमी दूर करने के लिए जल्द से जल्द नई उपाय तलाशे जा रहे हैं। क्या मॉरिशस अपने भरोसे है जब पड़ोसी देशों के अनुभवों से सीख सकता है। सेशल्स में समुद्री पानी की पीने योग्य बनाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। यूरेनियम में सप्ताह मेरेंज इस पर परियोजना पर लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता पानी ही जा रहा है। सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होगा यानी कल। उपनाम का पहला अक्षर ए से एम तक होने वाले लोग सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं एन से
0: पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए होने वाले
1: सहायता पानी ही लोग पंजीकरण सोमवार 12 अक्टूबर होगा यानी कि कल। उपनाम का पहला अक्षर ए से एम तक होने वाले लोग सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं एन से जेड तक विभिन्न कार्यालयों में किया जा शुरू होने वाले उपनाम के पहचान पर लोग यानी सरनेम के लोग गुरुवार और शुक्रवार को पंजीकरण करा सकेंगे।
0: कॉलेजियो में शुक्रवार सैंपल स्थित शाम गोली लगने से गंभीर रूप से घायल विभिन्न कार्यालयों में किया जा सकेगा। इस मामले में घटनाक्रम पर सत्र की नजर बनी हुई है। काम शिखर लौट के समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम कॉलेजियो में शुक्रवार मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल नागालिंगम के मामले में और उनके क्रम पर सब की नजर बनी हुई है। काम शिखर लौट के समय उन पर गोली चलाई गई थी। कल शाम उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र नंबर लाभ है। उनके अनुसार सरकार देवेन नागालिंगम उनके परिवार से मुलाकात की। वहीं खेल मंत्री देवेन नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों तथा समर्थन भी बनाया। नवमाहिने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसे हर संभव लाभ है। उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीब से नजर रख रही है। वहीं खेल मंत्री देवेन नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से बनाए रखने की सभा आज रविवार को आश्वासन दिया कि सरकार सुबह मुबासरी में परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। ये सभा पहले 4 अक्टूबर को होनी थी लेकिन आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। सभा आज रविवार 11 अक्टूबर की सुबह मुबासरी सभा के लिए 98 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक आम सभा पहले 4 अक्टूबर को होनी थी लेकिन आवश्यक सदस्यों और मासा में पंजीकृत नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बढ़ावा दिया गया है
1: इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले में कम से कम 32 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जबकि कई अन्य लापता हैं और उनके मलबे में दबे होने की आशंका है। हमला है राष्ट्रपति इस फैसले के तहत ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि रात के दौरान यूक्रेन से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए मॉस्को पर प्रतिबंधों में ढील देने के फैसले के जवाब में किया लड़ाई जारी रहे की अनुमति के रूप में देखता है। डीजल आयात करने में आसानी होगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि रात के दौरान यूक्रेन के 13 अन्य क्षेत्रों पर भी हमले किए गए। उन्होंने कहा कि दबाव में किसी भी तरह की ढील को रूस लड़ाई जारी रखने की अनुमति के रूप में देखता है। फातिमा रामकलावन बीबी फातिमा रामकलावन पैराश्याम दाऊद सिलो और जिन्हें मुनोद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि इंतकाल
0: लावाली सैंकवा में
1: से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्र लिया जाएगा। फ्यूनरल जिन्हें अलियास के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे यूनियन पार्क में बहादुर स्ट्रीट का जनाजा आज 82 साल के बेटे आलिम उलियाज़ोर के जनाजे

0: दुनिया की हर मोहब्बत, हर खौफ, हर उम्मीद सब कुछ बेमानी हो जाती है जब दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जागुजी हो जाए। खौफ खुदा ईमान की ताकत है। दुनिया की हर मोहब्बत है, हर जो ईमान, हर उम्मीद, जज्बा सब कुछ बेमानी हो जाती है।
1: अल्लाह ताला के एहतराम
0: जब दिल में जिला
1: अल्लाह तबारक व तआला का खौफ
0: जो अल्लाह से डर
1: जागुजी हो जाए,
0: हर चीज डरती है।
1: खौफ खुदा
0: जो अल्लाह से नहीं डरता है
1: उसे हर चीज
0: से एहसास है
1: लगता है।
0: जो ईमान
1: जज्बा
0: अगर खौफ खुदा को
1: और अल्लाह ताला के एहतराम
0: को जिला
1: एक ही जुमला
0: इंसान की तरबियत के लिए
1: उससे हर चीज
0: डरती है,
1: देख रहा है।
0: जो अल्लाह से नहीं डरता उसे हर चीज से डर लगता है। सामईन अगर खौफ खुदा को वाकई में समझना है तो एक ही जुमला इंसान की तरबियत के लिए काफी है कि अल्लाह देख रहा है।

0: तरफ माइल नहीं हो पाते,
1: कसरत से याद किया करें,
0: में नमाजों का शौक नहीं है,
1: से नमाजों दुनियावी मसरूफियात
0: नमाजों से और दूसरे नेक कामों से गाफिल कर देती हो जाएगी,
1: और चाहिए कि अपने रब के सच्चे
0: हुजूर हाजिरी का तसव्वुर बांधा करें
1: भी बन जाएंगे,
0: और मौत को कसरत से याद किया करें।
1: हाफिज़े मिल्लत
0: बरकत से
1: अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि
0: तआला ने एक मर्तबा मिला शरीफ के जलसे में बयान करते हुए फरमाया,
1: आमद भी नसीब हो जाएगी,
0: रातों का जागा
1: इंशाअल्लाह करीम
0: थका हारा।

0: इंसान जो कि
1: रातों का जागा हो,
0: कह दिया जाए
1: थका हारा हो,
0: के कमरे के
1: किसी अच्छे कमरे में इसके लिए अच्छे से अच्छा आराम
0: दे, बिस्तर लगा दो,
1: इस थके
0: और हर तरह के
1: और कई रात का सामान मुहैया कर दो
0: इंसान को, उस अब उस थके हारे में नींद आएगी से उस कमरे में सोने में,
1: कह दो लोग जमा थे
0: और साथ में ये भी कह दिया जाए के कमरे के अंदर
1: एक सांप
0: रहता है,
1: नहीं आएगी
0: तो बताओ
1: इस थके
0: इस इंसान के और कई रातों के जागे हुए
1: इंसान को उस आराम दे
0: कमरे में नींद आएगी
1: हो गया है
0: मजमे में, यानी जो लोग जमा थे
1: सबने
0: के खौफ से नींद उड़ सकती है
1: नहीं
0: तो फरमाया
1: क्यों नींद नहीं आएगी
0: और नमाज के वक्त
1: ये कि इस इंसान
0: के दिल में सांप
1: कैसा
0: का डर बैठा हुआ है,
1: प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और
0: पैदा हो गया है,
1: ये वाकई
0: तो अब इसकी नींद गायब हो,
1: चाहिए कि हम अपने अंदर खौफ खुदा पैदा कर
0: सकती है,
1: मौत को याद
0: खौफ खुदा
1: रब के हुजूर
0: हाजिरी का तसव्वुर बांधा करें,
1: नींद आ जाए
0: जब सोने लगे तो नमाज फजर के अलार्म जरूर लगाएं,
1: मीठे मीठे इस्लामी भाई और
0: किसी नमाज़ी की
1: खिदमत में दरख्वास्त
0: कर दें,
1: हमें चाहिए कि हम अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें, दिया करें
0: मौत को याद
1: के साथ साथ
0: रब के हुजूर हाजिरी
1: तसव्वुर बांधा करें,
0: को सोने से पहले
1: जब सोने लगे तो नमाज फजर के अलार्म जरूर लगाएं,
0: कब्र व आखिरत का
1: किसी नमाज
0: की खिदमत में दरख्वास्त
1: सोने के आदाब में से भी है
0: कि वो आपको सुबह
1: नमाज के वक्त जगा दिया करें,
0: नीचे सीधा हाथ रख कर
1: कबले की तरफ और काम करें
0: और उस वक्त कमरे में पहले बिस्तर पर लेट कर
1: कुछ देर के लिए
0: मौत इंशाल्लाह
1: और कब्र व आखिरत का तसव्वुर बांध लिया करें,
0: आपको फायदे भी मिलने लगेंगे,
1: सोने के आदाब में से भी है,
0: साथ
1: के सीधी करवट पर
0: फजर में
1: सीधे रुखसार के नीचे सीधा हाथ रख कर क़िबले की तरफ मुंह करके सोएं
0: और उस वक्त कब्र में सोने का तसव्वुर बांध लें
1: और सामेईन
0: की बरकत से इंशाल्लाह
1: किसी इस्लामी भाई से कह दें
0: बहुत सारे
1: भाई मुझे फजर की फायदे भी
0: मिलने लगेंगे,
1: मुझे फोन कर दिया करें,
0: साथ
1: नमाज फजर में उठने की
0: तौफीक
1: करने से पहले फोन कर दिया साइलेंट
0: कर दिया
1: वो बेचारा बहुत करता रहेगा,
0: इस्लामी भाई और सामेईन ने कराम
1: थोड़ा सा
0: आप किसी इस्लामी भाई से कह दें
1: ताकि आप भाई मुझे फजर के लिए जगा दिया करें,
0: मुझे फोन कर
1: दरवाजा बजाने के
0: आप अपना फोन आप ऑन रख के सोएं,
1: ऐसा नहीं हो कि आपने
0: इस तरह से भी तरकीब
1: करने से पहले
0: फोन बंद कर दिया साइलेंट कर दिया,
1: अपनी जान
0: कॉल करता रहेगा
1: और अल्लाह
0: अपना फोन ऑन रख देंगे
1: पैदा करें,
0: बहुत सारे लोग ये रीजन देते हैं
1: ताकि आपकी जब कॉल आए
0: मैं अलार्म लगाता हूं
1: या आपका दरवाजा बजाने के आप उसको कह
0: अलार्म बजता रहता है आपकी आंख नहीं खुलती,
1: इस तरह से
0: ऐसा नहीं हो सकती है,
1: फिक्र नहीं
0: यानी आप कोशिश
1: हमने अभी जारी रखा
0: कि जब अल्लाह
1: ने एक साफ दिल में पैदा
0: दिल में बैठ गया तो
1: सारे लोग
0: यही रीजन देते हैं,
1: इसी तरह जैसे ही
0: मैं अलार्म लगाता हूं
1: का खौफ पैदा हो जाएगा,
0: मौत का खौफ
1: रहता है आपकी आंख
0: नहीं खुलती,
1: कब्र का खौफ पैदा हो जाएगा
0: आपकी फिक्र नहीं होगी,
1: इंशाल्लाह
0: जिस तरह हमने अभी सुना वाकया
1: कि जब कमरे में एक सांप का खौफ दिल में बैठ गया तो नींद नहीं आएगी,
0: इसी तरह जैसे
1: फजर ही नहीं
0: के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा,
1: नमाज
0: मौत का खौफ पैदा हो जाएगा,
1: कब्र का खौफ पैदा हो जाएगा,
0: प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई
1: खौफ खुदा अल्लाह पाक के हुजूर हाजिरी का
0: नमाज फजर में भी
1: तसव्वुर बहुत ही कमाल की चीज है
0: और अल्लाह ने चाहा
1: हिम्मत मिलती
0: सिर्फ नमाज फजर ही नहीं
1: ये बल्कि
0: कोई भी नमाज
1: जो हमें बहुत हिम्मत
0: और बुलंद हौसला बना देती है,
1: इसकी बरकत से
0: मीठे मीठे इस्लामी भाई खौफ खुदा अल्लाह पाक के लेता है
1: हाजिरी का
0: कि दुनिया हैरान रह जाती
1: है, बहुत ही कमाल की चीज
0: अल्लाह पाक ने कुरान करीम
1: में आदमी को हिम्मत मिलती है
0: जिक्र फरमाया है
1: हजरत तालूत रहमतुल्लाहि
0: तआला ने
1: जो हमें इसराइल के बाद हिम्मत
0: और बुलंद होने बादशाह
1: बनाया, किसने
0: था, इसकी बरकत से आदमी
1: के नबी अलैहि सलाम की
0: तरफ वही आया है,
1: अल्लाह पाक के
0: हैरान रह जाती
1: बादशाह मुकर्रर किया गया,
0: अल्लाह पाक ने कुरान करीम
1: में गए तो इसका
0: जिक्र फरमाया है
1: हजरत तालूत
0: रहमतुल्लाहि तआला ने
1: बनी इसराइल के तालूत
0: रहमतुल्लाहि अलैहि
1: ने बनाया
0: कि लश्कर
1: जमा किया और जालू
0: से नबी अलैहि सलाम
1: की तरफ वही आई,
0: जब ये लश्कर
1: अल्लाह पाक के हुक्म से इन्हें
0: बादशाह मुकर्रर किया गया,
1: पाक को
0: जब ये बादशाह बन गए तो इस वक्त
1: एक बड़ा
0: चुनाचे हुक्म
1: गैर मुस्लिम था, आगे
0: चलकर एक नहर आएगी,
1: हजरत तालूत रहमतुल्लाहि अलैहि ने
0: एक बड़ा लश्कर जमा किया और जालू से जंग के लिए
1: रवाना हुएगा,
0: जब ये लश्कर
1: में शामिल रहेगा था रास्ते में
0: पानी पी लेगा
1: इसे वापस घर भेज दिया जाएगा,
0: चुनाचे हुक्म हुआ
1: थोड़ा
0: आगे चलकर एक नहर आएगी,
1: दूर आगे जाकर
0: वो नहर आज भी बहुत लगेगी,
1: मगर जो इस नहर से
0: नहर से पानी पिएगा
1: वो लश्कर में शामिल रहेगा,
0: जो पानी पी लेगा
1: इसे वापस घर भेज दिया जाएगा,
0: अब बाकी जो बचे
1: चलते कुछ ही देर
0: 313
1: जाकर
0: दूर आगे जाकर
1: नहर आ गई,
0: अब बहुत ही लायूं हुआ
1: बड़ी बहुत सारे वाले
0: लोगों ने नहर से पानी पी लिया,
1: इधर तालूत
0: तालूत रहमतुल्लाहि
1: तआला ने
0: इन सब 313
1: भारत रह गए थे
0: घर भेज दिया,
1: देखकर बाज लोगों के जो बचे
0: पस्त हो गए
1: वो सिर्फ 313
0: थे, इनकी हिम्मत
1: जवाब दे
0: था जालूत का,
1: ये बोले
0: बहुत ही ताकतवर
1: बड़ी फौज वाले
0: यौम
1: बिजालूत व जुनूदी,
0: इधर तालूत
1: रहमतुल्लाहि तआला के
0: लश्कर में सिर्फ 313
1: भारत रह गए थे
0: 49,
1: ये देखकर बाज लोगों के
0: कुरान का जो
1: इरफान
0: हमें
1: हम में आज हिम्मत जवाब दे उसके लश्करों के साथ मुकाबले की ताकत नहीं
0: कतलनल यानी ये जालू तवजनूदी
1: हर बैठे थे।
0: पारा नंबर दूसरा
1: कि कहां जालू का इतना बड़ा और ताकतवर लश्कर कहां हम 313
0: तर्जमा कुरान कंसोलिडेटेड 13
1: तो आज जालूत और उसके लश्करों के साथ कैसे करेंगे की ताकत

0: नहीं, इन हिम्मत हारने वालों के अलावा बाकी जो लोग थे बैठे थे वो कौन थे कि कहां जालूत का इतना बड़ा और ताकतवर लश्कर,
1: कहां
0: हम जालूत के साथ जंग कैसे करेंगे।
1: यकीन
0: इन हिम्मत हारने वालों के अलावा बाकी जो लोग थे
1: वो लोग
0: वो कौन थे
1: इनके दिल में कयामत का यकीन था,
0: बारगाह इलाही में हाजिरी का मंजर इनके ख्यालात पर छाया हुआ था।
1: तर्जमा कुरान
0: खुदा रखने वाले थे
1: लेकिन जो अल्लाह
0: से डरने वाले थे
1: इस मौके पर
0: इन्होंने कैसी हिम्मत दिखाई।
1: अल्लाह
0: बोले
1: वो लोग थे जिनके दिल में कयामत का यकीन था,
0: बारगाह इलाही में हाजिरी का मंजर इनके ख्यालात पर छाया हुआ था।
1: बिइज्निल्लाह
0: ये खौफ खुदा रखने वाले थे,
1: अल्लाह
0: पाक से डरने वाले थे।
1: तर्जमा कुरान के अंदर
0: इन्होंने कैसी हिम्मत दिखाई,
1: छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर ग़ालिब आई है,
0: ग़लबत
1: और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
0: तो क्या हुआ
1: कुरान कंजूल इरफान
0: मत हारे,
1: बहुत दफा
0: अल्लाह के बंदे
1: जमात अल्लाह के अपनी
0: से बड़ी जमात पर ग़ालिब आई
1: लश्कर को बड़े बड़े लश्करों पर
0: करने वालों के साथ
1: फरमा देता है।
0: यानी ए लोगों
1: हम 313
0: है तो क्या हुआ,
1: उनकी ये नसीहत
0: जालूत का लश्कर बड़ा ताकतवर है
1: कि उसी 313 के मुख्तसर
0: मत हारे
1: लश्कर ने जालूत अल्लाह
0: पाक के
1: बंदे
0: हैं,
1: लश्कर को
0: अल्लाह पाक अपनी कुदरत से बहुत मर्तबा छोटे लश्कर को बड़े बड़े लश्करों पर
1: फता
0: फरमा देता है। और
1: हिम्मत से काम लो,
0: उनकी नसीहत असर कर गई।
1: 313 में
0: दुनिया ने देखा कि उसी 313 के मुख्तसर
1: बड़े हौसले वाले जालूत के
0: हजारों के लश्कर को जबरदस्त
1: के साथ इनका ये वस बताया
0: कि ये अल्लाह पाक के हुजूर हाजिरी का यकीन रखने वाले लोग थे
1: और सामने
0: खुदा वाले लोग थे।
1: यहां देखिए खौफ खुदा ने 313
0: में जो बहुत
1: हिम्मत
0: वाले लोग
1: हौसले वाला बना
0: बड़े हौसले वाले लोग थे,
1: अल्लाह
0: पाक ने खुसूसियत के साथ
1: बड़े
0: ये वस बताया
1: कि ये
0: अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर का यकीन रखने वाले लोग
1: गए इलाही में
0: खौफ खुदा वाले आदमी को
1: हौसला देता है,
0: खुदा ने इन्हें देता है
1: बहुत
0: जिसकी बरकत से इंसान
1: बड़ा हौसले
0: वाला बना दिया था,
1: मुस्कुराकर
0: गुजर जाता है।
1: बरकत से इन्होंने
0: इमाम अली मकाम बड़े
1: हुसैन पर काबू पा
0: लिया अल्लाह तआला
1: उन्होंने
0: मालूम हुआ
1: ने करबला में कयामत के दिन
0: बारगाह इलाही में
1: हाजिरी का ख्याल
0: आदमी को मुश्किल इम्तिहान
1: था,
0: हिम्मत देता है
1: आप साबित की
0: बरकत रहे
1: इंसान बड़ी बड़ी मुश्किलात
0: से
1: आप मुस्कुराकर गुजर जाता है।
0: मौत को हर वक्त सामने
1: अली मकाम इमाम हुसैन
0: दस मुहर्रम
1: तआला उन्होंने
0: मैदान
1: करबला में
0: कैसा करबला
1: में जंग हुई,
0: कैसी इस्तकामत दिखाई,
1: ज़ैनब रज़ियल्लाहु
0: ताला अन्हा
1: जो इमाम हुसैन की बहन है
0: साबित
1: कदम रहे
0: इमाम अली मकाम
1: कामयाब हो गए
0: कि खिदमत में
1: ये बस
0: हाजिर हुई।
1: आप मौत की
0: परेशानी और दुख
1: आपके सामने
0: बयान
1: दस मुहर्रम
0: करबला का
1: मैदान है,
0: चारों तरफ
1: यजीदी जालिम है, करबला
0: में जंग हुई।
1: अब इन मुश्किलात से हज़रत
0: ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
1: जो इमाम हुसैन की बहन है
0: हुसैन रज़ियल्लाहु ताला
1: अन्हा ने मकाम
0: इमाम हुसैन
1: बहुत खूबसूरत
0: नसीहत फरमाई
1: हाजिर हुई,
0: अपनी
1: परेशानी और दुख
0: आपके सामने
1: बयान की
0: बर्दाश्त और सब्र
1: करबला का मैदान है,
0: चारों तरफ यजीदी
1: जालिम है,
0: एक दिन मौत के घाट
1: से कैसे निपटा,
0: आसमान
1: वालों को भी
0: इमाम अली मकाम नहीं है
1: हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
0: वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह
1: खूबसूरत नसीहत फरमाई।
0: प्यारे इस्लामी भाइयों
1: अपने अंदर खौफ खुदा बढ़ाएं,
0: शैतान तुम्हारी बर्दाश्त और सब्र को नुकसान ना पहुंचा करें,
1: जमीन वाले
0: सब एक दिन
1: मौत के घाटों
0: तक गिरेंगे,
1: इससे मुश्किलात से
0: आसमान वालों को भी
1: इस बका नहीं है
0: आसान हो जाएगा,
1: बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है।
0: हमें खूब
1: लिहाजा
0: प्यारे इस्लामी भाइयों
1: तआला का
0: अपने अंदर खौफ खुदा बढ़ाएं,
1: अपना खौफ अता फरमाएं
0: और हाजिरी का
1: तसव्वुर बांधा करें,
0: हमें गुनाहों से याद
1: किया करें
0: और यकीन
1: मानिए इसकी बरकत से
0: मुश्किलात से भरी हुई
1: इस
0: दुनिया में जीना आसान हो जाएगा
1: सल्लल्लाहु तआला अलैहि
0: वसल्लम। खूब खूब
1: अल्लाह तबारक
0: सामीन
1: खौफ अता फरमाए,
0: अपना खौफ अता फरमाए
1: नशरियात
0: में इसकी बरकतों से हमें गुनाहों से बचने
1: एक और बार फिर आप तमाम लोगों का
0: फरमाए
1: इस्तकबाल करता है।
0: आमीन बिजाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: इससे पहले
1: आपने
0: कारी
1: अब्दुल माजिद अत्तारी
0: मोहतरम
1: सामीन
0: गुमालिया
1: उर्दू
0: की ज़बानी
1: में अकीदत
0: नशरियात में
1: समात फरमाया।
0: निसार अख्तर
1: बिलयकीन
0: एक बार फिर
1: तमाम लोगों का
0: दिल के
1: निहां खानों में
0: उतर गया
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सामीन
1: इससे पहले आपने
0: तबारक व तआला
1: अब्दुल माजिद
0: अत्तारी
1: फरमाए
0: दामत बरकात
1: गुमालिया
0: की ज़बानी
1: मोहब्बत
0: एक बयान
1: समात फरमाया
0: बंदगी का
1: सलीका
0: आपका
1: हर लफ्ज़ या रब्बल
0: दिल के
1: निहां खानों में
0: उतर गया।

के इंसान की रूह किन वसवसों का सामना करती है और इंसान का नफ्स उससे कैसे कैसे खेल खेलता है। अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। अल्लाह रब्बुल इंसान को बुराई करने की लामहदूद सलाहियत किन वसवसों बुराइयों से बचने की समझ अता की है और इंसान का नफ्स ताकि उसे कैसे कैसे खेल पर खा जाए। यही वजह है हमारा खालिक और मालिक है। ईमान वालों का सबसे अहम बुराई करने की लामहदूद सलाहियत और उन बुराइयों से बचने की मंशा के मुताबिक ही है जिंदगी गुजारने से इंसान की खुशनूदी के लिए अमल करने। यही वजह है शैतान और नफ्स की साजिशों को समझकर ईमान वालों का सबसे अहम मददगार बचने के खौफे खुदा है बनाता है जो उन्हें अल्लाह की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने अल्लाह की खुशनूदी के लिए अमल करने और शैतान और नफ्स की साजिशों को समझ कर उसके फरेब और खेल से बचने के काबिल बनाता है।

यानी रहमतों का दरवाजा, जिस शख्स को ये दोनों नेमतें नसीब हो गई, समझिए उसको दुनिया की तमाम सादतें चीजें होती हो गई। अल्लाह का डर होगा यानी खौफ तो गुनाहों से बचा अल्लाह का डर और यानी रहमतों का दरवाजा तो इबादत की लज्जत को नसीब, ये दोनों नेमतें नसीब हो गई। जब मुसलमान का दिल उसको अल्लाह की तमाम सादतें नसीब हो गई, गुनाह ऐसे झड़ते हैं तो गुनाहों से बचा रहेगा पत्ते और दर नसीब होगा तो इबादत की लज्जत नसीब होगी। सामईन, जब मुसलमान का दिल अल्लाह के डर से कांपता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं

मगर उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा सकता है। मोहतरम सामीन, इसी कॉल के साथ अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बज़्मे अकीदत बेशक अपने छोटा की जानिब रवा, मगर उसमें इतनी ताकत कहने के लिए कि वो समंदर के बराबर रही है गुनाह मगर अकीदत का ये सफर दिलों में हमेशा जारी रहेगा। के साथ उर्दू प्रोग्राम को बज़्मे अकीदत कहने का वक्त अख्तिताम की जानिब रवा दवा होने का तो यूं तो कहने के लिए मगर क्या करें, बज़्म खत्म हो रही है दस्तूर है मगर अकीदत का ये सफर रहिए दिलों में हमेशा रखिए जारी रहेगा और दुआओं में अब निसार को याद रखिए। अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा, फी अमानिल्लाह आपसे रुखसत होने का तो दिल नहीं करता मगर क्या करें यही दस्तूर है। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में निसार को याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।

0: रेडियो मॉरिशियस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस।
0: रेडियो मॉरिशियस,
1: रेडियो मॉरिशियस।
2: வணக்கம். இது மொரிஷியஸ் வானொலி
0: 800.

உங்கள் அனைவருக்கும் எமது உலகம் இது மொரிஷியஸ்

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस, रेडियो
2: मॉरिशस। स्वर तरंग,
3: स्वर तरंग।
0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: स्वर तरंग,
3: स्वर तरंग।

जागली तो रात सारी आई मला करी माझ्या बरी

धर्म निर्दाणू मी धर्म हाय तूच रक्षिला.

माझी आईच्या रूपात

Yeah.

0: 头对着那个白开水。
1: 去应
2: 你怎么把实话唱出来了？
1: 应捏的八十，
2: 你应该这么唱。

0: श्रोताओ, नवरात्र दरमियान माँ दुर्गा ना नव रूप अलग अलग स्वरूप जिनके शैलपुत्र ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुशमाला स्कंद माता श्रोताओ नवरात्र दरमियान माँ दुर्गा ना नव रूप अलग अलग स्वरूप
1: आज शुरू थनारो नवरात्र नो आ पावन पर्व
0: चंद्र
1: छे पहलो दिवस
0: मांडा
1: अने आजना दिवसे
0: कात्यायनी कालरात्रि महागौरी अने सिद्धिदात्री ने आपणे पूजा करीए छे।
1: आज थी शुरू थनारो नवरात्र नो आ पावन पर्व आज छे पहलो दिवस अने आजना दिवसे माता शैल

0: हरी मिला लीजिए सिमरन मॉरिशस में शाम को 3:30 बजे आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस 19 पर एनबीसी रेडियो मॉरिशस। हरी मिला लीजिए सिमरन मॉरिशस में शाम को 3:30 बजे आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस 19 पर ईस्ट एनबीसी रेडियो मॉरिशस।
1: यू आर लिसनिंग यू आर M3 मनोरंजन रेडियो
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.8
1: You are listening to our M3 Manoranjan Radio.
3: How on up? How on up?
0: दोस्तों स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। शाम के 4:02 हो रहे हैं और आज है रविवार 2026। बच्चों को हमारा मीठा मीठा प्यार दोस्तों स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सो हमारी बहुत से सो अगर आप प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम
4: आप हमें बता सकते हैं
0: जो गुड मानस होते हैं वो। अगर आप प्रोग्राम में

0: चाहते हैं जो फोन कर सकते हैं
1: 402-8085
0: जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता
1: आप हमें बता सकते हैं कि आप तमीज के बारे में क्या सोचते हैं
0: उठना बैठना पड़ता
1: या जो गुड मैनर्स होते हैं वो घर से शुरू होता है
0: हमारे जो पहले गुरु होते हैं हमारी माता पिता होते हैं
1: और जब बच्चा दुनिया में आता है तब से कुछ पता ही नहीं चलता कि ये जो हमारे नौजवान है
0: दुनिया में
1: दुख के साथ रहना पड़ता है
0: ही नहीं
1: और समाज में कैसे जीना पड़ता है तो
0: अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए
1: सो इसी विषय पर हम बात करें सो अगर आपके पास कुछ तमीज की बहुत कमी हम देखते हैं आप हमें बताना चाहते हैं कि तमीज क्या चीज है
0: दुख के साथ रहना पड़ता है तमीज है ही
1: अभी के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई चलता है अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए
0: फिल्म का नाम
1: सो इसी विषय पर हम बात करें सो अगर आपके पास कुछ बहुमूल्य विचार है आप हमें बताना चाहते हैं
0: प्रोग्राम में सभी का स्वागत है जो भी फोन करना चाहता है
1: फोन कीजिए
0: लाइन खुली हुई है आप हमें बताइए कि आप किस प्रोग्राम की
1: शुरुआत करते हैं क्या सोचते हैं इसी
0: के साथ फिल्म का नाम है ये वादा
1: इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है जो भी फोन करना चाहता है
0: लाइन खुली हुई है आप हमें बताइए कि आप किस के

0: जी हाँ, हमारा प्रोग्राम में आज हम बात करें तमीज़ के बारे में, और तमीज़ का विस्तृत अर्थ है सही और गलत में फर्क समझना, दूसरों बात करना, अपना जुबान और व्यवहार।
1: जी हाँ, हमारा प्रोग्राम में आज हम बात करें तमीज़ के बारे में, और साथ
0: किस समय का विस्तृत अर्थ है सही और गलत में बोलने का नाम नहीं है, बल्कि
1: यह इंसान की सोच समझना, जुबान परवरिश और चरित्र में भी काबू रखना,
0: और यह समझना
1: और तमीज के साथ वह समय जो इंसान को सिखाती है
0: तरह से पेश आना चाहिए।
1: तमीज केवल मीठा बोलने का नाम नहीं है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
0: यह इंसान की सोच समझदार इंसान परवरिश और चरित्र में भी दिखाई देती है,
1: अपनी बात भी कहता है।
0: तमीज वह समझ है जो इंसान को सिखाती है
1: कि
0: कैसे
1: से दूसरों के साथ पर भी कैसा व्यवहार करना चाहिए,
0: एक बात बीच में न
1: तमीज़दार इंसान का सम्मान करना, छोटे के साथ
0: अपनी बात भी कहता है, लेकिन
1: गलती होने पर उसे स्वीकार करना, सामने
0: गरीब अमीर वाले की बेइज्जती
1: या बड़े व्यक्ति के साथ इंसान व्यवहार करना,
0: गाली न देना,
1: कमजोरी या
0: किसी की बात बीच में न मजाकना उड़ाना,
1: बड़ों का सम्मान करना, छोटे के साथ प्यार से पेश आना,
0: गलती होने पर उसे स्वीकार करना,
1: किसी गरीब अमीर छोटे है या बड़े व्यक्ति के
0: व्यवहार करना,
1: इसको किसी की कमजोरी या मजबूरी का मजाक ना,
0: निजी सीमाओं और सम्मान का
1: और
0: बेशक
1: किसी के
0: किस
1: बहुत से लोग
0: लहजे में बात कर रहे हैं,
1: कब बोलना है और कब चुप रहना है,
0: यह समझना इसको तमीज कहते हैं।
1: दूसरों की भावनाओं, समय, निजी सीमाओं और सम्मान,
0: जय माता दी, आप कौन है,
1: तमीज है और इस विषय पर।
0: हाँ आशा जी, और बताइए आज का हमारा विषय है,
1: चलिए हम अब
0: गुड मॉर्निंग
1: तमीज,
0: तमीज
1: क्या
0: चीज है
1: और देखते हैं कौन है।
0: हेलो,
2: जय माता दी,
0: आप कौन है।
1: हाँ आशा जी, और बताइए आज का हमारा विषय है गुड मॉर्निंग तमीज, तमीज क्या चीज है।
2: और ये हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और इस बात को सभी मानते हैं।

0: प्रथम विश्वविद्यालय जो होती है वहाँ बच्चे को कब मिलता है,
1: तो जहाँ एक बच्चा जब जैसे जन्म लेता है
0: और ये हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और इस बात से सभी मानते हैं कि प्रथम विश्वविद्यालय वो माँ की गोद, तो बच्चा
2: पर आजकल क्यों ऐसे बहुत से नौजवान हैं आशा जी, हमने देखा है बहुत से कॉलेज में स्कूल में बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू ईच अदर, अध्यापक से कैसे बात करना चाहिए, दोस्तों से बार बार पर गाली देते हैं, ऐसा पर आजकल क्यों ऐसे बहुत से नौजवान हैं आशा जी, हमने देखा है बहुत से कॉलेज में स्कूल में बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू ईच अदर, अध्यापक से कैसे बात करना चाहिए, दोस्तों से बार बार पर गाली देते हैं, ऐसा क्यों?
0: अब घर का माहौल ऐसा होता है कि बच्चे कभी आपस में खुद ही लगते हैं घर के हालात बात बात पर जो कि ऐसा भी होता है कि नौजवान जो है आपसे ऐसा बड़ा हो गया है 15-16 सम्मान ले रहा है तो वो लड़का या लड़की ये सोचते हैं घर का माहौल ऐसा होता है कि बच्चे कभी आपस में खुद ही लगते हैं बात बात पर जो जाते हैं लोग छोड़ देते हैं किसी में होती है दोस्तों के साथ कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट वो सम्मान ले रहा है तो वो लड़का या लड़की ये जब हमारे घर में हमारे माता पिता एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो हम क्यों कॉलेज हमारे नए पीढ़ी होते हैं वो भी वही दोस्तों के साथ वो देखते हैं इसलिए मैं माता के प्रथम पास चला हूँ तो बातें करते हैं जैसे घर में टेबल पर साथ बैठ कर एक दूसरे को सम्मान लिखा बोल रहे हैं तो हमारे नए पीढ़ी होते हैं वो भी वही सीखते हैं
2: गुरु गोविंद तो एक है दूजा ना कोई गुरु गोविंद तो एक है दूजा ना कोई और जब अच्छे मानस घर में जब माँ बाप अपने आप में नहीं झगड़ते बच्चों की परवरिश अच्छी होती है तो बच्चों में जो गुड मानस होते हैं ये उनके चरित्र में उनके स्वभाव में होता है और बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं अगर अच्छे मानस आपने बच्चों को बचपन से सिखाया है जब अच्छे मानस घर में जब माँ बाप अपने आप में नहीं झगड़ते बच्चों की परवरिश अच्छी होती है तो बच्चों में जो गुड मानस होते हैं ये उनके चरित्र में उनके स्वभाव में होता है और बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं अगर अच्छे मानस आपने बच्चों को बचपन से सिखाया है तो वो मानस बच्चों के साथ होंगे वो अच्छे एडल्ट्स भी बनेंगे तो है बोला तो वह आशा जी लड़का लोग अतिथि के जगह अपन लसा मंजा के लुक जान सा ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है बच्चे मेहमान आ रहे हैं शादी भाई बोले तो आशा जी लड़का लोग अतिथि के जगह पर नशा मंजा के चाबी डाल दिया कमरे के हमने क्या हुआ भूत देख लिया क्या ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है बच्चे मेहमान आ रहे हैं शादी का न्योता है बच्चा जो है डॉग के कमरे में जाकर उसने चाबी डाल दिया कमरे के अतिथि देवो भव देख लिया जानते आज के बच्चे जानेंगे अतिथि देवो भव क्या होता है कम से कम एक लोटा जल से वन ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करके स्वागत ये तो बच्चों में आज है ही नहीं अतिथि देवो भव।

0: वो क्या जानते आज के बच्चे जानेंगे अच्छी अच्छी देवो भव क्या होता है. कम से कम एक लोटा जल से वन ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करके स्वागत, ये तो बच्चों में आज है ही नहीं. हाँ खुदे लेकवा सत्संग में जाए तो अब नाशा जी लेकवा सत्संग में जय भी नहीं कर रहा था. बच्चों को अगर आप कहेंगे चलिए डिस्को डिस्को क्लब चलते हैं, बच्चे तैयार है. चलिए फूड कोर्ट चलते हैं, तैयार है. जब पूजा पाठ में आ यू पापा पे खुदे लेकवा सत्संग में जाए तो अब नाशा जी लेकवा सत्संग में जय भी नहीं कर रहा था. बच्चों को अगर आप कहेंगे चलिए डिस्को डिस्को क्लब चलते हैं, बच्चे तैयार है. चलिए फूड कोर्ट चलते हैं, तैयार है. जब पूजा पाठ में आ यू पापा पे ना लेता हूँ मैंने पूरे विजय क्या बोलेंगे.
1: तो अब जैसे मंदिर में अभी पूजा की है, अगर जो दादी नानी है जो माता पिता है वो तो जाते हैं,
0: तब न बच्चे लोग माने सीखेंगे. अब केवल बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते, केवल इंटरनेट पर है सोशल मीडिया. हम ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, पर कम से कम थोड़ा समय माँ बाप के साथ बिताएं, सीखें कैसे लोगों समाज में बच्चे लोग बैठना माने सीखेंगे. अब केवल बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते, कभी
2: आप शादी में जाते हैं
0: इंटरनेट पर है सोशल मीडिया. हम ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, जब तक आप नहीं कहेंगे बच्चा समय माँ बाप के साथ ताकता है, मुंह पर देखता है, कैसे लोगों समाज में कैसे उठना बैठना चाहिए, लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए. कभी कभी आप शादी में जाते हैं बच्चों को कहना पड़ते ये एक चाचा है चाचा को प्रणाम करो, तब बच्चा प्रणाम करता है. जब तक आप नहीं कहेंगे बच्चा मुंह पर ताकता है, मुंह पर देखता है पर नमस्ते भी नहीं कहता. हाँ ये भी तो गुड मैनर्स है ना, हाँ ये भी तो गुड मैनर्स है ना. कभी कभी परिवार कह देते हैं ये आपके बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं. कभी कभी परिवार कह देते हैं
2: कारण परिवार आप जो बच्चे
0: परिवार है शर्म
2: बिहेव कर रहे
0: हैं, बच्चों में बहुत बुरी आदतें वेरी बैड मैनर्स है. शिक्षा कभी बच्चों के कारण परिवार जो परिवार है शर्म में पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत बुरी आदतें वेरी बैड मैनर्स है. हाँ शिक्षा घर से शुरू,
2: रोल प्ले.
0: बच्चा जब छोटा होता है तो रोल प्ले करता है, रोल प्ले. बच्चा जब छोटा होता है तो रोल प्ले करता है. बात करनी चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए और धीमी आवाज में बात करना चाहिए. कभी कभी बच्चे जो चिल्लाते हैं वो माँ बाप से ज्यादा चिल्लाते, जैसे उसे उन्होंने दुनिया देख ली है, माँ बाप से ज्यादा जानते हैं.
2: बात करनी चाहिए कैसे,
0: जैसे लड़का लोग ज्यादा कुल पंख लग गए
2: धीमी आवाज में
0: बड़ा हो गया
2: बच्चे
0: लोग माँ बाप से जस्सी जाने लगे. वो माँ बाप से ज्यादा चिल्लाते, जैसे उसे उन्होंने दुनिया
2: जैसे
0: लड़का लोग ज्यादा कुल
2: लड़का लोग
0: बड़ा हो गए जब्बर हो गए तो लोग माँ बाप से जस्सी जाने लगे.
2: हाँ
0: पिताजी कुछ
2: बच्चा

0: लड़का लोग जस्ती जोर से
1: बचा जाके कोनो लड़का जाके कोनो मूवी काम कर दे वाला तब देखबा ला पुलिस आवत लड़का के रमासी हो कि नहीं हां लिपो तू लिपो मगोस हो पापा तू का जाने रह को पिताजी कुछ नहीं लड़का सब जाने लाओ हवे जाके कोनो लड़का जाके कोनो मूवी काम कर दे वाला तब देखबा ला पुलिस आवत लड़का के
0: तो ये जो तमीज जिसे हम कहते हैं वो घर से बच्चों में हमें डालना चाहिए बच्चों को सिखाना चाहिए अगर घर ही में हमें अभिभावक माँ बाप लोग चुक जाएंगे नहीं बता पाएंगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कहेगा मुझे पता नहीं
2: तो ये जो तमीज जिसे हम कहते हैं वो घर से बच्चों में हमें डालना चाहिए बच्चों को सिखाना चाहिए अगर घर ही में हमें अभिभावक माँ बाप लोग चुक जाएंगे नहीं बता पाएंगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कहेगा मुझे पता नहीं जैसे गाँव से जब छोटा से ब्लॉकले हुआ निमन से तो वो लंबा हुआ तब जब लंबा होगा टेढ़ा होगा गाँचिया तब खो तो सुधारे की तो देरी हो जाए ना फिनिश और बिगड़ेंगे बच्चा जब बड़ा जब एडोलेसेंट होता है जब युवक युवा अवस्था में पहुंचे तो माँ बाप का भी एक तरीका होना चाहिए बच्चे से कैसे बात करें जब छोटा होता है तो आप दांत डपट छोटा में बच्चा छोटा है दांत डपट के ऐसा मत करो
0: और बिगड़ेंगे
2: बच्चा जब बड़ा जब एडोलेसेंट होता है जब युवक युवा अवस्था में पहुंचा तो माँ बाप से नजरिए से होना चाहिए बच्चे से कैसे बात करें जब छोटा होता है तो आप दांत डपट छोटा में बच्चा छोटा है दांत डपट के ऐसा मत करो बैठो बच्चा बैठ जाएगा पर बच्चा अगर 15-16 साल का है तब एक दूसरे नजरिए से हाँ नहीं तो बच्चा भी दोस्त की तरह आशा जी आपके विचारों के बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी ओके जी आजकल हम नवरात्रि मना रहे हैं आज नवरात्रि की पहली रात है आज घर घर में कलश में माँ का जो सुंदर रूप दिखा गया है आशा जी आपके विचारों के बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी बहुत से लोग घरों में
2: जय माता दी
0: में जो है दुर्गा माँ की मूर्ति है शिवालय में
2: आजकल हम नवरात्रि मना रहे हैं घर से शुरू होती है माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो माँ बाप पहले जरूर है फिर तमीज हजम विषय पर जो बात करें जो हमारा विषय है वो है तमीज व्हाट और गुड मैनर्स वहाँ पर भी घर से शुरू होती है माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए
0: हमें ज्ञान
2: अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा माँ बाप पहले और यह गुड मैनर्स है तमीज जब हम स्कूल जाते हैं चाहे वो प्री प्राइमरी हो घर में मिलता है हमारे माता पिता के जरिए ट्यूशन हो अध्यापकों वहाँ पर भी हमारे अध्यापक जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो आज हम इस विषय पर बात ज्ञान देते हैं और साथ में गुड मैनर्स कोई विचार है गुड मैनर्स को लेकर और यह जो गुड मैनर्स है यह दुकानों में नहीं बिकता है यह घर में मिलता है हमारे माता पिता के जरिए अध्यापकों के जरिए और समाज में प्यारा सगाना के जरिए तो आज हम इसी विषय पर बात करें सो अगर आपके पास कोई विचार है गुड मैनर्स को लेकर तमीज को लेकर तो बेशक आप फोन कर सकते हैं कज़ावदे विज़ेवो विज़ेंट पर 4028085 पर तब तक आपको सुनाते हैं प्यारा सा गाना अनुता पूर्वाल की आवाज़ में

जी हाँ, हमारे आप कार्यक्रम में आज हम बात करें तमीज के बारे में, गुड मैनर्स के बारे में। सो आप ये अपने विचार बात करके आज कर देते हैं बहुत से लोगों में भी ये मैनर्स की कमी है। कहीं कहीं पर लोग, आप कहीं पर जाते हैं, जी हाँ, हमारा कार्यक्रम में आज हम बात करें तमीज के बारे में, गुड मैनर्स के बारे में। सो आप भी अपने विचार बांट सकते हैं आज कम देखते हैं।

0: से लोगों में भी ये मानस की कमी है, पर पढ़े लिखे लोग कहीं पर जाते हैं तो लोग जिस तरह से बात करते हैं,
1: आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं।
0: पता नहीं किस बात
1: लाइन थे, कुछ दोस्त हम उनसे बात करेंगे। हेलो,
0: वो बहुत ऊंचे।
1: नमस्ते जी, आपका नाम?
0: सब कुछ पता है, बहुत।
1: हाँ इंदिरा जी, कहाँ से?
0: पर पढ़े लिखे लोग।
1: हाँ इंदिरा जी बोलिए, आप तमीज के बारे में।
0: आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और अभी लाइन पे
1: जय माता
0: दी, हमसे बात करेंगे।
1: हेलो,
0: हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि के अवसर पर।
1: नमस्ते जी, आपका नाम?
0: हाँ इंदिरा जी, कहाँ से? हाँ इंदिरा जी बोलिए, आप तमीज के बारे में।
1: जय माता दी, आपको भी जय, हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि के अवसर पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। धुआने वाले कालो के मारे के एक छुकनी दिलक, एक कुछ छुकनी दिलक तब बस सीधा हो गई।
1: धुआने वाले कालो के मारे के
0: एक छुकनी दिलक, एक कुछ छुकनी दिलक तब बस सीधा हो गई। इसका जनरेशन कुछ आज का जो जनरेशन है, दूसरा जनरेशन है, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और बच्चे लोग भी कभी कभी पर उन्हें अच्छे अच्छे मार्ग पर ले जाकर
1: जनरेशन कुछ आज का
0: अच्छी बातें
1: सिखा सकते कि
0: बाबू तो ऐसा काम कर ले, ऐसी
1: सोच समझ कर
0: ऐसी बातें ले आयो, बच्चे
1: को अच्छा नहीं लगा।
0: पर उन्हें अच्छे अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं, अच्छी बातें सिखा सकते कि बाबू तो ऐसा काम कर ले, ऐसी बातें ले, अच्छा अंक अच्छा नहीं लगा।
1: नहीं तो अब लिखो में धुआने में पोता आपसे भी करते हैं लालवानी कल बा।
0: हाँ तो लड़का लोग माँ बाप से सीखेला।
1: हम तो इंदिरा, हम तो उसको लड़का लोग निमन चीज सीखे के बुरा चीज नहीं का बोले।
0: अब माँ बाप झगड़ा कर रहे थे तो अब लड़को झगड़ा सीखे, अब लिखो में जाके वो झगड़ा कर लगी लड़का लोग संगे।
1: हाँ तो लड़का लोग माँ बाप से सीखेला।
0: हम तो इंदिरा, हम तो उसको लड़का लोग निमन चीज सीखे के बुरा चीज नहीं का बोले।
1: अब माँ बाप झगड़ा कर रहे थे तो अब लड़को झगड़ा सीखे, अब लड़को में जाके वो झगड़ा कर लगी लड़का लोग संगे।
0: हाँ तो लड़का पर को हाथ चढ़ रहा लिखुल छना जाए कि जाके पूछे के हाँ तो लड़का पर को हाथ चढ़ रहा
1: मूवे के सुधारे छना जाए जाके पूछे के
0: जो थिएटर जो हाँ इतने बार कभी कभी साइलेंस इन हर्स जन सन्नाटा उस जस्ती अच्छा
1: तू मुखर्बे के सुधारे के
0: बड़ी जीप बोल रहे थे
1: अपने तोरे पर की मारे
0: जो थिएटर जो
1: हम जाने का
0: आप तो पोस्टर के पकड़ के मर जान सर कभी कभी साइलेंस इन हर्स जन सन्नाटा उस जस्ती अच्छा तू मुखर्बे तो अन्य आंतो बात तू बोल बाग से अन्य तोरे पर की मारे कलयुग है ना इंदिराजी हम जाने का जो बोला पर है कलयुग चीनी बात अच्छा लोग भी चैन ला
1: तो प्रोफेसर
0: अच्छा लोग नहीं रही थे तू दुनिया डूब जाए तू
2: हमारे माँ बाप अभी डूब जाए माँ ये जैन था वो तो अभी डूब जाए माँ के पूजा वाला है वो तो वृद्ध लोग ऊपर वाले भी हाँ
0: कलयुग है ना इंदिरा जी दुनिया जो बोला ला पर है कलयुग चीनी बात है अच्छा लोग भी चैन ला अच्छा लोग नहीं रही थे तू दुनिया डूब जाए तू हमारे हाँ पूजा में देख बता सच्चे के जैसी महिला लोग लड़का लोग उतना नहीं लोग किला जिसको चला था सिनेमा एल्बम सिनेमा तो सब कोई ढोक के चल जाए। हाँ पूजा में देख बता सच्चे के जैसी महिला लोग लड़का लोग उतना नहीं लोग किला और जैसी माता जी लोग दम दिखिला हम सच्चे इस बात सच्चा है मॉरिशस जिसको चला था सिनेमा एल्बम आगे लिखा था सब कोई ढोक लोग जाते हैं जिन्हें सब कमती बात ठीक कमती लेकर और जैसी
1: श्री माता जी रूप हम देखिला हम सच्ची बात सच्चा है मॉरिशस
3: सब में दिखाते सके आगे लिखा सब लड़का लोग

0: बाद में
1: ढेर
0: तब इंदिरा जी तुम्हारे विचार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जय माता
0: जैसे माता जी
2: बोलते
0: देखा था जब बाद में देखा था लड़का टेढ़ा हो गया बहुत देर है पर जहाँ ले सकते
2: इंदिरा जी तो हर विचार करने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चाची दादा दादी जय माता दी देखा तो लेकर
2: बहुत धन्यवाद।
0: जैसे माता जी
2: बोलने
0: जहाँ
2: नमस्ते बोले
0: धन्यवाद
2: के बारे में माननीय के बारे में सो आप लोग क्या सोचते हैं तमीज के बारे में आप हमें फोन कर सकते
0: हैं। जय माता दी।
2: और एक श्रोता है लाइन पे भाई हरीश, चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो भाई हरीश नमस्ते।
3: आपको सूट करता है क्योंकि आप एक
2: हाँ कैसे हैं भाई जी।
0: थैंक यू जी थैंक यू।
3: आप तो वेरी हैप्पी हर रोज एवरी डे बात हो रही है।
2: जय माता दी। तरह तरह के एक कक्षा में 40 बच्चे 40 परिवार का सामना होता है।
3: हाँ सब कैटेगरी सूट करता है क्योंकि
2: हाँ हाँ
3: हैंडल करते हैं।
2: थैंक यू जी थैंक यू। तरह तरह के एक कक्षा में 40 बच्चे 40 परिवार का सामना होता है।
0: जैसे चाहिए
3: रोल मॉडल
2: हाँ हाँ
3: हैंडल कर रहे
2: हैं
3: रोल
2: मॉडल होना चाहिए।
3: ये है वो बिहेव करते हैं
2: हाँ जैसे चाहिए
3: रोल मॉडल
2: रोल मॉडल होना चाहिए।
3: स्कूल मॉडर्नाइजेशन जो आया है नो वायलेंस प्रोटेक्शन
2: हां नो कॉर्पोरल पनिशमेंट
3: ये लालवा में
2: हाँ एक बार आप पुलिस के बुला दे बाप सिद्धि के बुला दे तो के बंद कर दे नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। हम को बात बोला भाई हरीश हमारे अपन बेटी खला मुखर से हला कली को निमन
0: एक बार आप पुलिस के बुला दे बाप
2: बोले
0: बुला दे
2: तो के बंद कर दे
3: ना पुलिस
2: हम को बात बोला भाई हरीश हमारा अपन बेटी खला मुखर से हला कली को
0: ये तो हम सभी लोग इसे
2: बोले पाक यम मम पुसो ना पुलिस हाँ ये तो हम सभी लोग इसे गुजरते हैं। बच्चों का जो शरीर का जो चेंज है फिर मानसिक चेंज है सब सब सब कुछ हाँ ये तो
3: है।
2: बच्चों का जो शरीर का जो चेंज है फिर मानसिक चेंज है सब सब सब कुछ
3: हाँ
2: ये प्रेशर तो जब बच्चे जब ऐसे व्यवहार करते हैं तो बाद में क्या होता है फेल हो जाते हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं फिर लेखा के काम नहीं बा लेखवा मूवी नहीं कर गया तब थोड़ा जब देखा तो लेखवा मूवी कर रहा था तब लेखवा के छल आगे के जैन लाजवे में छा लेखवा का तो जब बच्चे जब ऐसे व्यवहार करते हैं तो बाद में क्या होता है फेल हो जाते हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं फिर लेखा के काम नहीं बा लेखवा मूवी नहीं कर गया तब खोता जब देखा तो वह लेकवा मूवी करा था तब लेकवा के छल आकृति कर जैन लाजवे में छह लेकवा के आकृति कर बाप जैफिया कुंसा ऐसे नहीं करे के
3: कैसे हम लिखो करें क्या सिखाएं अपने

0: बच्चों से
1: जरूरी है
0: वही नहीं
1: क्योंकि आप बहुत से पेरेंट्स पेरेंट्स बन जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं जानते हैं कैसे चाइल्डहुड से एडोलेसेंट प्रॉब्लम हो रहा है कैसे हम
0: स्कूल में
1: व्यवहार करें क्या सिखाएं अपने में प्रॉब्लम हो रहा है वही नहीं जानते जब ये स्कूल में पढ़ाते हैं
2: हाँ ये मानस अगर मानस हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे बच्चे लोग जब बाहर से लोगों से भेंट करते हैं तो लोग क्या बुरी चीज सिखाते हैं तो लोग कौन सी सीखती है
1: बेस्ट स्कूल
2: हाँ हम जाना चाहेंगे हाँ ये मानस अगर मानस हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे बच्चे लोग जब बाहर से
3: खाली बोल दिया सर पापा मैंने पूरा विजय का विजय करके बता विजय करके बात है एक आधा घंटा नहीं बा पूजा में जाके एक थोड़ा सा हाँ हम जाना इतना बिजी हो सर बाप रे बाप हम ये तो जरे में अभी देखा तू जरे में रहा ना भाई हरीश तू कॉलेज में जाता ना तू पूजा पाठ
4: खाली बोल दिया सर पापा मैंने पूरा विजय का विजय करके बता विजय करके बात है एक आधा घंटा नहीं बा पूजा में जाके एक थोड़ा सा नीता होने में इतना बिजी हो सर
3: सत्संग हो रहा है वहां पर अच्छी बातें हो रही है
4: तू जरे में रहा ना भाई हरीश तू कॉलेज में जाता ना तू पूजा पाठ में नहीं जाता ना
3: बहुत खुशी से जाते हैं सत्संग हो रहा है वहां पर अच्छी बातें हो रही है पंडित जी बात कर रहे हैं कपाट पर चढ़ा के रख बता ये तमाशा वाला भैया बहुत खुशी से जाते हैं
1: हां धन्यवाद जी आजकल आप जो ही है पेरेंट्स घर में यही बहुत नहीं है
3: लेकिन लोग ढेर का पार्ट पर चढ़ा के रख बता ये तमाशा वाला भैया भाई हरीश आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओके ओके बाय बाय जय माता दी हाँ तो जैसे भाई हरीश बता रहे हैं कि कभी कभी
4: तब तक बाल होता
3: कहीं कहीं पर तो चुप गए हैं कहीं गए हैं मानस सिखाने में बच्चे तो छोटा होता है तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं
4: भाई हरीश आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
3: इतना लाभ ओके ओके बाय
4: बाय जय माता दी
3: मैं ये नहीं कहता
4: हाँ तो जैसे भाई हरीश बता रहे हैं कि कभी कभी माँ बाप भी कहीं पर तो चुप गए हैं
3: ना भी लाभ गए हैं
4: ना करे कि मानस सिखाने में
3: बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार
4: लाड प्यार से बात
3: कभी कभी इतना लाड प्यार देते हैं कि बच्चा बिगड़ जाता है
4: मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को लाड प्यार नहीं देना चाहिए डूज एंड डोंट्स पर कि नहीं
3: ना भी लाड प्यार माँ बाप का कर्तव्य बनता है बच्चों को फायदा उठाने लगे और अध्यापक जो है केवल सिलेबस नहीं है बताना चाहिए
4: कुछ भी कर सकते हैं
3: फ्रेंच या अंग्रेजी या क्या प्रिंसिपल होता है जीवन
4: सिलेबस के साथ साथ कर सकते हैं
3: सुबह जब हम
4: फॉर्म टीचर पीरियड में जाते हैं माँ बाप
3: का कर्तव्य करें तो बच्चों को कुछ सिखाएं गुड मैनर्स
4: और अध्यापक जो है केवल सिलेबस नहीं
3: कविता एक दो लाइन ताकि बच्चों को हम फ्रेंच या अंग्रेजी या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सिलेबस के साथ साथ घर में केवल सुबह जब हम फॉर्म टीचर पीरियड में जाते हैं रजिस्टर कर लिया अटेंडेंस करें तो बच्चों को कुछ सिखाएं
4: हमारा प्रोग्राम जारी है शाम के 5 बजे तक चलिए गीत सुनते हैं
3: प्यारी सी कविता
4: एक दो लाइन का नाम है बच्चों को हम मानें सिखा सके
3: के बाद
4: आज का बातचीत
3: हम देखते हैं कि दुनिया भर में
4: केवल मॉरिशस की बात नहीं है बच्चों में मानस की कमी है ठीक है सो दोस्तों हमारा प्रोग्राम जारी है शाम के 5 बजे तक चलिए गीत सुनते हैं यशुदास की आवाज में फिर का नाम है चिंचोर इससे बात

तमीज कोई दौलत नहीं जो बाजार में बिक जाए, न कोई ऊंचा पद है जो मेहनत से मिल जाए। यह तो दिल के संस्कारों से जन्म लिया करती है, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार में दिखती है। तमीज कोई दौलत नहीं जो बाजार में बिक जाए, बड़ा दिल कोई ऊंचा पद है जो मेहनत से मिल जाए। यह तो दिल अदब संस्कारों से जन्म से नहीं होती इंसान की पहचान, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार में कितना ऊंचा है उसका। बड़ा घर होना, बड़ी बातों से बात करने का सलीका होना चाहिए, चेहरे के लिए भी दिल में प्यार होना चाहिए, लहजे में अदब होना चाहिए। किसी की बात काट कर कपड़ों से नहीं होती समझना की पहचान, दूसरों को उनकी तमीज ही बताकर कितना ऊंचा है ऊंचा मत समझना। बड़ों से बात करने का सलीका होना चाहिए, छोटे और बदतमीजी का एक लड़ होना चाहिए, रिश्तों को तोड़ किसी की बात काट कर खुद को बड़ा मत समझना है, मगर दूसरों को गहरा छाप दिखाकर कभी दिल को ऊंचा है मत समझना, अपनों को छोड़। तमीज से बोला गया तमीज यह नहीं कि हर बात है और बदतमीजी का एक लड़ा जाए, रिश्तों को तोड़। तमीज यह है जुबान छोटी सही है मगर असर गहरा छोटी बात है, रखना भी एक हुनर होना चाहिए है तो मगर किसी का दिल न दुखे। इसका तमीज यह नहीं कि हर बात पर हर बहस में जीत जाना कोई समझ जाए नहीं, तमीज यह हर बात में पलट कर बोलना कोई सलीके से बताया नहीं जाए। कभी अपनी बात रखना भी एक हुनर होना चाहिए और कभी अगर किसी का दिल नहीं लड़ाई मिटाती है इसका भी ख्याल। तमीज का मतलब यह नहीं हर बहस में जीत जाना कोई समझदारी नहीं, हर गलत बात को चुपचाप हर बात में पलट कर बोलना कोई जहां जरूरत हो वहां कभी खामोशी भी अच्छे संस्कार दिखाती है, अपनी जुबान कभी एक मुस्कान बड़ी लड़ाई मिटाती है। तमीज का मतलब यह नहीं कि अपना सम्मान भुला दो, हर गलत बात को चुपचाप सहकर दिल में दबा लो, जहां जरूरत हो

से से भी अपने हद की आवाज उठाओ, मगर अपनी जुबान देकर उसका किसी की इज्जत न गिराओ। किसी गरीब को अपने लफ्जों की कीमत का एहसास होता है, कि जख्मों पर उसके हर व्यवहार में संस्कारों का वास होता है। क्या वह गुस्से से भी अपनी हद भी उसी भोर पर ला दे, किसी को मजबूरी देकर उसका मजाक नहीं उड़ाता। तमीज गरीब को देखने में नहीं मत फेरना आने में भी होती है, किसी मजबूर के जख्मों पर हंस समझना ना छिड़कना आने में भी होती है। क्या पता किसी की क्या पता कल वक्त तुम्हें भी उसी मोड़ पर ला दे, उसकी इज्जत बचाना यह है असली पढ़ाई। तमीज सिर्फ बोलने में नहीं निभाने में भी होती है। कुछ लोग दौलत के नशे में समझना और ऐसा में भी होते हैं, थोड़ी सी शोहरत पाकर अपनों को भी भुला देते हैं, अनुपस्थिति में भूल जाते हैं। इज्जत बचाना ऐसा नहीं रहता असली। आज जो ऊंचा दिखाई देता है कल वो नीचा हो सकता है, इसलिए कुछ लोग दौलत के नशे में हमेशा मिठास रखना ऐसा भूल जाते हैं, थोड़ी सी शोहरत पाकर अपनों को भी भुला देते हैं, किसी से मिलो तो चेहरे भूल जाते हैं, वक्त हमेशा और विदा हो रहता। आज जो ऊंचा दिखाई देता है कल वो नीचा हो सकता है, खाने से पहले लहजे में हमेशा नाना रखना, अपने व्यवहार में सबके लिए थोड़ा सा एहसास रखना पड़ता है। किसी से मिलो तो चेहरे पर मुस्कान रखो, अच्छी बातें कहने से कोई अच्छा नहीं बनता, उसके दिल में अपनी उसका किरदार पहचान रखो, शब्दों जैसा तमीज सिखाने से पहले रखना, उसे अपनाना पड़ता है, अपने व्यवहार से उसके स्वभाव और चरित्र से समझाना पड़ता है। सो यह जो तमीज है दोस्तों, अच्छी बातें कहने से कोई अच्छा नहीं बनता, अगर तमीज ना हो जब तक उसका किरदार उसके शब्दों जैसा नहीं बनता। याद रखना इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके स्वभाव और चरित्र से ही बनता है। सो यह जो तमीज है बहुत जरूरी है, अगर तमीज ना हो तो इंसान। और इस गीत के साथ ही हमारा आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। शाम के 4 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपके विचारों के लिए, आपके फोन कॉल्स और SMS के लिए शुक्रिया। ठीक है, 5 बजे आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम त्योहार पसंद। और इसी गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अपनों के नाम शाम के 4 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपके विचारों के लिए, आपके फोन कॉल्स और SMS के लिए शुक्रिया। ठीक है, 5 बजे आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम त्योहार पसंद। आपसे मिलते हैं इस गीत के बाद 5 बजे तो हर पसंद कार्यक्रम के साथ।

0: सहजरोग घरी मिलाला ये बच्चा ते सांस की ठीक कौन बजेगा कृष्ण तो एनबीसी रेडियो मॉरिशस
1: दो हर पसंद बजेगा ये मास के सांस के 5 से 6 बजे ले एनबीसी रेडियो मॉरिशस पर
0: सहजरोग घरी मिलाला ये बच्चा ते सांस की ठीक
1: दो हर पसंद बजेगा ये मास के सांस के 5 से 6 बजे ले एनबीसी रेडियो मॉरिशस पर आज ये प्रताप सिंह सितालू के साथ मीडियम दो हर पसंद 6 बजे ले एनबीसी रेडियो मॉरिशस पर आज ये
2: दो हर पसंद आज
1: दो हर पसंद प्रोग्राम दिमाग के सांझ के 5 से 6 बजे ले एनबीसी रेडियो मॉरिशस पर आज ही प्रताप सिंह सितालू के साथ
2: दो हर पसंद आज ही प्रताप सिंह सितालू

सब संगठन के अजय प्रताप सिंह सितालू के प्यार भरा नमस्ते। यह तो हमारे मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज पर हम के सब ऑनलाइन सुने जाइए गूगल पर क्लिक करिए लिसन एमबीसी रेडियो मॉरिशस लाइव। सब संगठन के अजय प्रताप सिंह सितालू के प्यार भरा नमस्ते। यह तो हमारे मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस 719 पर आज से नवरात्रि शुरू होता है। नौ दिन नवरात्रि में गूगल पर क्लिक करिए लिसन एमबीसी रेडियो मॉरिशस शाम के 5:05 हुआ था। आज है दिमाग के साथ 11 अक्टूबर 2026 नवरात्रि शुरू होता है। 9 दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना कर सोकर भजन कीर्तन कर और अभी चला था प्रोग्राम त्योहार पसंद। त्योहार पसंद प्रोग्राम तेरा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वन घुमैया का चौथा ही प्रातः कथा माँ दुर्गा से हे अम्बे मैया सबके व्रत सफल हो सबके पसंदीदा भोजपुरी गीत सुने को किलानी भी ऐसे बात शादी बात शादी के साल भी चला था प्रोग्राम त्योहार पसंद। त्योहार पसंद प्रोग्राम तेरा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वन घुमैया का चौथा एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ शाम के 6 बजे दे।

0: Marxists.
1: दोहर प्रोग्राम दिमाग की सांझ के 5 से 6 बजे ले एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर आज ही प्रताप सिंह सितारे के साथ
0: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: गमत शुरू कर बन नाचे दिस गावत दिस झूमा दिस कमरवा डोलावत दिस नाचे गावत झूमा ए हे और कंजूसी नहीं है हाँ नाचे गावत कंजूसी नहीं कर दिया नाचे से गावत से कमरवा डोलावत से गमत शुरू कर बन नाचे दिस गावत दिस झूमा दिस कमरवा डोलावत दिस नाचे गावत झूमा ए हे और कंजूसी भाई हरीश का तीर बोला सेंसे काला चोटी वन पॉल आज से चाचा आत्माराम अब से कमरवा डालो सा के चौ बजे ले देर को नाच के शुरू कर दे रखबा और अगला गीत परिचय परिवार के संजय और संजय बिहारी भाई हरीश का तीर बोला सेंसे काला चोटी वन पॉल आज से चाचा आत्माराम संजय हरिचंद गीत और कथित तौर पत्नी तौर बेटी विश्वास परिचय परिवार के संजय हवन चंपा राम गतिया और देविका राम गतिया श्याम मंगल नानो विसादे लॉन्ग जसवा राजकुमारी और सब राज जसवा परिवार मन्ना परिवार दिन राज मन्ना रवि दिनो है की तोरो नाम साथ में तोर पत्नी तोर लेका लोका की तोर माता जी और नानो भी साथ देवो तो वन और सुदेश जसवा परमा राजकुमारी और सब राज सब जसवा परिवार मन्ना परिवार दिनो परिवार हमने की साथ देवो तो वन कैसे रवि दिनो है की तोरो नाम साथ में तोर पत्नी तोर लेका लोका की तोर माता जी और पिताजी खातिर रवि को सर लोग से मिला जस सुनन चितन की नमस्ते कैसे समाचार भैया कैसे
3: दुर्गा समाचार
2: बोलो हाँ दुर्गा नवरात्रि अभिनंदन हो जय माता दी आज पहली रात्रि
3: है
2: हाँ हाँ जाने काहे नहीं जाने ना सर हाँ दुर्गा माँ की बोला हाँ दुर्गा माँ हाँ दोनों लेका मत से पढ़ल बे आश्ले भी और भाई भी मत से पढ़ल बे दोनों जना हाँ हाँ जाने काहे नहीं जाने ना सर आज हमारे दोनों लेका मत से पढ़ल बे आश्ले भी और भाई भी मत से पढ़ल
4: गौरव की बात है कि इनके लेका लोग बड़ा बड़ा
2: इतने हो चुके हुआ अच्छी तरह की अध्यापक है ना फिजिक्स टीचर और बड़का कौन कहाँ काम करे ला आज हमारे लड़का लोग जरेब लोग बहुत ऊंचा पद पर भाई
4: वो भी ऊंचा पद
2: गौरव की बात है कि इनके लड़का लोग बड़ा बड़ा इतने हो चुके हुआ अच्छी तरह की अध्यापक है ना फिजिक्स टीचर है
4: हाँ जी हाँ जी
2: और बड़का कहाँ काम करे भाई अच्छी तरह की तोर खातिर तोर बेटी तोर दामाद लोग खातिर दुर्गा माँ के को भजन चलाओ आपसे ओके
4: वो भी ऊंचा पद पर हम जा
2: आले बहुत धन्यवाद और को संग जब लाइन पे कॉल से मिला जा हेलो जल्दी जल्दी बात करे देख इंतजार कर रहा था
4: हाँ जी हेलो
2: हाँ
4: जी
2: हाँ हाँ
4: हेलो जी आले
2: भाई चितन की तोर खातिर तोर
4: हेलो बन राजू के बोली मां कमती कर दे बना नेच कब से बात करे के
2: राजू के बोली मां कमती कर
4: आले बहुत धन्यवाद और को संग जब लाइन पे कॉल से मिला जा हेलो जल्दी जल्दी बात करे देख इंतजार कर रहा था
2: हेलो जब ही बचे ही
4: बस आलो आलो
2: करती रे भब बोलत नहीं तो लोग के
4: हेलो बन राजू के बोली मां कमती कर दे बना नेच कब से बात करे प्लीज
2: राजू के बोली मां कमती कर दे
4: हमने की कान
2: यहाँ क्लाती हो ना नहीं
4: कमती
2: वेरी सॉरी है तो लोग राजू के बोली नहीं कमती

0: जब ही बच्चे जब आलो आलो करते रहे बाप बोला था तो रोके काजू के वॉल्यूम कमती कर दिया सर तब बच्चे ऐसा हेलो बच्चे बस तब एक को होला
1: हाँ नमस्ते हमने
0: कान्या क्लाती होता उखातेर
1: प्रेमिला जी कैसे समाचार
0: हाँ चोर के
1: जय माता
0: बस करते हैं जब भी टेलीफोनी कर बैंबी से अपन राजू के वॉल्यूम कमती कर दिया प्लीज हेलो
1: दुर्गा माया गौरी ब्रदर
0: चलाओ आप सभी
1: तो फिकर ना करे प्रेमिला जी कैसे समाचार जय माता जी
0: थोड़ा सुन जोर से बचावा था लावा नहीं सुना था
1: दुर्गा माया गौरी ब्रदर चलाओ आप सभी की तो फिकर ना करे
0: आज जेबा शिवाला पूजा करे मंदिर जेबा हाँ अभी कै बजे रे पूजा होई थोड़ा सुन जोर से बचावा तो लावा नहीं सुना था कहाँ के मंदिर है सकब से जाने हाँ कहाँ को नौ दुआ आज जेबा शिवाला पूजा करे मंदिर जेबा
1: हाँ तो जनता अभी कै बजे रे पूजा होई
0: काली माता मंदिर कहाँ पर स्थित है कहाँ के मंदिर है सकब से जाने
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमिला और से बोला जय माता दी
0: सबको निमंत्रण बस सबको
1: धन्यवाद हमने की टेलीफोन कर ला
0: हाँ तो जनता
1: जैसे की हमने बोला था इस आज से नवरात्रि शुरू होता तो नवरात्रि में
0: प्रथम रात्रि है
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमिला और से बोला जय माता दी
0: रात्रि माँ ब्रह्मचारिणी
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: रात्रि में चंद्र
1: जैसे की हमने बोला था इस आज से नवरात्रि शुरू होता
0: नवरात्रि
1: में रात्रि में माँ काल रात्रि
0: माँ शैलपुत्री
1: में माँ महागौरी
0: रात्रि में ब्रह्मचारिणी में माँ
1: सिद्धिदात्री
0: तीसरी रात्रि में चंद्रघंटा
1: चौथी नवरात्रि में हमारी माँ की गुणगान
0: पांचवी रात्रि में माँ स्कंद माता
1: छठी रात्रि में व्रत धारण कर जितना संगति लोग
0: सातवीं रात्रि में माँ काल रात्रि आठवीं रात्रि में माँ महागौरी
1: और नवरात्रि में माँ धारण कर ले
0: नौ दिन
1: तक माँ
0: और नवरात्रि में हमने माँ की गुणगान कर मंदिर में घर में
1: सप्तशती के पाठ पर
0: व्रत धारण कर लगभग जितना संगान कर लग सा
1: माँ दुर्गा के
0: बड़े दुर्गा
1: शिवाला में मंदिर में
0: दुनिया
1: भर में
0: अपन व्रत धारण कर ले
1: नौ दिन नवरात्रि तक माँ
0: की आराधना कर सा
1: संगे माँ
0: की कीर्तन
1: भजन
0: दुर्गा
1: सप्तशती के पाठ पर अब सा माँ दुर्गा के गुणगान कर अब सा चल एगो दुर्गा माँ के भजन चलावते सा

0: रेडियो मॉरिशस के साथ 2000% प्रोग्राम दिमाग के साथ 5 से 6 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर आज प्रताप सिंह सितालो के साथ मीडियम वेव 819
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
0: 2000% प्रोग्राम दिमाग के सांझ के 5 से 6 बजे ले
2: सांझ के 5:23 मिनट हुआ था जहाँ से दिन के साथ जो था साथ देते रहिए संगत क्या लोग बोल रहे हैं कि दोस्ती ऐसे ने गुरिश्ता है जो दिल से करता है मेरे हवाल चाहता दोस्ती जहाँ सीखेंगे कृष्ण और सुदामा के दोस्त सांझ के 5:23 मिनट हुआ था जहाँ से दिन के साथ सुदामा के जो देते रहिए संगत क्या लोग बोल रहे हैं कि दोस्ती ऐसे ने गुरिश्ता है कृष्ण बहुत धनवान राजा रहा फिर भी इलोक की दोस्ती में गरीब दोस्ती जहाँ सीखे कृष्ण और सुदामा सुदामा गर्व कृष्ण भगवान लगे तो कृष्ण भगवान और कृष्ण सुदामा के जो दोस्ती रहता के पन गले से मिल लग कर गोर धोई लग कर बहुत गरीब रहा कृष्ण बहुत सुदामा राजा रहा फिर भी इलोक की दोस्ती में गरीब करिया तक कृष्ण सुदामा ने जब सुदामा गर्व कृष्ण भगवान लगे तो दोस्ती पर गाना है निर्गुण मधु के आवाज में संगत्या के पन गले से मिल लग कर गोर धोई लग कर सेवा कर लग कर सुदामा के धीरे और प्रताप और नटराज ये लोग दोस्ती पर गाना है नीरज के दोस्त की आवाज में दोस्ती के गोल से सारे बेस्ट जितना कोई बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप में माने रहा दोस्ती में माना गीत चलो के नाम भी और प्रताप और नटराज ये लोग संगत के दोस्त हैं सिमी से खावन से एक दूसरे से खूब मधु के आवाज में हवन से एक दूसरे से बोल हर प्यार करें चलो के दोस्ती दोस्ती के गोल मिसाल है तो रामन का कोनो भी बहुत चोली नहीं सुनेंगे फ्रेंडशिप में माने रहा दोस्ती में माना गीत चलो के नाम भी प्रोग्राम शाम के 6 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुनेंगे नंबर वन घुमावा जगह दे विद जगह विद सैंग 4-0-8-0-8-5 तुम्हारे पसंद प्रोग्राम शाम के 6 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर
3: कल सो आर कुछ तू हमारी यार हम तो यार

0: गाना धमाल द्वार पर चिंकारी पर मजी हाँ सांझ के छह बजे ने आंख मारीला रत्ना पदारत और बंधु मोहम्मद कृपा गैले वन के को हो यार रत्ना पदारत जान आंख मारे नमस्ते जी के हवजा भैया तू काहे बाहरा में कोनो
1: कैसे शोभा अच्छा ना
0: भौजी जान जाए
1: जय माता
0: यो पापा सब ठीक ठाक
1: एगो संगते वाला जो कसमी लग जाए
0: हेलो नमस्ते जी के हवजा कैसी शोभा अच्छा
1: कौन की कामियां लो तो बीस मोटो सब ठीक ठाक
0: आला पूजा पाठ शुरू हो गल बा
1: बहुत
0: नवरात्रि कर ला बहुत बहुत शुक्रिया
1: बोल अगला गीत अगर खाते
0: अनीता त्रियोले से हेलो अनीता
1: कौन की कामियां लो तो बीस मोटो
0: हेलो
2: हेलो
0: आला नानी आले बहुत धन्यवाद सुनने कर ला बहुत बहुत
1: हेलो नानी
0: बोलत है
1: अनीता त्रियोले से
0: हेलो
1: अनीता
0: आयु पापा
1: सुना कटा गए कोई
0: बात जब भी टेलीफोन नहीं कर टेलीफोन अपन राजू की बोली मां कम दी कर दिया अगला गीत
1: हेलो नानी
0: हम बोलत ना पता रहते बंधु मोहम्मद की आवाज में
1: हेलो
0: गीत रे हना हंस नानी के नाम रहे ना फिनिक्स कर दू संगते वन रीता
1: जब भी टेलीफोन नहीं कर
0: टेलीफोन
1: चित्रा के ओसे
0: अपन राजू की बोली मां कम दी कर दिया
1: शाम परिवार
0: अगला गीत आंख मारी रा
1: नोट दाम के रहा
0: बंधु मोहम्मद की आवाज में
1: गीत रे हना हंस
0: भाई अबू नाम
1: रहे ना फिनिक्स
0: फातिमा कर दू संगते वन
1: रीता सीता
0: रे ने का भैरव
1: सुनिने से गीत
0: चित्रा के ओसे
1: ओकर घरो ला
0: ज्ञान और सब भी शाम परिवार के
3: नाम
0: लतदाम के रेहाना
1: के सच्चे के
3: मां-बाप के
0: साथ में भाई अबू वन बकवास
1: या पाकमा हो
0: हां
1: ते निमन ले
0: के हम आप के कहा नहीं मां
1: नहीं ताली ला
0: या ए हे
3: कैली का मत करे
0: गांव में रहिला
1: हाय देखा
0: सच्चे के
1: जलसा
0: नचना चे
1: नचना
0: चे
1: निमन ले का हम आप के कहा नहीं मां
0: हमरा देख देख के आंख मारेला
1: हाय देख
0: हाय देख चुमा देवेला ए हे
1: जलसा
0: आंख मारेला चुमा भी देवेला
1: ओहो
0: देख देख के हमरा देख देख के आंख मारेला देख के
1: चुमा देवेला
0: ए हे आंख मारेला चुमा भी देवेला ओहो

0: ऐसे ही मूड में बोल हमरा देख देख के रोज मारेला हमरा देख देख के चुमा देवेला गीत के बोल भैया
1: भैया
0: हाथ खूब गर्म कर दे
1: इंसान के पांच बज के पैंतीस मिनट
0: आजकल हम क्या पर
1: ऐसे ही मूड में कमर कर दे रही है नाचते गाते रही है और
0: रोज बेल बगल तक मोटा पानी भी
1: गर्मी
0: निमन
1: से तो नुवाम से सफाई करते
0: पानी
1: भैया
0: बोली लेती चला
1: गया भैया
0: घाट खूब
1: अगला की इच्छा फिर बाबू और
0: गर्म
1: हम चलावते
0: आजकल हम क्या पर
1: ये कुछ आती रहे थे
0: बोले
1: आशा जानू हूँ कॉटेज से आशा जानू जी के
0: भी गर्मी
1: कुमारी
0: नेफ्यू
1: शुभम शुभम के फियांसे आरती दीदी जीजा जी चीज ऑफ खाती
0: अगला गीत सो फिर बाबू और है गीत
1: और से तो मैं से कॉलेज
0: के रियल
1: टीचिंग
0: आशा जानू हूँ कॉटेज से आशा जानू जी के
1: लवली
0: मामा कुमारी नेफ्यू शुभम शुभम के फियांसे आरती
1: दीदी जीजा जी
0: चीज ऑफ खाती
1: सब जानू परिवार के नाम
0: और से
1: तो मैं से कॉलेज के
0: टीचिंग
1: टीचिंग स्टाफ के नाम स्पेशली स्वीट एंड लवली मिसेस टीना
0: और नाम
1: और साथ में भी वो संगतिया हुआ नुकर से मिल जा
0: अमृता जी हवन ओकुले
1: से
0: एंड मिस
1: हेलो
0: देन मिस टीना हेलो
1: हवन अंग्रेजी पर हावलन
0: अमृता जी
1: बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं
0: ए हे हेलो
1: तोहर नाम
0: और साथ में भी वो संगतिया हुआ नुकर से मिल जा
1: अमृता जी हवन
0: हां चाची शुक्राल नमस्ते
1: हेलो
2: हां
0: कैसे अच्छा
1: ना हेलो
2: अच्छा बेटा
0: अमृता
1: जी चला चाची तो लोग के आशीर्वाद से
0: हेलो
1: दुर्गा पूजा के चार दिन से दुर्गा माँ के भजन
0: हाँ
1: चाची हेलो
0: बोला बोला बोला
1: हाँ चाची शुक्लाल नमस्ते कैसे अच्छा ना
0: गमती कर दिया चाची
1: चला तेरा चाची तो लोग के आशीर्वाद से
0: गा दे गो भजन दुर्गा
1: माँ के भजन गा दे
0: हाँ
1: हाँ चाची गा दे गो भजन गा दे
2: अच्छा
1: राजुआ की बोली कमती कर दे चाची
2: अच्छा बेटा तो
1: हाँ बोला चाची
2: बोला
1: गा दे गो भजन दुर्गा माँ के भजन गा दे
0: हाँ गा दे गो
1: हाँ चाची
0: गा दे गो भजन जा गा दे
2: एक ही अच्छा गा दे ला हमी है
1: आली गावो गावो
2: अच्छा बेटा नमस्ते अच्छा हाल चाल तो के हाल चाल बड़ा धूमधाम से चला था दुर्गा पूजा
1: हाँ गा दे गो दुर्गा भजन
2: आली
1: गाओ गाओ अच्छा चाची जन जोरी से गई
2: ला
1: हम जाना थे चाची ए ता चाची हाँ गे मान गे सर बहुत धन्यवाद चाची टेलीफोन कर ला आली आली आली बाबाई और एक उसे कहते हैं लाइन पे हेलो
0: अच्छा चाची जन जोरी से गई ला
1: हेलो
0: हम जाना थे चाची ए ता
1: जय माता दी सच्चे के उपले में पानी नहीं बदन को
0: बहुत धन्यवाद चाची टेलीफोन कर ला
1: आली आली आली बाबाई और एक उसे कहते हैं लाइन पे हेलो
0: आली चिंगर मिंगर पानी नहीं बा बोला कि तो आके
1: हेलो जय माता दी सच्चे के उकुले में पानी नहीं बरसता को कि पानी मिला था ए ता ऐसे पानी नहीं बरसता था कितना दिन से नहीं बरसता था पानी हो आले चिंगर मिंगर पानी नहीं बा बोला कि तो आके कर खातिर है ना सुना जितना चाची दादी लोग बात सब कोई से बोले हर पर रवि गाय के अभी तो चाची नाइन बड़ी मोदी है वंश नहीं गावत वंश ए ता ऐसे पानी नहीं बरसता था
0: ना जाने रंसा
1: जेस कंसा नहीं गावत वंसा आले पिका नहीं करिया हम इंद्र भगवान वरुण भगवान से गंगा मैया से पूजा कर
0: सुना जितना चाची दादी लोग बस सब कुछ बोलिया हर पर रवि गाय के
1: जय माता दी
0: बहुत बहुत बड़ी मुद्दे ने वंसा नहीं गावत
1: वंसा हां तो हमने जानते ऐसा कि मॉरिशस में
0: ना जाने रंसा जेस कंसा नहीं गावत वंसा
1: आले पिका नहीं करिया हम
0: इंद्र
1: भगवान वरुण भगवान से गंगा मैया से पूजा कर आपकी पानी बरसे
0: ठीक बा
1: पानी हिसाब से इस्तेमाल
0: जय माता दी बहुत बहुत धन्यवाद

मना नहीं बना है पानी हिसाब से इस्तेमाल करिया गीत गावता मना नहीं बना है करे अच्छा बना है जलाशय में अच्छा रही पर ले जाता नहा ले ला जो हम सबसे बड़ा जलाशय बन कर दिया कबू सबसे बड़ा जलाशय है ना करिया पूजा कर गंगा माँ से वरुण भगवान भगवाना है शिव भोलेनाथी पानी के देश में पानी भर सके और साथ में है गीत चल ली केशव के नाम फिगर ना करिया पूजा कर अश्विन बच्चन सब बच्चन जलाशय भर जाए प्रीतम राजेशव के नाम केशव गुड़िया उदय धनी राम कर अश्विन बच्चन सब बंधन के नाम और विक्रम राज मिला है गीत होरो का सब बंधन परिवार के नाम मनीष जान सिंह गीत होरो का तेर है गीत चली तो हर के रीति तो हर सब परिवार के नाम एक्स अध्यापिका के नाम मिसेज विभा बंधन के नाम सभी रामनोरत के नाम और विक्रम मनीष कर सब रामनोरत और सब बंधन परिवार के नाम मनीष जान सिंह गीत होरो का तेर बिकने करिया गंगा मां से प्रार्थना हुआ था कि पानी तो हर सब परिवार के नाम बहुत जल्द तो माता जी हमने की आस्था और विश्वास चली सभी रामनोरत के नाम कर पत्नी को लेकर और सब रामनोरत परिवार के नाम पानी नहीं बा फिकर नहीं करिया गंगा माँ से प्रार्थना हुआ था कि पानी बरसी बहुत जोर बहुत जल्द ये हमने की आस्था है हमने की विश्वास है।

0: Pani nahi ba, chengan mengan pani bhare. Pani nahi ba, chengan mengan pani bhare. Pani nahi ba, digri dale pani nahi ba. Pani nahi ba, chengan mengan pani bhare. Pani nahi ba, chengan mengan pani bhare. Pani nahi ba. पानी नहीं बा
1: डिगरी डाले पानी नहीं बा पानी बरसा हो डाले
0: पानी नहीं बा
1: बोलो
0: पानी बरसावा
1: बरसावा
0: नहीं बा
1: पानी चहला
0: चहला
1: पानी सब कोई के
0: पानी जीवन है
1: जीवन ही पानी है हे हे
0: पानी बरसा हो गंगा मैया इंद्र भगवान वरुण भगवान
1: पानी बरसावा
0: बरसावा
1: पानी चहला
0: चहला पानी सब कोई के
1: पानी जीवन है
0: जीवन ही पानी है
1: ए

0: technique le e-filing saison 2026 est suivi par instruction.
1: Pour toujours faire offert un individual income tax return 2026, officiel de la MRE, 5 jours remplir le return à travers nos sites web de la MRE.
0: Après qu'il vous finisse de mettre le return,
1: ou capable de participer dans le taxpayer satisfaction survey et remplir
0: si vous êtes un rendez-vous prix 25 minutes, puis un deuxième prix de la MRE,
1: et vous remplir le return à travers WhatsApp.
0: Remplir le return
1: après qu'il vous finisse de mettre le return,
0: passez ce capable de participer dans le taxpayer satisfaction survey et remporte un des 23 prix. Premier prix, 25 000 roupies. Deuxième prix, 15 000 roupies. Et troisième prix, 10 000 roupies.
2: Faire vite, remplir le return avant le 15 octobre. Passez ce billet pour risquer une pénalité et l'indemnité. Sans qu'il n'y ait pas de 50 minutes. Tout le monde qui est sangré, sangré, nage de la camarade de la voiture. Et c'est une petite gaieté.
3: Jengen, mengen, pani, bhare. Pani, nai, ba, na, na, na, na, na, digre, dale.
2: Sabko je pani, nai, ba.
3: Sans qu'il n'y ait pas de 50 minutes.
2: बसंती हवन वो बात से चलो कर से मिल अब जा बसंती जी नमस्ते कैसी समाचार बसंती
4: हाँ
2: आली गावो गावो गावो
4: सावन की
2: जय माता दी जय माता दी अभी नौ दिन ले नवरात्रि माँ के पूजा कर अब सना अब कर निमन से सजा दे कर चुनरी काजल सब जोड़ी से हैं ओकर दिया जला दिला कोको सब चढ़ा दिला हाँ जय माता दी जय जरूर सब के चैनल अभी नौ दिन ले नवरात्रि माँ की माँ बात कर सब कुछ बा माँ ने बात कुछ ओकर निमन से सजा दिला
3: और माँ शक्ति की प्रतीक है ना
2: सब जोड़ी से
3: अगला गीत और काटे
2: दिया जला दिला कोको सब चढ़ा दिला
3: हाँ बहुत
2: धन्यवाद इधर में जरूर सब के चैनल माँ के आशीर्वाद लेके
3: माँ बात सब कुछ बा माँ ने बात कुछ
2: और माँ शक्ति की प्रतीक है ना
3: गीत वाले
2: अगला गीत और खाते तो सब
3: परिवार है गीत और खाते तो और माता पिता तो और भाई भौजी की चीजों को सब मंदिर परिवार के नाम जान की मार
2: ताली मार हमर संगे मार ताली मार एहे हगे था
3: गीत का गेले वन कुना
2: वंदना की सारे वजन वंदना गीत और घरोला तो और सब परिवार और भाई भौजी की चीजों को सब मंदिर परिवार के नाम
3: जान की सहाय देवेंद्री वाला कनाडा से वन वैंकूवर से उनके साथ देवतवन रंबा हवन लास्ट फिस से उपकर्तिंग को बेची पर घरोला
2: वंदना की सारे वजन वंदना गीत और घरोला

0: को बेटा बाल गोपाल और मॉरिशस को माता जी
1: फिर नदी वाला देवे नदी वाला कनाडा से और वैंकूवर से के साथ
0: सब समझ दो खाती
1: रंभा हवन लास्ट वीक से कटिंग को बेटी को
0: घर वाला
1: चला हमने के संग गवन करे
0: नाम चिंता राम
1: ऑस्ट्रेलिया से वन को दुगो बेटा बाल गोपाल और मॉरिशस में माता जी इंदिरा चिंता राम चंदन बहुप्रिया बेटी सलोनी खाती
0: हम संगे
1: के सब समझ दो खाती जन खुशी रहन सा गमत
0: हम संगे
1: चला हमने के संग गवन करे नाचे गावे अधिक संग संग आपसे मार्तन
0: तालीमार हम संगे
1: हे हे
0: हमर संगे
1: आई देखा
0: आहा ए हे
1: हमर संगे
0: मार्तन मार मार्तन मार
1: तालीमार हमर संगे
0: हे हे
1: आई देखा
0: आहा ए हे
1: मार्तन मार
0: मार्तन मार

इसके संगे भोजपुर त्योहार पर इन प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हो जाए। शाम के 3 बजे से अभिरम के साथ ही राजा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बजे शाम के हमने कितनों के मुलाकात हो बुधवार के त्योहार पर इन प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हो जाए। 11 बजे शाम के 3 बजे से अभिरम के साथ ही राजा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर बहुत बहुत 6 बजे शाम के सुन बजे पूरा समाचार बोलते हैं। और हमने कितनों के मुलाकात हो बुधवार के रात के जय माता दी नवरात्रि नवरात्रि माँ दुर्गा का भजन और माँ दुर्गा की मुलाकात सबके प्यार भरा नमस्ते जय माता दी। नवरात्रि शुरू हो गल बा आज पहला रात्रि है नवरात्रि माँ दुर्गा के भजन गाते रहब और माँ दुर्गा के गुणगान करब जय माता दी। और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दे अजय प्रताप सिंह सितालू साइनिंग ऑफ बाय बाय टेक केयर।

अपने घर में रह लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। अपने घर मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। 11 अक्टूबर 2026 की तारीख, स्वागत है आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। डालते हैं नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। गोली लगने से घायल एलोजी टोमास की सेहत पर सबकी 11 अक्टूबर

0: अक्टूबर 2026 की तारीख। स्वागत है आप सभी का घटना के समाचारों में। आज विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक गोली लगने से घायल डॉक्टरों की लगातार उनकी देखभाल कर रही है। शुक्रवार रात डॉक्टरों के आने का है। घटना के दो दिन बाद आज विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक लगाई गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डॉक्टरों की पक्ष और लगातार उनकी देखभाल कर रही है। भारत से सात डॉक्टरों के आने का हथियार का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर होना चाहिए। गोली लगने से घायल एलजी टोमासकी के परिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र सुधार न्यायिक जांच की सिफारिश की है। आयोग ने बताया है कि हथियार का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर होना चाहिए। इस बीच अस्पताल में आज एलजी के परिवार और माता शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं में भक्ति का वातावरण में भारत में भी भगवती मां दुर्गा के जयकारों के साथ नौ दिनों की आराधना के साथ शुरू है। नवरात्र का शुभारंभ हुआ है और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं में भक्ति का वातावरण और भारत में भगवती मां दुर्गा के जयकारों के साथ नौ दिनों की आराधना शुरू हुई है। नवरात्रें भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 हर लोग लापता है, जबकि करीब 36 के उपास मकान बह गए हैं और 4 और विदेश में नेपाल में बुद्ध की गंडा की नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 लोग लापता है, जबकि समाचार बुलेटिन में आप सभी का बह गए हैं और 4 स्थानीय खबरों के साथ समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि गोली लगने से घायल एलजी टोमास की सेहत। नमस्कार और आदाब, सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गंभीर स्थानीय खबरों के साथ समाचारों को देते हैं विस्तार में। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि गोली लगने से घायल एलजी टोमास की सेहत नजर टिकी और उनके इलाज पर शुक्रवार रात हुई इस के घटना की दो दिनों की टीम आज विक्टोरिया अस्पताल में देखभाल स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में इलाज में स्तरीय बैठक के लिए भारत से 7 डॉक्टरों के आने का इंतजार है। मौजूदा एलजी टोमास को बेहतर से बेहतर पर इलाज मुहैया कराने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है। विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इलाज में मदद के लिए डॉक्टरों के आने का इंतजार है। एलजी टोमास को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए चिकित्सा स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यासीन दनमामुद की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: भारतीय विशेषज्ञों के आने तक स्वास्थ्य कड़ी निगरानी एलजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया, जो शुक्रवार रात को एक पुलिसकर्मी की गोली से घायल हो गई। मंत्री अनिल बिज भारतीय विशेषज्ञों कल रात से मॉर्शन डॉक्टर उनकी सेहत वाली भारतीय कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उनकी मांग पर ही कल कुछ टेस्ट किए गए और स्कैनिंग भी। मरीज की हालत गंभीर है, लेकिन मंत्री अनिल बेचू ने कहा साथ कल रात से मॉर्शन डॉक्टरों का हाल कर रही है। आने वाली भारतीय डॉक्टरों के साथ ही उनकी मांग पर ही कल टेस्ट किए गए और मरीज की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। उनके इलाज से जुड़े फैसले विभिन्न विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिए जा रहे हैं। उनके इलाज से जुड़े फैसले विभिन्न विशेषज्ञों के तय करेंगे विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। किस तरीके से डॉक्टरों के हमें संदेश ये तय करेंगे कि क्या प्रणाली अपनाई जाएगी। स्पाइन सर्जन का वही स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने डॉक्टर अश्वमेध सिंह दिनासी ने कहा ब्रेन में स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने मरीज से जुड़ा निकाल कर कहीं नहीं ले जाया जा सकता। विस्तृत जानकारी हमारे लिए अभी भी उसकी स्थिति हमारे लिए अभी भी उसकी स्थिति स्थिर है। कोई डॉक्टर अश्वमेध सिंह के बाद समीक्षा ब्रेन में इंटरवेंशन है।

0: इसलिए उसे धमनी में भी कोई नहीं ले जा सकता। सब
1: हमारे लिए अभी भी जबड़ा जहाँ गोली लगी
0: हमारे लिए अभी भी उसकी स्थिति स्थिर है, कोई ब्लीडिंग नहीं। सिटी स्कैन के बाद समीक्षा की गई, दो बार सिटी स्कैन हुई, धमनी में भी कोई रक्तस्राव नहीं। सब सामान्य है, केवल जबड़ा जहाँ गोली लगी वहाँ चोट है।
2: Sauf qui ça qui scanne entrée c'est simplement au niveau du nous capable de rentrer sur la mâchoire.
0: आने वाली चिकित्सा टीम में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ सर्जन, एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट और गहन चिकित्सा विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक शामिल होंगे। सोमवार को भारतीय टीम के पहुंचने पर आने वाली चिकित्सा टीम में शुरू की जाने की और तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ सर्जन
3: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश, खासकर कोलुवी इलाके को लेकर के शहर में पानी की कमी और कोलुवी में हुई गोलीबारी की घटना के बीच प्रधानमंत्री ने जनता से समाचारों को आगे बढ़ाते हैं और एकजुटता बनाए रखने के नाम संदेश संदेश में खासकर कोलुवी इलाके की घटना में पानी की कमी और कोलुवी में हुई गोलीबारी की घटना के बीच प्रधानमंत्री ने जनता से शांति भरोसा दिलाया है और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है ताकि घटना के सही हालात सामने आए। शुक्रवार जिम्मेदार लोगों की पहचान यह बताया है और कहा प्रधानमंत्री ने बताया कि वे लगातार पुलिस आयुक्त होने के संपर्क में है और कि मामले की जल्द नजर पूरी जांच होगी। उन्होंने रोड्रिग्स घटना के सही हालात कर लिया है और जिम्मेदार के पति जोनाथन की पहचान से भी बातचीत। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे लगातार परिवार को हर संपर्क में है और स्थिति समर्थन का भरोसा दिलाया है और एलओजी ने रोड्रिग्स का स्वास्थ्य दौरा भी रद्द कर लिया है। एलओजी टोमास के पति जोनाथन टोमास से भी बातचीत कर उन्होंने सूझबूझ से काम लेने को हर संभव उन्होंने माना समर्थन का भरोसा दिलाया है और एलओजी की जल्द परंतु स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने पुलिस से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए एलओजी टोमास सूझबूझ से काम लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने माना कि बिशप घटना को लेकर लोगों का गुस्सा अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया हिंसा रोम से भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा चाहिए कि वे परिवार को एलओजी टोमास के परिवार के प्रति होना है। बिशप जो मिकाएल जोहन ने बिशप ने पूरे मॉरिशस और समर्थन व्यक्त किया प्रार्थना की है से भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रही हैं। एलओजी का कल ऑपरेशन होना है को सुनते हैं। इस कठिन घड़ी में बिशप ने पूरे मॉरिशस के लिए भी प्रार्थना की है ताकि सभी को हिम्मत शांति और उम्मीद मिल सके। उनके संदेश को सुनते हैं।
4: और
3: जैसे कि हमने इस बात का उल्लेख किया है सुर्खियों में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोलुवी में गोली लगने से घायल 27 वर्षीय एलओजी टोमास के मामले पर करीबी नजर रख रहा है आयोग ने फिलहाल। और जैसे कि हमने इस बात टिप्पणी कर लिया है सुर्खियों में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोलुवी में गोली लगने से घायल 27 वर्षीय एलओजी टोमास के मामले पर करीबी नजर रख रहा है आयोग ने और स्वतंत्र घटना के तथ्यों पर रोजिल जिला अदालत से इंकार न्यायिक जांच शुरू करने की सिफारिश याद दिलाया है जिसके नतीजे सार्वजनिक किए जाए और साथ ही पर होना चाहिए। की शांति आयोग ने मामले की रखने की अपील और स्वतंत्र जांच के लिए आयोग रोजिल जिला अदालत में शांतिपूर्ण जांच शुरू करने की रखने और कानून लागू करने के नतीजे अधिकारियों से मानव जीवन का और सम्मान करने राष्ट्रपति की शांति और संयम बनाए रखने की अपील दोहराते हुए आयोग ने नागरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से और अपनी बात रखने और कानून लागू करने वाले अधिकारियों से मानव जीवन का सम्मान करने की भर्ती है अपील की है। घर में उनकी कमी में गहराई से महसूस की जा रही है।

0: ये और परिवार को हर अस्पताल से किसी अच्छी खबर भेजने से भरा है। शुक्रवार रात घर ही में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार में सहारा बनी हुई है। घर में पूरे इलाके में एक गहराई से महसूस की जा रही है। अपनों परिवार को अस्पताल से परिवार में अच्छी खबर का इंतजार है। जल्द स्वस्थ मुश्किल होने पर घर ही में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार का सहारा बने हुए हैं। पूरे इलाके में एकजुटता का माहौल है, परंतु अपनों की चिंता के बीच परिवार में उम्मीद है होने पर का माहौल बन रहा है। ज्यादा जानकारी
1: चिंताओं और इंतजार के बीच परिवार भी अस्पताल में बनाए रहने के कारण पूरा इलाका सांस रोके हुए कॉलोनियों में इस त्रासदी से गहरी आहत उनके करीबियों के इर्द गिर्द एक जुटता का माहौल बन रहा है। भावनाओं, चिंताओं और इंतजार के बीच परिवार उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
2: Moralement, qui nous capable de faire beaucoup de monde, mais beaucoup de gens sont toujours avec des bonnes
3: choses. Et là, à l'heure actuelle, je suis là.
2: Ça demande courage.
3: Motivé aussi. Qui pour venir, la tête aux épaules. Suivi au lit depuis des hauts.
1: Pour après, nous avons qui nous capable de faire des dédards, par aussi, hors d'host, par ivar, qu'au Sahara Dini, hors qui sunnichit kane kiri, par ivar, ici, madad kari.
3: Bébé, l'est plutôt correct, bande de terre, qui pour venir, qui pour venir, qui pour suivi au lit depuis des hauts, l'idée de
1: notre vie. Chansehi, Rishtedar, पड़ोसी और दोस्त परिवार को सहारा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए बारी बारी से मदद कर रहे हैं।
4: Il est vrai qu'il n'est pas encore comprendre, mais des fois, quand mon père de nuit mange, soit mon père belle, il est venu crier ma maman, soit il est venu ouais, mon mais mon père, il est venu être maman. Mon père, il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. C'est presque une trauma, en fait. Parce qu'il m'a fait être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman. Il est venu être maman.
1: लेकिन इस समर्थन के बावजूद कई बार भावनाएं हावी हो जाती हैं। एलर्जी की कमी गहराई से महसूस की जा रही है। लेकिन इस समर्थन के बावजूद कई बार भावनाएं हावी हो जाती हैं। एलर्जी की कमी गहराई से महसूस की जा रही है।
5: La position là. Il y a une qui lui met
6: ça. Il y a un petit vin et 10h30. Il m'a tout dit. On dort, on restera même moi.
5: Mais comment vous voulez le faire comme
6: ça? Ça passe sur l'hier, c'est dans les 11h, t'es pas en Covid. On n'a pas pétain de trans pour venir.
5: C'est qui n'a avec lui?
6: Ailleurs.
5: Mais il est passé
6: à 11h.
1: अधिक आश्वस्त करने वाली खबरों का इंतजार करते हुए परिवार अस्पताल से आने वाले अगले समाचारों और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की जानकारी पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। पानी की कमी से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने एक नई योजना शुरू की है। जिन परिवारों के घरों में पानी की टंकी नहीं है, विकल्प से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को आगे बढ़ाते हैं। कार्यालय या देश भर में निपटने के लिए सेंट्रल कार्यालय में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। शुरू की है जिन परिवार पंजीकरण के घरों में पानी से लेकर दोपहर की विकल्प बजे तक होगा। विकल्प से सेंट्रल परिवार के नाम सैंपल मुख्य कार्यालय या देश भर में उसके शुरू होता कार्यालय में सोमवार से बुधवार दर्ज कर सकते हैं, जबकि एन पंजीकरण सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के परिवार गुरुवार व शुक्रवार जिनके परिवार के नाम पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही के अक्षरों अपना से शुरू होता है, सोमवार से बुधवार तक आ सकते हैं, जबकि CW का बिल तक अक्षरों वाले परिवार गुरुवार व शुक्रवार को आप सेंट्रल पंजीकरण करा सकते हैं। साथ नंबर पर अपना स्थापित कर सकते हैं। पहचान पत्र और जिस प्रकार से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मां के जयकारों से गूंजते ये मंदिर भक्ति में सेंट्रल श्रद्धालु और वातावरण में नंबर पर एक नई उमंग स्थापित आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। जिस प्रकार से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मां

0: की जयकारों में से गूंजती स्थापना और में कलश स्थापना के साथ वातावरण में मां दुर्गा का आह्वान किया गया है। अगले नौ दिनों तक मां भगवती का पावन पर्व दिव्य स्वरूपों की आराधना होगी। दिन शुभ मुहूर्त में उपवास स्थापना करन कलश स्थापना की पूजा अर्चना के साथ भगवती मां दुर्गा का आह्वान किया गया है की कामना। अगले नौ दिनों तक शैलपुत्री की उपासना से शुरू हुई दिव्य स्वरूपों की आराधना होगी। श्रद्धा कहीं व्रत और आध्यात्मिक चेतना उपवास का संदेश भजन कीर्तन तो कहीं विशेष पूजा अर्चना के दर्शन में नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं अपितु मां शैलपुत्री की उपासना से शुरू हुई ये पवित्र और नारी शक्ति श्रद्धा चेतना भक्ति और आध्यात्मिक आराधना का महापर्व देती है। भगवती मां दुर्गा के नौ स्वरूप भारतीय दर्शन में नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं का प्रतीक माने जाते हैं कि परंतु ऊर्जा गहरा नई शक्ति और नारी शक्ति दुर्गा तथा चेतना आदि शक्ति क्यों कहा गया है। आराधना हिंदू दर्शन में शक्ति भगवती मां दुर्गा के नौ स्वरूप और देवी की अलग अलग गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक गहरा प्रश्न धर्म के प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक मान्यताओं क्यों कहा गया है। उस आध्यात्मिक हिंदू दर्शन में शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और देवी की उपासना के लिए नवरात्र माना गया है विशेष महत्व क्यों है। विस्तार में यही है हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों धार्मिक मान्यताओं और उस आध्यात्मिक चिंतन से मिलते हैं जहाँ शक्ति को समस्त सृष्टि का आधार माना गया है और इसी विस्तार दे रही है हमारी सहयोगी अदिति अवतार।
1: केवल एक देवी नहीं दर्शन में बल्कि साहस अर्थ केवल शारीरिक बल या करुणा नहीं है और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की दिव्य सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। संचालन के अनेक परिवर्तन विभिन्न शक्तियों और इस दृष्टिकोण के अनुसार मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं पर उनका विराजमान होना सुरक्षा न्याय करुणा और कठिन परिस्थितियों पर संघर्ष करने का दिव्य क्षमता है। प्रतिनिधित्व करती से जुड़ी उनके प्रमुख धार्मिक कथाओं में शक्तियों देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विशेष या बाघ पर उनका पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से कठिन परिस्थितियों पर समस्त लोग नियंत्रण का संदेश देता है। नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख धार्मिक देवी दुर्गा का देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का महाशक्ति का प्रादुर्भाव उस समय हुआ अनुसार महिषासुर के
2: जब महिषासुर जैसे और महादैत्य का वध हुआ। तब विभिन्न महिषासुर को हम लेंगे सिर्फ राक्षस के रूप में नहीं महिषासुर को लेंगे हम दुर्गा जी का हमारी सबसे महाशक्ति का लोभ प्रादुर्भाव समय हुआ मद मोह माने कि उसको लेकर तब करके जब महिषासुर जैसे महादैत्य उसको कहते हैं महिषासुर का वध महिषासुर को हम लेंगे दुर्गा सिर्फ राक्षस के रूप में महिषासुर में महिषासुर को लेंगे हम जो हमारी अंदर ही क्रोध की माता अहंकार जयम देहि मद मोह है जो प्राप्त करा मेरे अंदर जो शत्रु विजय पाप है जो दोष है उसको मैं ढांस करके मैं विजय प्राप्त कर सकूं। जैसे दुर्गा विजय के बाद ही कहा गया पवित्रता के बाद ही रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जी की हे माता जयम देहि मुझे विजय प्राप्त कराए मेरे अंदर जो शत्रु जो पाप है जो दोष है उसको मैं ढांस करके मैं विजय प्राप्त कर सकूं। विजय के बाद ही पवित्रता के बाद ही भक्ति और
3: जैसे हमके नवरात्रि आवता भक्ति भाव से
1: नौ दिन देश के मंदिरों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाएगी। आज शाम की कलश स्थापना से पूर्व सुबह मंदिरों में विशेष तैयारियां पूरी की गई।
3: एक संदेश पहुंचाता है भाव से संयम बनाए रखने के लिए विसर्जन व्रत ये सिर्फ नमक खाना नहीं है वो अपनी शक्ति है जो नौ दिन के व्रत रखी जा ये
1: बनाने का एक माध्यम है।
4: उनका पूजा जो है सिर्फ नौ दिनों का नहीं है
1: संयम बनाए रखने के लिए
4: हम जो है ये व्रत शक्ति का रूप जो हम कहते हैं लाफोस
1: नमक खाना नहीं है
4: वो हमारी माताएं भी हमारी बहन
1: बनाने का एक माध्यम है।
4: हर दुर्गा पूजा जो है सिर्फ नौ दिनों का जो नहीं है बल्कि सम्मान हम जो है उनका करना चाहिए रूप जो हम
1: इस पर्व का केंद्रीय संदेश ये है कि सृजन संरक्षण और परिवर्तन की शक्ति जीवन का अभिन्न अंग है। देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से श्रद्धालु न केवल दैवीय आशीर्वाद की कामना करते हैं बल्कि साहस आत्मबल न्याय इस पर्व का केंद्रीय संदेश ये है जीवन की सृजन अपनाने का संकल्प और परिवर्तन की शक्ति जीवन का
0: मॉरिशस के साथ साथ भारत में भी शारदीय नवरात्र की भक्ति और उल्लास का वातावरण कहीं मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना और कहीं भजन तथा पारंपरिक उत्सव मॉरिशस के साथ साथ भारत में भी शारदीय नवरात्र की भक्ति और

0: नवरात्र के पहले दिन मां शैली मंत्रोच्चार के साथ साधना विशेष पूजा अलग अलग परंपराएं परंतु श्रद्धा एवं समर्पण का एक भाव मां जगदम्बा की कृपा मां आदिशक्ति की आराधना नवरात्र के पहले दिन मराठी मां शैली द्वारा आयोजित 9 दिनों की पवित्र साधना शुरू हुई है अलग अलग परंपराएं संपन्न परंतु श्रद्धा एवं समर्पण का एक ही भाव की देवी मां जगदम्बा समर्पित है और आशीर्वाद की कामना।
1: ये अनुष्ठान दुर्गा पूजा मराठी मंडली द्वारा आयोजित आज के अनुष्ठान किया जाता है।
0: ज्यादा जानकारी विधिमा संपन्न की गई है और ये पूजा शक्ति की देवी भवानी को समर्पित है। ये अनुष्ठान दुर्गा पूजा के प्रारंभ में किया के अनुष्ठान में किया जाता है। ज्यादा जानकारी विधिमा सिबुरन के साथ।
2: गोंधल पूजा जो कि मराठी संस्कृति की एक परंपरा है, कुछ परिवारों के आधारभरे माहौल में एक विशेष स्थान रखती देवी भवानी को नमन करने के लिए हुई। पांच स्त्रियां हैं जो इन पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गोंधल पूजा जो कि मराठी संस्कृति की एक परंपरा है, कुछ परिवारों के आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है। चित्रा दौलतराव बताती है, ये एक ऐसा समारोह है जिसमें चढ़ावा, भक्ति गीत और पवित्र अनुष्ठान विशेष रूप से शामिल होते हैं। पानी में जो भवानी भी शामिल है जिसमें चावल जैसी खाद्य सामग्री बांटी जाती है जो एकजुटता के महत्व को याद दिलाती है। ये एक ऐसा समारोह है जिसमें चढ़ावा भक्ति जब हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से शामिल होते हैं उन्होंने अपने साथ ये रीति रिवाज भी शामिल है। आज जिसमें चावल जैसी खाद्य सामग्री बांटी जाती है जो एकजुटता के महत्व को याद दिलाती है। बाल चंद्र गोविंद कहते हैं, जब हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से मॉरिशस आए तब पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुन पर भक्तगण मॉरिशस में आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेते हैं जिसका समापन महाआरती के साथ होता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो परिवारों को एक साथ लाती है और पूर्वजों के रीति रिवाजों पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुन पर भक्तगण इस आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेते हैं।
0: इलाकाई स्तर पर रोड्रिग्स कल 12 अक्टूबर को अपनी स्वायत्तता की 24वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर जॉन डैनियल ओंद्रे स्टेडियम में आधिकारिक इलाकाई स्तर पर रोड्रिग्स कल 12 अक्टूबर को अपनी स्वायत्तता की 24वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर और भविष्य को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, जॉन डैनियल के साथ स्टेडियम में आधिकारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। परंतु इन 24 वर्षों में रोड्रिग्स के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं उम्मीदों के बारे में और भविष्य को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन्हीं सवालों के साथ हमारी टीम नायकन और राजधानी टीम पेश है ये रिपोर्ट जहाँ स्थानीय लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी परेशानियों और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात की है। आशीष देवी मेगन पुन्नापा नायकन और रोड्रिग्स की एक टीम पेश है ये रिपोर्ट विवरण विधिमा सिबुरन का।
2: यहाँ कई लगभग रोजाना करीब 100 समय के साथ बने और पहचान के बदौलत यहाँ के हस्तनिर्मित उत्पाद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ लगभग रोजाना करीब 100 सब्जी विक्रेता जुटते हैं। समय के साथ बने भरोसे और पहचान के बदौलत यहाँ के हस्तनिर्मित उत्पाद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। स्वायत्तता के 24 वर्षों में जिन निवासियों से मुलाकात हुई वे बताते हैं कि द्वीप ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष बदलाव बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देखा गया है। स्वायत्तता के 24 वर्षों में जिन निवासियों से मुलाकात हुई वे बताते हैं कि द्वीप ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष बदलाव बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देखा गया है। कोंजुवा स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां जब अंतिम चरण में हैं, वहीं आने वाले वर्षों को लेकर आम जनता में भी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कौन जो वाई स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां जब अंतिम चरण में है, वहीं आने वाले वर्षों को लेकर आम जनता में भी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ये उत्सव बिजनेस इन टू प्रोफेशनल यानी एक जुट होकर काम करना होगा के विषय के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2002 से इस द्वीप के निवासियों के दैनिक जीवन को आकार देने की जिम्मेदारी रीजनल असेंबली पर है।
0: हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और पीढ़ियों से जुड़ी एक अनमोल विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रही नई पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और पीढ़ियों से जुड़ी एवं एक अनमोल विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ा भाषा और साहित्य पीढ़ी की शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मिला है। ज्यादा विस्तार हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने साल 2025 की स्कूल सर्टिफिकेट एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: महत्वपूर्ण भाषा है जो मेरे परिवार ने इस पे बहुत सारा फोकस डाला था कि मैं ये पढ़ूं ताकि
2: एक ऐसी भाषा जिसे वे शब्दों के माध्यम से और साथ ही पाठों के जरिए खोज रही है।
3: ये एक महत्वपूर्ण भाषा है जो मेरे परिवार ने इस पे बहुत सारा फोकस डाला था कि मैं ये पढ़ूं ताकि मैं अपने संस्कृति और परिभाषा के खातिर ये ले पाऊं।
2: नई पीढ़ियों तक हिंदी भाषा पहुंचाना और इसे आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
4: आने वाले समय में आज ही हम देख रहे हैं कि भारत तो एक राष्ट्रगुरु बन रहा है, हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है और हमें बच्चों को हिंदी को
2: तक हिंदी भाषा पहुंचाना और इसे आगे
4: बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। आने वाले समय में आज ही हम देख रहे हैं कि भारत तो एक राष्ट्रगुरु बन रहा है, हिंदी का संगठन चलता जा रहा है और हमें बच्चों को हिंदी के महत्व को प्रेरित करना है, उसको दोयम दर्जे न केवल हिंदी पढ़ रहे हैं वे वाले लोगों को
2: शिक्षा के स्तर पर चुनौती अधिक से अधिक बच्चों को हिंदी की ओर आकर्षित करने की भी है। शिक्षा मंत्री उन उपायों का जिक्र करते हैं हिंदी जो बच्चों को इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर महेंद्र गंगा प्रसाद
5: शिक्षा के स्तर पर चुनौती अधिक से अधिक बच्चों को हिंदी की ओर आकर्षित करने की भी है।
2: शिक्षा मंत्री उन उपायों का जिक्र करते हैं जो बच्चों को इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
5: शिक्षा मंत्री डॉक्टर महेंद्र गंगा प्रसाद बच्चों का रुचि यही मांग करूंगा शिक्षा को और जागृत हो सके कि वो लोग बच्चे को
2: पुरस्कारों और सम्मानों से परे ये समारोह युवा पीढ़ियों तक हिंदी भाषा और इसकी साहित्यिक समृद्धि को पहुंचाने के महत्व की याद दिलाता है।
5: रुचि हिंदी की तरफ और जागृत हो सके।
0: और विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, नेपाल में बुद्ध ही गंगा की नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 लोग लापता हैं जबकि करीब 27 जबकि 36 और विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, नेपाल में बुद्ध ही अधिकारियों के गंगा की नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 पानी का लोग लापता हैं जबकि करीब 27 रुकावट डूब गई और अचानक मकान बह गए और हेलीकॉप्टर और जमीनी बचाव दल की मदद से अधिकारियों के अनुसार बाहर निकाला। मलबा नदी के किनारे बसे कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बिजली और संचार व्यवस्था को भी गई और अचानक बाढ़ जबकि प्रभावित इलाकों में जमीन बचाव दल की मदद से 49 लोगों को सुरक्षित निकाला। नदी किनारे बसे कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिजली और संचार व्यवस्था को भी आम हाल हुआ है जबकि प्रभावित इलाकों में झुंड बचाव अभियान से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। जबकि दूसरी ओर मास्केरेस के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटी साइक्लोन होने की वजह से
1: मौसम का हाल आम हालत पूर्व की ओर से बदलने वाला है। अगले 24 घंटों से हमारे

0: तापमान
1: को प्रभावित
0: करने लगेगा। हमारे स्थानीय मौसम बारिश बरने वाला है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज हल्की सी वर्षा होगी, थोड़ी हवा पूर्व की ओर 20 किलोमीटर ढलानों की रफ्तार से बहेगी, हल्की सी बारिश होगी और लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी। अदालत समंदर में रहेगी, न जाने की मांग की जाती है। पूर्व दक्षिण तथा पश्चिमी पर हल्की सी वर्षा होगी और हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बीच और अधिक के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी। अतः दूर समंदर में न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री से दक्षिण पश्चिमी रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री से सेल्सियस के बीच। तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और 10 मिनट पर, जबकि 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:10 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:42। देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। शांति निकेतन रोड हो खुशनुआ में, शांति निकेतन रोड हो खुशनुआ में 64 साल की 64 years old की श्रीमती बिदवंती रामदास, श्रीमती बिदवंती रामदास पैदाइशी नाम। आइए शोक समाचार सुनते हैं। शांति निकेतन रोड खुशनुआ में, शांति निकेतन रोड खुशनुआ में 64 साल कल सुबह 9 years old की श्रीमती बिदवंती श्री आशीष कुमार रामदास के घर पैदाइशी नाम रोड खुशनुआ से उठा राम बक्शा और जिन्हें सब लोग खुशनुआ के श्री राम से भी जानते जाएगी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह 9 बजे कल सुबह 9 बजे उनके बेटे श्री आतिश कुमार रामदास के घर शांति निकेतन रोड खुशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशः 84 years old नंबर 33 सरा बीबी जुमन, मिसी सरा बीबी जुमन जोसेफ पेडाजिना स्ट्रीट दफनाने के लिए और जिन्हें सब लोग फरीदा के नाम से भी जानते थे, उनका जनाजा कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 33 में दफनाने लिए जंदू श्री मित्रान फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाएगा नाम से भी जानते थे। उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल एडीसी दिन के 10:30 में एडीसी रोड पर चढ़ी दस में 45 साल के 45 ईयर के श्री मित्रानन एडीसी जनरोड श्री मित्रानन जन बिचिका सब लोग कुल के नाम से भी जानते थे। इलाके के शोषण होने जा जाएंगे। उनकी अर्थ मिशन टू कल दिन के 10:30 बजे कल दिन के 10:30 बजे उनकी लाल माटी में श्रीमती बिंदा लालमाटी में घर 64 साल के 64 ईयर के श्री जयराज के लिए इलाके के शोषण होने जा जाएगी। श्री जयराज सब लोग विवेक के नाम से भी जानते थे। कल दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती कविता सुकवारिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 79 लावोचुआ की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमरो
1: at 3 p.m.
0: श्री गोविंदन खामा, श्री गोविंदन खामा जिन्हें सब लोग राजन रुगाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे कल दोपहर 2 बजे
1: साल
0: उनकी
1: 79
0: शोभा रामा के घर श्री गोविंदन खामा जिन्हें सब लोग राजन रुगाई के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे कल दोपहर
1: सभी शुभ परिवारों के प्रति
0: हमारी गहरी संवेदना है। पत्नी श्रीमती शोभा रामा के घर सीते सैंत बैसे उठाकर अंतिम

நவராத்திரி நாட்களில்

वेंकटेश मंगलम।

वेंकटेश मंगलम जय मंगलम शुभ मंगलम नित्य मंगलम।

Yeah.

0: रजनीगंधा द रोज रात्रि रेडियो मॉरिशस पर रजनीगंधा
1: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस
0: रजनीगंधा द रोज रात्रि रेडियो मॉरिशस पर रजनीगंधा
2: नमस्कार श्रोतृंनो शिरीष सोबत आपण रेडिओ मॉरिशसवर आणि रजनीगंधा करूया.

गगन खमंड देव।

0: 119 किलोहर्ट्ज़ ये है
1: बजली प्रभु का नाम
0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

0: सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओ, हमेशा की तरह आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। और आपको पता है कि बहुत
1: सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम।
0: कार्यक्रम है
1: महिमा का गुणगान
0: कर रहे हैं, जय जयकार कर रही है।
1: हमेशा की तरह
0: नवरात्रि की सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में।
1: शुरू हम करने जा रहे हैं।
0: आपको पता है कि बहुत ही
1: श्रद्धा पूजनीय भगवान गणेश जी को हमारा मान नमन
0: की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जय जयकार कर रही है। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आइए कार्यक्रम को शुरू हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को हमारा

कि हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान दुनिया भर में मॉरिशस में भी हम मना रहे हैं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ और भक्ति भाव के साथ उनका हम स्वागत कर रहे हैं। आपको पता है और माँ भवानी का स्मरण करते हुए दुर्गा की महिमा का गुणगान दुनिया भर में मॉरिशस में भी मन का विश्वास मना रहे हैं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ और भक्ति भाव के साथ उनका हम स्वागत कर रहे हैं घर माँ भवानी की और माँ भवानी का स्मरण करते हुए और बस उजाला से याद भर दे हमारी यही कामना है। मन का विश्वास मजबूत तो होना ही चाहिए जो राह जरूर हमें दिखाती है माँ। माँ भवानी की कृपा आपके जीवन में साहस शांति और उजाला से भर दे हमारी यही कामना है।

0: माँ की जय जयकार हम कर रहे हैं आपकी मनपसंद और इस समय जो है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और
1: श्रोताओ भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।
0: दुर्गा के चरणों में
1: माँ की जय जयकार हम कर रहे हैं आपकी मनपसंद
0: रेडियो चैनल देना
1: और इस समय जो है
0: पुण्य का
1: आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं
0: भगवान की शक्ति
1: हमें हम सफर हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए पहचाने
0: प्रेरणा देती
1: है। माँ दुर्गा के चरणों में
0: को हम आगे
1: बढ़ाएंगे।
0: मन में विश्वास और सकारात्मकता को स्थान देना
1: बहुत ही
0: पुण्य का काम होता है। माता भवानी की शक्ति हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है।
1: तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: गुणगान जो है बहुत ही श्रद्धा भाव के
1: श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ देंगे और बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान सुनने वालों के
0: और आपको पता है नवरात्रि पर हम माँ की महिमा
1: माता दुर्गा शक्ति साहस और करुणा का दिव्य स्वरूप मानी जाती है। वे अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती
0: सुनने वालों के नाम
1: इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। माता दुर्गा शक्ति साहस और करुणा का दिव्य स्वरूप मानी जाती है। वे अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

0: रखिए और कर्म करते रहिए, कठिन समय में धैर्य मत छोड़िएगा। तो आइए कार्यक्रम का समापन जो है
1: भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम के अंतर्गत
0: आरती के साथ इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं।
1: हम आपसे यही कहेंगे,
0: सभी को हम कहेंगे
1: विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए, कठिन समय में धैर्य मत छोड़िएगा।
0: तो आइए कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान एक आरती के साथ इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी को हम कहेंगे

0: रेडियो मॉरिशस
1: 8.19 किलोहर्ट्स पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से खैर मस्जिद सामीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशियात का पेशब में समीर आप तमाम सामीन का खिदमत में उम्मीद

0: शरीफ तक ये फूल खुशबू ये फिजा सबके लिए है, ये फूल खुशबू ये फिजा सबके लिए है,
1: उस रब के दुआ सबके लिए, उस रब के दुआ।

0: करती है और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं,
1: मेरी मुसीबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
0: और उसके बदले में
1: जब किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुंचती है और वो कहता है
0: उसे उसकी मुसीबत ही अजर है
1: अता फरमाता है
0: उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं
1: उससे अल्लाह बेहतर चीज मेरी मुसीबत फरमाता है
0: मुझे अजर अता फरमा
1: और उसके बदले में
0: इससे बेहतर अता फरमा
1: उनके शौहर
0: तो अल्लाह ताला उसे मुसीबत में अजर अता फरमाता है
1: और उसके बदले
0: अल्लाह ताला ने बेहतर चीज
1: के बदले फरमाता है
0: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा
1: रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
0: फरमाती हैं फरमाया
1: कि जब
0: यह हदीस शौहर करने वालों
1: मुसलमान रज़ियल्लाहु ताला का बड़ा पैगाम है
0: तो उन्होंने
1: मुसीबत के वक्त
0: इंसान का दिल टूट जाता है
1: और उसे महसूस होता है
0: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा
1: अजीम शौहर
0: नहीं होगा
1: लेकिन अल्लाह ताला
0: के खजाने यह हदीस सब करने वालों के लिए
1: हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाकया
0: मुसीबत का मतलब यह
1: इंसान का दिल टूट जाता है
0: और उसे महसूस होता है
1: कि हमें सिखाता है
0: जिंदगी में मुसीबत
1: अच्छा
0: अल्लाह ताला की तरफ
1: अल्लाह ताला के खजाने
0: कि हम तस्लीम करते
1: हैं उम्मे सलमा
0: के हम अल्लाह ताला के बंदे हैं
1: और आखिरकार
0: यह है
1: उसी की तरफ वापस जाना
0: है
1: जब बंदा
0: हमें सिखाता है
1: कि मुसीबत के वक्त
0: अल्लाह ताला
1: की तरफ रुजू करना चाहिए
0: नहीं फरमाता
1: कि हम तस्लीम करते हैं

0: कहता था कि
1: हजरत अबू हुरैरा जिस तरफ से आती है उसे ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल एक नर्म पौधे से बयान फरमाई।
0: मोमिन को मुसीबतें आती रहती हैं और नाजुक पौधे की तरह है,
1: जबकि बदकार शख्स
0: जिस तरफ से आती है उसे
1: झुका देती है।
0: जो सीधा हवा रुक जाता है तो वो दोबारा सीधा हो जाता है,
1: जब चाहता है उसे जड़ से
0: मोमिन को मुसीबतें आती रहती है।
1: इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की निहायत खूबसूरत मिसाल की तरह फरमाई है।
0: जो सीधा खड़ा
1: जिंदगी की मुश्किलात से मुतासिर जरूर होता है,
0: लेकिन वो चाहता है उसे
1: जड़ से
0: जैसे नर्म पौधा तेज हवा के सामने।
1: इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की निहायत खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई है।
0: इसी तरह
1: मोमिन
0: जिंदगी की मुश्किलात से मुतासिर जरूर होता है, लेकिन वो टूटता नहीं,
1: जैसे नर्म पौधा तेज हवा के सामने
0: होने का इंतजार करता है
1: और हवा गुजरने के बाद
0: इंसान को कमजोर नहीं बनाता है,
1: बल्कि उसे अंदर से मोमिन मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला के सामने
0: जानता है
1: कि आजमाइश हमेशा नहीं रहती,
0: सब्र करता
1: अल्लाह ताला और हालात बेहतर होने का आसानी इंतजार करता है।
0: सब अल्लाह हमें हर आजमाइश में सब्र
1: बल्कि उसे अंदर से मजबूत
0: और हर हाल में
1: मोमिन ऊपर तवक्कुल करने की तौफीक
0: क्या आजमाइश हमेशा नहीं रहती।
1: अल्लाह ताला मुश्किल के बाद
0: आसानी
1: शब्द प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है।
0: अल्लाह ताला

में हर आजमाइश में सब हर नियमत में शान में और हर हाल में अपने ऊपर तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन इंशाल्लाह आमीन। हमारी मुलाकात सामीन मुहतरम महफिल शब प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। आइए आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एवं सफलताओं से भरपूर रहे आप सभी को एमबीसी की टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल बाय इस नवरात्र। यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल।

0: बजकर 10 मिनट हुए हैं श्रोताओ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन, और अभी आप सुन रहे हैं नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं का
1: रात के 9:10 हो रहे हैं श्रोताओं में, जहां आज हम बात करेंगे भक्ति की और रेडियो मनोरंजन शक्ति की और उस विश्वास की जो हमारे जीवन नवरात्रि पर नई रोशनी कार्यक्रम है।
0: मैं उषा कौर
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत 10 बजे तक और मंगल में ये विशेष कार्यक्रम, जहां आज हम बात करेंगे भक्ति की, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मां दुर्गा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रोशनी रखे हर परिवार में। उषा कौर आप लोगों के साथ हर चेहरे पर मुस्कान 10 बजे तक आप सुनेंगे ये विशेष कार्यक्रम मेरी ओर से। आप सभी नवरात्रि की पूजा और हार्दिक शुभकामनाएं का पर्व, मां दुर्गा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे हर परिवार समझने का और बना रहे जीवन को हर चेहरे पर मुस्कान रहे और हर मन में जिस तरह हम अपने घर में दीप जलाते नवरात्रि की तरह पूजा और हमें अपने मन पर्व नई दया प्रेम अंदर और अच्छे कर्मों का अपनी कमियों को जलाना चाहिए समझने का, तो आइए आज के बेहतर पहले दिन की शुरुआत समय है। जिस तरह हम अपने घर में दीप जलाते हैं उसी तरह हमें अपने मन में

0: उपासना करने नहीं है, बल्कि अपने मन को समझने, अपने विचारों को पवित्र बनाने और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचाने का भी अवसर है। जय श्रोताओ, नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा और
1: माँ दुर्गा के 9 स्वरूप,
0: बल्कि अपने मन को समझने देते हैं। कहीं हमें सहस मिलता है और अपने अंदर छिपी शक्ति को और कहीं पहचाने का भी अवसर है।

और आज नवरात्रि के पहले दिन है। माँ दुर्गा की वंदना करेंगे, माँ शैल की अलग अलग सीख देते हैं। शैल पुत्री कहीं हमें सहस मिलता है, कहीं धैर्य, कहीं ज्ञान और नव दुर्गा प्रेम और प्रथम स्वरूप है। और आज नवरात्रि के पहले दिन नवरात्रि की आराधना हम वंदना करेंगे माँ शैल। आज के इस कार्यक्रम में शैल पुत्री जिन्हें पर्वत राज हिमालय की उनकी कथा जाता है, नव दुर्गा का प्रथम और उनके जीवन से उनकी पूजा के साथ तो अपने मन को भक्ति से भर लीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे माँ शैल पुत्री कौन है, उनकी कथा क्या है, उनकी पूजा का क्या महत्व है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो अपने मन को भक्ति से भर लीजिए, अपनी चिंताओं को कुछ पल रखती है और माँ का स्मरण करते हुए उनकी कृपा हमारे सब बच्चों पर बनी और भूलिएगा।

0: और शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बीती। इस तरह शैलपुत्री का अर्थ है
1: श्रोताओं नवरात्रि के पहले दिन
0: माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पुत्री का नाम है माँ शैलपुत्री।
1: शैल का अर्थ होता है और पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है
0: उनके एक हाथ में त्रिशूल। इस तरह

पुत्री का अर्थ कमल है, होता है पर्वत की वो वृषभ माँ शैल को हिमालय की पुत्री माना जाता है। माँ का त्रिशूल हमें बुराई के दिव्य और शक्तिशाली है। दत्तकर उनके एक हाथ में त्रिशूल जबकि उनके हाथ का कमल पवित्र वो वृषभ पवित्रता और सुंदरता का सवार होता है। माँ का त्रिशूल हमें बुराई के सामने धैर्य और स्थिरता का संदेश देता है और जीवन में कितने भी उनके हाथ क्यों ना आए कमल पवित्र अपने लक्ष्य से पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उनका वाहन हमें धैर्य और स्थिरता का संदेश देता है जन्म और जीवन में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए हमें अपने लक्ष्य के रूप में जन्म लिया और शैल पुत्री धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैल पूजा हमें याद दिलाती है माता की हर नई शुरुआत के पूर्ण जन्म सती है। माता सती है जिस तरह एक पर्वत अपनी जगह पर पुत्री के रूप में उसी तरह हमें भी अपने अच्छे संस्कार अपनी सच्चाई और अपनी पूजा हमें याद दिलाती है कि हर नई शुरुआत के लिए मजबूत अपने मन जरूरी संकल्प ले जिस तरह अपने पर्वत अपनी जगह पर असर रहता है उसी तरह हमें भी अपने अच्छे संस्कार अपनी सच्चाई और अपने समय में हम भी अटल हिम्मत नहीं हारेंगे। आज के दिन आइए हम सब अपने मन में एक संकल्प लें हम अपने जीवन में सच्चाई का साथ देंगे दूसरों का सम्मान करेंगे और कठिनाई समय में मुश्किल समय में हम भी

0: सबसे पवित्र कथा को जाने का है, जिसमें श्रद्धा, सम्मान और अपने विश्वास पर अटल रहने का संदेश छिपा है। धार्मिक प्यारे श्रोताओं, अब समय है माँ शैलपुत्र के उस पहले जन्म में माता सती के रूप में जिसमें श्रद्धा, माता सती के पिता और राजा दक्ष विश्वास पर अटल और उनका संदेश छिपा है। भगवान शिव
1: धार्मिक कथाओं के अनुसार
0: एक बार राजा दक्ष ने अपने पहले जन्म यज्ञ का माता सती के रूप में जन्म लिया था।
1: कई देव
0: माता सती के पिता राजा दक्ष आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव उनका विवाह नहीं किया। भगवान शिव जब इस बात का पता
1: एक
0: चला,
1: बार राजा तो दक्ष ने एक बड़े के यज्ञ का आयोजन किया।
0: वहां भगवान शिव के कई देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित
1: माता सती को बहुत दुख हुआ।
0: माता सती को जब इस प्रसंग का पता चला तो वो अपने पिता के घर गए।
1: वहां भगवान शिव
0: के बाद माता सती ने अपना वो शरीर त्याग दिया।
1: अगले जन्म बातें सुनकर
0: उन्होंने हिमालय माता सती को बहुत दुख हुआ
1: के रूप में जन्म लिया और वर्णन हिंदू धार्मिक कथाओं में प्रसिद्ध हुई।
0: इस कथा में एक गहरा
1: इसके बाद माता सती ने अपना वो
0: जीवन में त्याग दिया।
1: अगले जन्म में
0: उन्होंने हिमालय के घर होता है
1: के रूप में जन्म
0: लिया और माँ शैलपुत्री के नाम मारा
1: प्रसिद्ध हुई।
0: जीवन से
1: इस कथा में एक गहरा
0: कभी कभी हमें भी
1: ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है
0: और अपने हमारी बात बहुत महत्व समझा नहीं जाता,
1: लेकिन श्रोताओं इस कथा को हम अपने
0: सम्मान नहीं होता
1: जीवन
0: या हमें अपने ही लोगों से निराशा।
1: कभी कभी हमें भी
0: ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए,
1: हमारी समझदारी से काम लेना चाहिए
0: और अपने
1: हमारी
0: हमारे जो पहचाना चाहिए
1: माँ सम्मान का पर्वत जैसे
0: या हमें अपने ही लोगों से
1: हमें याद दिलाता है
0: कि ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए,
1: समझदारी से काम लेना चाहिए
0: और अपने आत्म सम्मान को पहचाना चाहिए।
1: हमें हर परिस्थिति
0: माँ शैलपुत्री का पर्वत जैसे स्वरूप
1: और कठिन समय
0: हमें याद दिलाता है
1: कि सच्चाई और अच्छे संस्कार हमारे जीवन की मजबूत नींव है।
0: आइए माँ के चरणों

जी हाँ, अब आ गया है समय आज के इस भक्तिमय कार्यक्रम को विराम देने का। आज हमने माँ शैलपुत्री की महिमा को जाना, उनकी कथा सुनी और उनके स्वरूप से 9:52 मिलने वाले हैं श्रोताओं मेरे अपने जीवन से। यहाँ अब आ गया है समय नवरात्रि का पहला दिन में कार्यक्रम को विराम देने का संदेश आज हमने। आइए हम अपने मन को जाना, उनकी कथा सुनी और उनके स्वरूप से मिलने वाली सीख को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। नवरात्रि का पहला दिन हमें एक माँ शैलपुत्री से संदेश देता है। वो आइए हम अपने मन में सुख शांति बनाए रखें और अपने जीवन में करने का प्रयास करें और अपने जीवन में हर मुश्किल का विश्वास दया और अच्छे कर्मों को जगाएं। मैं आपकी अपनी माँ शैलपुत्री से प्रार्थना है कि वो आप सभी के अपने विश्वासों में सुख शांति बनाए रखें, आपके जीवन में नई उम्मीदें जगाएं और पवित्र रखें हर मुश्किल का सामना करने का साहस।

मैं आपकी अपनी उषा कौर आपसे विदा लेती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने विश्वास को पर्वत की तरह मजबूत रखिए, अपने मन को कमल की तरह पवित्र रखिए और अपने व्यवहार में प्रेम बनाए रखिए। आप सभी

एक हसीन सफर रेडियो भुवनेश्वर। रात के 10:02 हो गए। श्रोता लोग, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आशा करते हैं कि तुम लोग भक्ति एवं भाव गीत के आनंद उठा ली हो। चला तो हर खाते हो के 10:02 हो गए। और इस समय तो हर मन पसंद नवरात्रि के शुभ अवसर

0: सुने के तधैर्य कि तो लोग भक्ति एवं भाव नई
1: गर्व और नंबर 1 आनंद उमा हुआ काचोदा काफोगा
0: चलो तो हर खातिन भोजपुरी तरह
1: भेज जग से अपन हो गए बातें
0: और इस समय तो हर तो हर संगी रात के 11 बजे
1: मन बा चला आज का पहला धैर्य का गीत ललिता पुनीत की गावन की

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:12 हो गए बा। श्रोता लोग, आज से दुर्गा पूजन आरंभ हो और सगरो वातावरण
0: भोजपुरी तड़का।
1: सब लोगन भक्ति भाव से माता रानी की आराधना करे भगवान। रात के 10:12 हो गए बा। श्रोता लोग, आज से दुर्गा पूजन गाना की मांग है और सगरो वातावरण शुद्ध और पवित्र। सब लोगन भक्ति भाव।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:26 हो गए बा और चलो साथी लोगन तोहर से विनम्र आग्रह बाकी की पानी के इजाया नहीं करा जा काहे कि मॉरिशस सुखा के सामना करा था और ही हमने के
2: रात के 10:26
1: हो गए बा और चलो साथी लोगन तोहर से विनम्र आग्रह पानी
2: संगीता जी खातिर जन हमने के सुना
1: काहे कि मॉरिशस सुखा के सामना करा था और ही हमने के एक छोट होके एक ई समस्या जोन है एकर सुझाए के चाहे तो चला अगला गीत संगीता जी खातिर जन हमने के सुनता क्यों पिप से साथ देने खातिर धन्यवाद।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 11:45 श्रोता लोग भोजपुरी गीत वन तक खूबे दिल के फैलावे सब प्रकार के गाना है भोजपुरी क्षेत्र हमने के देसी कलाकार लोग भर सक प्रयास करेलन अपन रात के 11:45 श्रोता हम भोजपुरी लोग के साथ दिल के फैलावे के सब प्रकार के गाना है भोजपुरी क्षेत्र में हमने के देसी कलाकार लोग भर सक प्रयास करेलन अपन अगला गीत सुना

लिए मंगलमय हो। ऐसे श्रोतालोक इरहल तोहर खातिर भोजपुरी तरका के कार्यक्रम ग्यारह बजे रात्रि के होता और वो तोहरा शुभरात्रि बोलत है। काल से एगो नया सप्ताह शुरू होता तक तोहरा तोहर लिए मंगलमय हो।

0: Crisis.
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: गाना गाना।

0: कभी दूसरे कमरे में जाता था, कभी में जाता था, तो कभी मैं कर लूंगा। आज भी सुनिए, कभी कहीं जाने की जगह कहाँ है, कहीं मत जाइए हमारे।
1: कभी दूसरे कमरे में जाते हुए रेडियो पर पसंद का गीत शुरू हो जाता था, तो कदम वहीं रुक जाते थे, सोचते पहले ये सुन लूं, काम फिर कर लूंगा। आज भी कोई गीत आपको ऐसे रोक लेता है क्या? सुनिए, कभी कहीं जाने की जल्दी कहाँ है, कहीं मत जाइए हमारे साथ रहिए।

Space Radio Marshes.

0: हंस पड़ते, गीत सही गाया या नहीं वही हंसी याद रह गई। शायद आपके घर में भी कोई ऐसा ही गीत था जो आपके किसी अपने को बहुत पसंद
1: घर में कोई गीत गुनगुनाता था।
2: रेडियो मॉरिशस
3: पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
0: कोई ऐसा ही गीत था जो आपके किसी अपने को बहुत पसंद था, आज गाइए हमारे।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो

0: Moses.
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके
0: kilohertz. This is Radio Marches.
2: खुशी किसी को सुनाने
3: आपको दिन याद है
2: कई बार
3: कोई कागज पे लिखने
2: देते पसंद आता कि उसे याद करने का मन होता
3: अगली बार रेडियो पर जैसी बजे इसके बोल सामने खड़ा होगा
2: तो बड़े से ध्यान से सुनते तो सुनहरे पल याद हुआ फिर बाकी बोल और इतनी छोटी सी खुशी किसी को सुनानी ही होती थी कई बार हम कागज पे लिख लेते थे और लिखते लिखते बस एहसास होता था कितना अच्छा ये गाना है इसके बोल कितने प्यारे हैं बस वही दिन तो याद रहेंगे वही तो सुनहरे पल हैं।

0: घर की जो औरतें हुआ करती थी कपड़े तय करते हुए या रसोई में कुछ बनाते हुए अपने आप को एक गीत में डूब जाता था। फिर काम चलना शुरू हो जाता था, गाना एक तरफ बजता रहता था, मधुर मधुर संगीत होता था और घर का माहौल बहुत ही प्यारा हो जाता था।
1: घर की जो औरतें हुआ करती थी कपड़े तय करते हुए या रसोई में कुछ बनाते हुए अपने आप को एक गीत में डूब जाता था। फिर काम चलना शुरू हो जाता था, गाना एक तरफ बजता रहता था, मधुर मधुर संगीत होता था और घर का माहौल बहुत ही प्यारा हो जाता था। आज रात काम पूरे हो गए होंगे आप सबके भी, अब बस थोड़ा सा आराम कीजिए, साथ बैठिए, गुनगुनाइए, गीत सुनिए, आराम से बैठिए, थोड़ी सी ठंडी हवा।

0: अपने किसी रात की ड्यूटी
1: कभी कभी कहते हैं जिंदगी की बहुत सारी उलझने हो जाती हैं पूरे दिन में, तो हम तो कहेंगे उलझनों से बाहर के साथ रहता है गाने सुनो, कोई अगर ड्राइव करते हुए अच्छा जाए प्रोग्राम सुन रहा है, हमारा घर में दिन होगा तब आप भी समझ लीजिए रात होगी, अपने किसी रात की ड्यूटी पर है रेस्ट कीजिएगा तब, पर अभी बिल्कुल अलर्ट होकर आप गाने सुनते रहिए और साथ में साथ रहता है जिंदगी आपका मन लगा रहे आपका दिन अच्छा जाए, क्योंकि आपको जब हमारा दिन होगा तब आपकी समझ लीजिए रात होगी, तो हम तो यही कहेंगे आराम से रेस्ट कीजिएगा तब, पर अभी बिल्कुल अलर्ट होकर आप आराम से अपने गाने सुनिए और साथ में बढ़ते रहिए जिंदगी को चलाते रहिए खूब।

0: श्रोताओ, आज गीतों के साथ कुछ छोटी छोटी आदतें याद की जिनसे हमारे आपका साथ अच्छा लगा। अगले शनिवार की रात 11 बजे फिर मिलेंगे सुनहरे पलों में। मैं थी आपके साथ अब आपसे लेती हूँ विदा। आपकी रात आराम से बीते। श्रोताओ,
1: रेडियो मॉरीशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरीशस।
1: रेडियो मॉरीशस,
2: रेडियो मॉरीशस,
0: सुनहरे पलों में। मैं थी
1: रेडियो मॉरीशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरीशस।
1: रेडियो मॉरीशस, रेडियो मॉरीशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरीशस।
1: रेडियो मॉरीशस,
2: रेडियो मॉरीशस,
1: रेडियो मॉरीशस
2: 800

0: नमस्कार।
1: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: लोग
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है,
0: जिन्होंने कुछ पाया ही
1: मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया।
0: मेरी आंखों में देखो शेखर,
1: मां डरता भाई कहीं फिर से
0: यहां तक आए। बहुत लकी हो शेखर,
1: और दोबारा चोट खाने की हिम्मत
0: कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके।
2: आई प्रॉमिस यू
0: आई विल नेवर देखो शेखर
2: हर्ट यू।
1: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
0: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर।

Sweet Radio.

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

आपके साथ एमबीसी रेडियो। आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ एमबीसी रेडियो।

बात बोलने क्या किसी का सर,

0: खुशबू से तन्हाई
1: किसकी सजा ले
0: इजाजत हो तो तुमको अपनी बाहों में छुपा ले हो जब से तुम हमको
1: सुनो एक बात बोले
0: क्या है
1: तुम्हें

0: क्या
1: हमें किसकी जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है।
2: NBC Radio 24 hours

की यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो। आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।

0: नहीं पता, मैं तो यहाँ
1: बता दे तुमको किस मौसम पे प्यार का मौसम कहते हैं। रात के मौसम में प्यार भरे
0: ओहो, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ। अरे पगली समझी नहीं, मेरी नजर सारा कमजोर है। अच्छा जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम कलर ब्लाइंड। अरे बाबा सुन, अरे पगली समझी नहीं, मेरी नजर सारा कमजोर है।

0: सुहाना है,
1: इसका एक अपसाना है। MBC Radio 24 hours a day.